प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
2: सुप्रभात, घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रहे हैं।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम टीना के साथ सुनते हैं। नमस्कार आपको टीना।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरीशस के श्रम बाजार में सुधार देखने को मिल रहा है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स मॉरीशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है। वैसे साल 2025 की तीसरी तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.6% हो गई, जबकि इससे पहले ये 5.9% थी। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने इस गुरुवार फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि इसका सीधा असर रोजगार और क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर पड़ रहा है। और यूनियन के सचिव आलन किस्नन ने यह भी अफसोस जताया कि सामूहिक समझौते पर अब तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, जबकि इस पर बातचीत 2 वर्षों से अधिक समय से चल रही है। और कैबिनेट ने नोट किया कि सार्वजनिक अवकाश यानी पब्लिक हॉलीडेज 2026 की सूची में बदलाव किया जाएगा, ताकि गणेश चतुर्थी पर्व 2026 अब बुधवार 16 सितंबर 2026 की जगह मंगलवार 15 सितंबर 2026 को मनाया जाए। ये बदलाव मॉरीशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया जा रहा है। और फेडरेशन ने बताया कि पहले 15 सितंबर 2026 की तारीख गणना में हुई गलत व्याख्या के कारण प्रस्तावित की गई थी। विदेश में अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने गुरुवार को भारत को बेहतरीन साझेदार बताया और कहा कि भारत जितना ईंधन खरीदना चाहता है अमरीका बेचने को तैयार है। अपनी पहली भारत यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें क्वाड देशों के मंत्रियों से मिलने का मौका मिलेगा। और अंत में मौसम का हाल।

मस्कारींस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर चल रही है। साथ ही दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादल भी हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद के समय देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन रात्रि के समय दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और ऊंचे इलाकों पर रह रहकर वर्षा होगी और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा। तापमान सेंटर पातू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में। वैसे सूर्योदय आज 6:34 पर और सूर्यास्त शाम के 5:39। RM3 Radio.

0: हर पीर और जुमेरात को आमाल पेश किए जाते हैं। उस दिन अल्लाह ताला हर उस शख्स की मग़फ़िरत कर देता है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करता, उस शख्स के सिवा के उसके और उसके भाई के दरमियान अदावत और कीना हो। कहा जाता है उन दोनों को रहने दो यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें, उन दोनों को रहने दो यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें। बहवाला सही मुस्लिम। सामईन कराम, ज़िलहिज्जा के मौके पर जामा मस्जिद पोटलुई की जानिब से ये बयान समाज फरमाएं मुफ्ती मुहम्मद इसहाक़ कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़बानी।
1: नहमदुल्लाह वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व हबीबिना मुहम्मदिन अल-मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिही अल-तक़िया अल-अज़किया أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي الكريم حمد و ثنا کے بعد सामीन मोहतरम, आज हमारा मौजू है यौम आराफा की अहमियत और उसका रोज़ा। इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि अल्लाह पाक ने कसम उठाई जोड़े की और ताक की, वशफ़ वल वत्र, और वत्र में एक कौल ये है कि इससे मुराद आराफा का दिन है। सो मतलब ये हुआ कि कसम है योम आराफा की। योम आराफा यानी 9 ज़िलहिज्जा। ये बहुत बाबरकत दिन है। इसमें रोज़े की ख़ास फजीलत मुख्तलिफ़ अहादीस तैयबा में बयान की गई है। चुनाचे सही मुस्लिम शरीफ में है, सुइला अन सौम आराफा फ़क़ाल युकफ़िरु सनत अल-मादिया वल-बाक़िया, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से योम आराफा के रोज़े की फजीलत पूछी गई तो आपने फरमाया कि आराफा के दिन का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल आइंदा के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा है। यानी साले गुदश्ता और साले आइंदा कि जो सगीरा गुनाह है वो अल्लाह पाक

इस रोसे से मिटा देता है। और जाहिर है कि जो गुनाह कबीरा है, मेजर सिन, उसके लिए तौबा ज़रूरी है। उसकी माफ़ी तब होती है जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। बहरहाल आश्रय ज़िलहिज्जा के रोज़े की फजीलत ख़ुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से और फिर इस दिन रोज़े की फजीलत से भी इस मुबारक दिन की फजीलत वाज़े हो जाती है। यहाँ ये मसला ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे साल में 5 दिनों में रोज़ा से मना किया है। फरमाया फ़इन्नहु अय्यामु अक्लिन व शुर्ब, ये खाने पीने के दिन हैं, जैसे सुनन अद्दारमी में है, सुनन अद्दारुल कुतनी में है। वो ये हैं ईदुल फितर का पहला दिन यानी ईदुल फितर का दिन, और ईदुल अदहा यानी 10 ज़िलहिज्जा, 11, 12 और 13, जिनको अय्याम तशरीक कहते हैं, इन में रोज़ा मना है, मकरूह तहरीमी है। बाकी जो साल के दिन हैं उसमें किसी और दिन में रोज़ा मना नहीं है। अच्छा, यौम आराफा के बारे में लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब है कब नहीं है, मॉरिशस में कब है, फलां जगह कब है, फलां जगह कब है। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि 9 ज़िलहिज्जा, जिस तारीख को हो, जिस मुल्क में, जिस कंट्री में, वही यौम आरफा है। अब ज़ाहिर है कि इख्तिलाफ़ मताले के सबब मुख्तलिफ मुल्कों में आरफा का दिन अलग अलग होता है, तो उसमें कोई इश्काल नहीं है। जैसे यौम फितर, यौम अदहा, शब कदर, यौम आशूर, हर मुल्क के एतबार से और हर कंट्री के एतबार से होता है। सो इसी तरह आरफा भी उस मुल्क, उस खित्ते के हिसाब से होगा। जब उसमें आप कंफ्यूज्ड नहीं हैं तो इसमें आप क्यों कंफ्यूज्ड हो रहे हैं? सो अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि 9 ज़िलहज आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी ज़िलहिज्जा की 9 तारीख आपके लिए यौम आरफा है। रोज़े के अलावा इसमें कुरान करीम, फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की कसरत, दुरूद शरीफ की कसरत, नमाज बा जमात की पाबंदी, गुनाहों से बचना और तस्बीह तहलील में अपने आप को मसरूफ़ रखना, फिर 9 ज़िलहिज्जा की फजर से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर नमाज के बाद बावाज़े बुलंद एक दफ़ा पढ़ना तकबीर तशरीक, ये ज़रूरी है।

0: जमात से नमाज़ पढ़ने वाले भी पढ़ें, तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले भी पढ़ें, मर्द भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें, लेकिन औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें। तकबीरात तशरीक ये हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल्हम्द। जिस शख्स की इमाम के साथ कुछ रकातें रह गई हों उसे अपनी बाकी मानदा नमाज पूरी करके सलाम फिरने के बाद तकबीर तशरीक पढ़नी चाहिए। फ़र्ज़ नमाज का सलाम फिरने की फौरी बाद ये तकबीर पढ़नी चाहिए। अगर इमाम तकबीर कहना भूल जाए तो मुक्तदियों को चाहिए कि वो ख़ुद तकबीर कहें, इमाम की तकबीर का इंतज़ार न करें। तकबीर तशरीक सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद हुक्म है, सुन्नत व नफल के बाद नहीं। एहतियात का तकाजा ये है कि ईदुल अदहा की नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक पढ़ें। इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़े मनाकिब हैं और बड़ी बरकात हैं। अल्लाह पाक हमें इन दिनों की बरकात, यौम आरफा की, यौम नहर की और तकबीरात तशरीक की बरकात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: अल्लाह पाक हम सबको इस बयान में सिखाई गई नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रे के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। बहवाला सही अल बुखारी। तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा एक के बाद दूसरे को अदा करो, इसलिए कि ये दोनों फ़क्र और गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे भट्टी लोहे सोने और चांदी के मैल को मिटा देती है।

मसनद अहमद की रिवायत है, औरतों का जिहाद खाना काबा की ज़ियारत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं जिसे दज्जाल पामाल न करेगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि उनकी हिफाजत के लिए हर रास्ते पर फरिश्ते सफ़ें बनाए खड़े हुए हैं। फिर मदीने की ज़मीन 3 मरतबा कांपेगी, जिससे हर एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला उन शहरों से निकाल बाहर कर देगा। बहवाला सही अल बुखारी।

या रब हमें ज़िंदगी में एक बार काबा शरीफ को चूमना नसीब फरमा। ए अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसे तूने रहमत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन तू काबिले तारीफ़ बड़ी शान वाला है। ए अल्लाह बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन तू काबिले तारीफ़ बड़ी शान वाला है। सामईन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। तकनीकी मदद के लिए रियज का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

निरगत मंत्र कलेसी गिरेला ये से रोय काय की नाट नाट नाट।

0: 94.6, 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો.
1: Continuous music.

स्वास्थ्य आजे सान शक्ति ने बीजी एक तुच्छ प्रवृत्ति ने मन में लागणा मोकरे चढ़या छे जरूरत अहि मन निशुद्धि ने नसा बड़ी शोर शरब दुनिया न बाड़ी खोटा न चार बेरे शब्द पड़े रिश्तों मकान समझी आजे शब्दों न उखड़ा ते मौनम मौनम निजे बाड़ पड़ती खोड़ मरती न तिरे मौनम निसोड़ रही मौन

ना उगड़े जहर शब्दों ने फैर शब्दों चुपे हाकार डानी जाए मैं शब्दों जी रहा कादर नी जाए मैं बोले बता वात सांबड़ शिकोड़ वात सांबड़ो हवे रही मोन समझा से शब्दों नु षड्यंत्र अति मोन जे वो हवे कोई मंत्र।

फैन उगड़े जहर शब्दों ने फैन शब्दों चुपे हाका टानी जैम शब्दों चिरे हाका तरनी जैम बोले बता बात सांभ शिकोण बात सांभ हव रही मोन समझा शब्दों

0: भक्ति में शक्ति। सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से सादर नमस्ते। भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में हम आपका अभिवादन करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप कि हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं अपने मन को शांत करने के लिए और ईश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनसे प्रार्थना करने के लिए कि हे प्रभु हमारे जीवन में सुख शांति ले आए। तो चलिए कार्यक्रम का हम श्री गणेश करेंगे और सूर्यदेव का भी ध्यान करेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जितने भी हमारे श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं कुछ समय के लिए ही चलिए मन को शांत करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं इस समय आप विदिता का साथ दे रहे हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन RM3 पर कार्यक्रम भक्ति में शक्ति।
1: ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

भक्ति में शक्ति मिलती है, और शक्ति जहाँ होती है वहाँ पे अगर भक्त जो है ध्यान लगाएं तो फिर सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी ये भी होता है कि हम कोई गलती कर देते हैं और क्षमा मांगने के बजाय हम क्या करते हैं, हम बहस करते हैं। क्षमा मांगने के बजाय हम क्या करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, और उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर झूठ पे झूठ। आपको लगता है कि शनिदेव जो कि हमारे कर्मों के फलदाता है वो हमें ऐसे ही छोड़ देंगे? सज़ा तो हमें अवश्य मिलेगी, और फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। कभी भी कोई भी गलती हो जाए ना, उस गलती को मान लिया करो, क्षमा मांगो उस मनुष्य से जिसके साथ आपने गलत किया, और उनसे जो हमारे कर्मों के फलदाता हैं शनिदेव।

कार्यक्रम में भजन सुनकर आनंद तो आता है, कभी कभी हम जब भजन सुनते हैं तो हमारा मन शांत होता है। हम जब भजन सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई है, ये जो हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है इसका आभास हमें पहले से ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि भजन सुनने से हमारा मन शांत होता है, हम इन चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए जब भी आपको समय मिले ना श्रोताओं, एक भजन सुन लिया कीजिए। सिर्फ सुनिएगा नहीं, गाइएगा भी। अभी जैसे हम अगले भजन के साथ आपका साथ दे रहे हैं, वैसे आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ गाते चलिए।

हरि दर्शन कौन नहीं चाहता। प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति में शक्ति, में हूँ विदिता। और चलिए, जब बात आती है भक्ति की तो हनुमान जी से बड़े भक्त कौन हो सकते हैं। वैसे रावण भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, है ना। और कहते हैं ना कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण को उनके अहंकार ने मारा। वो बहुत होशियार थे, है ना, और बहुत बड़े भक्त भी थे, लेकिन उनमें जब घमंड आ गया ना तो उन्होंने खुद को भगवान मान लिया। ये गलत होता है। चलिए कोई नहीं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और अभी के लिए अब हम सुनने जा रहे हैं हनुमान चालीसा। भूलिए नहीं, आज शनिवार है और जहाँ पर हम शनि देव की पूजा करते हैं वहाँ पे हम हनुमान की भी पूजा करते हैं, उनके लिए भी व्रत रखा।

समय आप वेदिता का साथ दे रही हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, कभी कभी आपका मन भारी हो जाता होगा ना, आपका मन नहीं करता कि हम कहीं दूर भाग जाएं, बहुत दूर, सबसे दूर, कोई हमारे आसपास ना हो। लेकिन शारीरिक तौर पे दूर भागना और मन ही मन अपना मन कहीं और लगाना जहाँ पे आपको शांति मिली, दो अलग चीज़ें होती हैं। आपने कभी सुना है ना कि भीड़ में रहकर भी मनुष्य जो है अपने आप को अकेला पाता है ना? और कभी कभी मनुष्य अकेले रहकर भी अपने आप को आसपास बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ पाता है, जिनके भी वो दर्शन करना चाहे मन ही मन वो कर सकता है। ऐसा तब होता है जब आप लगन से, मन से, पूरी भक्ति के साथ ईश्वर को याद करते हैं। इसीलिए तो हम कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए भक्ति में शक्ति।

अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे ना कि रावण जो था शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। अब अगर रावण शिव जी के भक्त हो सकते हैं तो हम भी तो उन्हीं के भक्त हैं, हम भी तो उनकी प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम उन्हीं को याद कर लेते हैं और अपने इस कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं।

प्रिय श्रोताओं, इसी भजन के साथ ही हमारा कार्यक्रम भक्ति में शक्ति यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि इन भजनों के साथ आपका मन शांत हुआ होगा। वैसे हमारे

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के लिए तीना के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मंत्रिमंडल ने श्रम मंत्रालय को मर्चेंट कामगारों को कनाडा में रोजगार दिलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये पहल फ्रेंच भाषा बोलने वाले कामगारों की गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की गई है। इस कनाडियन परियोजना का उद्देश्य ओटावा को फ्रेंच भाषी इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता देना है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और फ्रेंच बोलने वाले नए लोगों को अल्पसंख्यक फ्रेंच समुदायों में स्थायी रूप से बसने में मदद करना है। साथ ही मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना है। मॉरिशस अब स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम का लाभ लेने वाला 24वां अफ्रीकी देश बन गया है। ये अमेरिका की एक सहयोग योजना है जो लगभग 30 सालों से चल रही है। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के क्षेत्रों में सहयोग का रास्ता खुल गया है। यूनियन ऑफ बस इंडस्ट्री वर्कर्स ने एक प्रेस वार्ता के दौरान चिंता जताई और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की स्थिति पर सवाल उठाए। यूनियन ने सबसे पहले सड़कों पर चल रही बसों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया। उनका कहना है कि इसका सीधा असर रोजगार और इस क्षेत्र के कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों में पड़ रहा है। विदेश में अमेरिका द्वारा नए सिरे से सैन्य हमले किए जाने की बढ़ती आशंकाओं के बीच ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस बीच दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स इलफोर्ड इंग्लैंड में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री राजीव कुमार गोपल जो राजीव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो HSBC के पूर्व मैनेजर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बुधवार 27 मई को सपहर साढ़े तीन बजे उनके घर नंबर 33 बीचवुड गार्डन्स इलफोर्ड इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे 27 मई at 3:30 PM। लाकाव्या नंबर दो वाकुआमी 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की मिसिज फातमून केडू पैदाइशी नाम बुरकाताली और जो फातिमून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है। और उनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे जनाब नौशाद केदू के मकान लाकाव्या नंबर दो वाकुआ से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। प्लेन डिगाले कौशालू शमैक्रनी में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री सुनील दत्त लोहा जो सुनील नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सपहर तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती संगीता लोहा के घर प्लंडिगाली कौशालू श्रमैकनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रवियरीगाली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। वैसे दफनाने के लिए रवियरीगाली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:09 हुए हैं।
6: सुहाना सफर।
5: हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स को अनीता का ढेर सारा प्यार नमन है और सुहाना सफर कार्यक्रम में आप लोगों का दिल से स्वागत है। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और बिल्कुल आप लोग जो हैं सभी काम काज पूरा करके बाजार से आकर अब आप जो हैं रिलैक्स कर रहे होंगे।

और अपने पसंदीदा कार्यक्रम को सुनने के लिए बेचैन हैं। तो हाँ, हम यहाँ अपने गानों से जो है आप लोगों के दिल को बहलाने के लिए हाजिर हो गए हैं। बस आपको वॉल्यूम को थोड़ा सा हाई करना है और सिर्फ चिल करना है। शनिवार है, थोड़ा सा रिलैक्स करना तो बनता ही है। और संगीत का काम ही है कि वह जिंदगी को और आसान बना देता है। तो देर ना करते हुए आइए, चलिए हम पहले नगमे की ओर बढ़ते हैं। मेरी पसंद की है, आप सभी लिसनर्स के नाम यह प्यारा गाना लता जी की आवाज में, रुक जाए हवा, थोड़ा सा आप भी थम जाइए। जिंदगी में सिर्फ भाग दौड़ ही काफी नहीं है, रिलैक्स कीजिए, शनिवार का दिन है, एंड एंजॉय दिस सॉन्ग।

जी दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफ़र और आप लोगों की पसंद के गाने चल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा पहला जो है लिसनर्स हैं सेंट एडी ऑफ पोर्ट लुइस, और आप सुनना चाह रहे हैं पुरानी फिल्म ब्लैकमेल का गाना। तो चलिए सुनते हैं मिले मिले दो बदन।

जी दोस्तों, कट्रोबोन से सरिता जी साथ दे रही है और आप सुनना चाह रही हैं फिल्म लव मैरिज का गाना। तो यह गाना आपके नाम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जी दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर और यहाँ पर जो है 12:27 हो चुके हैं और बिल्कुल आप लोगों के डेडिकेशंस ऑन 5250-6200 पर या फोन कॉल कर सकते हैं 4028070 पर सफर। और यहाँ पर सचिन जी साथ दे रहे हैं पॉम्पलमूस से, तो चलिए आपकी मांग है फिल्म ज्योति का गाना, लता जी की आवाज़ में एक बार फिर से थोड़ा रेशम लगता है।

0: जी दोस्तों, सच में जब लता जी की आवाज सुनते हैं तो मानो स्वयं प्रकृति गा रही है। उनकी दिव्य स्वर की कोई तुलना नहीं, मन में उमंग और तरंग भर देती है उनकी कोकिला जैसी आवाज।
1: सुहाना सफर।
0: जी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिच वेजे सैंपिया से गायत्री जी साथ दे रही हैं। और चूंकि हम एंड ऑफ मे आ ही रहे हैं तो हम जानते ही हैं कि एंड ऑफ मे हम जो है सेलिब्रेट करते हैं मदर्स एंड फादर्स डे। तो बिल्कुल हम अपने जो है प्रियजनों को, अपने बड़ों को हम याद करते हैं और ख़ासकर जो हम उन लोगों को ज़्यादा याद करते हैं जो अभी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो इसी प्रकार गायत्री जी अपनी प्यारी बहन, अपनी बड़ी बहन को याद कर रही है, जो कि वे कहती हैं कि वे मातुल्य थी। उनकी बहन है सुनीति, साथ ही साथ उनका भाई था अमृत, साथ ही साथ वे अपने पिताजी और माताजी को भी याद कर रही है। तो सभी तमाम जो हैं

बुजुर्ग लोगों के नाम अगला गाना जाएगा, फिल्म है रानी रूपमती का गाना, और साथ ही साथ यही गाना आप डेडिकेट करना चाहती हैं भाभी मीरा के नाम, उनकी बेटियां हैं गिरिशा मेधा कठरबोन की, आपकी एक बहन है अमृता, उनकी बेटियां हैं नेहा श्रीति दिव्या, बेटे सुधीर कमलेश हैं, बहू सुधा हैं, और सबके नाम यह गाना जाता है।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: जी दोस्तों, L'Espérance Trébuchet से मनोज सोहन जी साथ है दे रहे हैं और आप कहते हैं कि आप कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म मर्यादा का गाना मुकेश जी की आवाज़ में। और यहाँ प्यारा गाना जाएगा बेशक हर शनिवार की तरह आपकी प्यारी पत्नी नजीमा सोहन के नाम, पूरे सोहन परिवार के नाम, गया सिंह आश्रम के जितने बुजुर्ग हैं वहाँ पर उन सब के नाम और जितने भी लोग अभी बीमार हैं अस्पताल में हैं तो उनको थोड़ा सा हौसला देने के लिए यह गाना आप डेडिकेट करना चाह रहे हैं उनके नाम और मेरे लिए भी। तो थैंक यू इसके लिए मनोज जी। चलिए सुनते हैं जुबां पे दर्द।

यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है, सरिता जी गुडलैंड से हैं, आप कहती है नाइस गाने ऑल इज गोल्ड, और आप धर्मवीर का गाना सुनना चाह रही है, यह गाना मेरे पुराने परिवार के लिए और सभी रेडियो टीम के लिए है, थैंक यू जी। तो चलिए यह गाना सुनते हैं लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में।

स्वयं माला जी हैं। तो चलिए, आप सबों के नाम यह गाना जाएगा और आप कहती है कि पहला गाना सुनकर आपका मन गदगद हो गया, तो थैंक यू इसके लिए जी। आशा जी की आवाज़ में जब तक रही।

जी दोस्तों, हम यहां पर आपके लिए हैं, आपका मनोरंजन करने के लिए रेडियो मनोरंजन पर। और यहां पर श्यामा जी कहती है कि तेरी मीठी मीठी बोलिया करेजा को

चीरेला करेजा को ढक ढक करेला बुलता सामाजिक गांगोप से साथ दे रही है। और आपकी फरमाइश है फिल्म छोटी बहन का गाना, लता जी की आवाज़ में साथ ही साथ जो है कोरस साथ दे रही है। और यही गाना जाएगा आपके भाई राम प्रकाश के नाम, भाभी नम्रता है, नेफ्यूज़ हैं युधिष केशव, आपकी सहेलियां हैं वीना रामफल और साथ ही साथ विश्वानी दुखी और साथ ही साथ मंदिनी उकलू के नाम यह गाना जाएगा। और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 1 बजे के समाचारों की ओर।

0: ये सुनते हैं समाचार आस्था के साथ, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। खराब सरकार खराब मौसम से निपटने की अपनी रणनीति को मजबूत कर रही है। मूसलाधार बारिश और भारी वर्षा की स्थिति अब सरकारी, निजी और शिक्षा सेक्टरों के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है। इस दिशा में ये फैसला कल हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस के रोजगार सेक्टर में सुधार दर्ज किया जा रहा है। बेरोजगारी दर में गिरावट देखी जा रही है, जो कई आर्थिक सेक्टरों में सुधार के संकेत हैं। इसी क्रम में कैबिनेट ने श्रम मंत्रालय को मॉरिशन कामगारों के कनाडा में रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये पहल श्रमिक गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत उठाई जा रही है। रिफॉर्म पार्टी के नेता गोशीबादे का मानना है कि सरकार ने अपने कई चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने आज हेनेसी पार्क होटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगले बजट को लेकर कई प्रस्ताव भी सामने रखे। मॉरिशस और अमेरिका के बीच सहयोग को नई मजबूती मिली है। पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन हस्तक्षेप को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अफ्रीकी विमानन जगत का एक बड़ा नाम अब मॉरिशस की धरती पर उतरने जा रहा है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमान सेवा इथियोपियन एयरलाइंस को मॉरिशस के लिए उड़ान संचालन की अनुमति मिल गई है। भारत में ज़्यादातर भाग लू की चपेट में हैं, भारी गर्मी दर्ज की जा रही है। कल तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। अधिकारियों को स्वास्थ्य निर्देश जारी करना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में इस तरह की भारी गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। और चीन के शांजी प्रांत में एक कोयला खदान में भयानक गैस विस्फोट पेश हुआ है। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 90 को पार कर चुकी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। लकावेन नंबर टू वाकुआ में 62 साल की 62 years old की फातमुन खेदू इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम बुरकताली। उनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे नौशाद खेदू के मकान वाकुआ से निकालकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। कौशल्यू चमेंग्रोनी में 63 साल के 63 years old के श्री सुनील दत्त लोहर की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनकी पत्नी संगीता लोहर के मकान चमेंग्रोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिविया दिगाली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडी एट 3 PM। इंग्लैंड में गेंसिल इलफोर्ड इंग्लैंड में 57 साल के 57 years old के श्री राजीव कुमार गोपुल की मृत्यु हो गई है। वे पहले मॉरिशस में HSBC में मैनेजर का पद संभाल चुके हैं। उनकी अर्थी इंग्लैंड में बुधवार को उठाई जाएगी, वहां के समयानुसार शाम के 3:30 बजे। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। जी दोस्तों, 1:05 हो चुके हैं और आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम चल रहा है सुहाना सफर। यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर आपकी सखी साथ दे रही है अनीता, है यहाँ पर हाजिर आप लोगों के लिए। और बेशक ये हमारा जो है दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है, वार्म वेलकम। और यहाँ पर नंदा जी की फरमाइश आई है, नंदा जी पाए से हैं और आप कहती है कि आप जो है हीरा पन्ना का गाना सुनना चाह रही है और यही गाना जाएगा सब

भी गणेश परिवारों के नाम, पुनीता परिवार हैं, साथ ही साथ पति दीपक हैं, अविनाश हैं, अभिषेक हैं, अरविना हैं, अशील हैं, और आपकी पतो है विद्या, और नाती गुलू हैं, अरवी हैं। तो आप सबके नाम यह प्यारा गाना चलिए सुनते हैं।

जी दोस्तों, फिकम फ्लक्स से अनीता जी साथ दे रही हैं और आपकी फरमाइश है पुरानी फिल्म बाबुल का गाना, और यही गाना जाएगा बेटे अंकुश के लिए, अंतिश के लिए। बहु अश्रीमा है, मनीषा है, पोती हिमेशा है, आध्या है, पोते लड्डू गोपाल है, साथ ही साथ पति राज है, तो आप सब के नाम यह गाना जाता है।

दोस्तों, जीवन में माँ का जो स्थान है वो कोई नहीं ले सकता है, और इसलिए उनको कहा गया है कि उनका स्थान भगवान से भी ऊंचा है। और मदर्स डे के अवसर पर यहाँ पर एक फरमाइश आई हुई है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि माँ का प्यार वो नूर है जो कभी कम नहीं होता। माँ का प्यार वो नूर है जो कभी कम नहीं होता, उसकी दुआओं का असर हर मोड़ पर साथ।

देता है। तो यहाँ पर फरमाइश आई है देवयानी जी के लिए, जो ख़ुशमा फ्लक से साथ दे रही हैं, उनके बेटे हैं रितेश हैं, अविनाश हैं, केशव हैं, बेटी प्रीति, क्षमा कीजिए, पतो प्रीति हैं, अश्विना हैं, बेटी अनुष्मा हैं, वे सब जो हैं मदर्स डे के अवसर पर आपको जो है ढेर सारा प्यार दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे। तो चलिए आपके नाम यहाँ प्यारा गाना।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, पिछली वेजे से अनीता जी साथ है दे रही हैं और आप सुनना चाहती हैं अलका याग्निक जी की आवाज़ में और कुमार शानू की आवाज़ों में फिल्म 15 अगस्त का गाना। और जो है यही गाना जाएगा आपकी बेटियों के नाम, शीतल, काजल, दीक्षा, पति बलदेव हैं पूरे जरी परिवार के नाम। और साथ ही साथ यहाँ गाना जाएगा ज्योति और शातु बिनागस के नाम, साथ ही साथ अश्नी हैं, रेखा हैं, सुरेखा हैं और पूरे माधव परिवार के नाम।

जी दोस्तों, प्रथानुसार मोदालबिया की अनीता जी हमेशा एक कविता भेजती हैं, तो आप कहती हैं कि दिल से कभी जुदा नहीं होते, दिल से कभी जुदा नहीं होते, यूं ही हम किसी पर फिदा नहीं होते। दोस्ती का रिश्ता है हमारा, क्यों कि दोस्त बेवफा हो नहीं होते। जी दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता है हमारा, क्योंकि दोस्त बेवफा नहीं होते। जी दोस्तों, यदि जीवन में सच्चा दोस्त आपको मिल जाए तो वे कभी बेवफा नहीं होते हैं। लेकिन ज़रूर इस ज़माने में ध्यान से देखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है। और आपकी फरमाइश है फिल्म ललकार का गाना मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों

अनीता जी, शायद आपको थोड़ी ही देर में आपके उत्तर का जवाब मिल जाए कि आपको कितना प्यार करते हैं। वेल दोस्तों, कहा गया है कि तुझसे इश्क करके आशिकाना हो गया है, दिल की ना पूछो ये दीवाना हो गया है। तुझको जब से नजरें भर के देखा है, ये मौसम और भी मस्ताना हो गया है। बिल्कुल, यहाँ प्यारा सा गाना जाएगा हरीश जी की ओर से अपने अनु के नाम, दिल है तुम्हारा, मौसम है मस्ताना, क्या कॉम्बिनेशन है, इसे एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, जीवन में जब कठिनाई आती है, समस्याएं आती हैं, दुख आता है, तो बेशक हम दुखी होते हैं, किंतु दुख का भी हमारे जीवन में एक अलग महत्व रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि दुख आने से, विपत्ति आने से हमें तजुर्बा मिलता है, हमें सीख मिलती है। कभी कभी दुख हमें दृढ़ फर्म बनाता है, कभी वह हमें संवेदनशील बनाता है। लेकिन एक और विशेष बात जो दुख विपत्ति हमें देती है, पर उस पर ध्यान बिरले ही जाता है, वह है कि हर विपत्ति, हर दुख आपको भगवान के पास ले जाता है। हर दुख में आपको भगवान, या फिर जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसकी झलक नजर आएगी। जिस प्रकार जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़ती हुई उसे संभालने आती है, उसी प्रकार जब एक सच्चा भक्त रोता है तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं अपने भक्त को संभालने के लिए जरूर आते हैं। जी दोस्तों, अगला गाना जाएगा किसके नाम। यहाँ पर मधुरी जी ने हमें मैसेज भेजा है, और दीदी शोभा एक्वायो से सुन रही है, और जीजू भी है साथ में, तो उनके नाम अब बेशक यहाँ गाना जाएगा। आप हैं उषा ब्रह्मस्थान से, सॉरी उषा जी ब्रह्मस्थान से। आप कहती है कि भाभी जो क्षमा कीजिए, दीदी शोभा और जीजू सुन रहे हैं अभी हमें, थैंक यू इसके लिए जी। और यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है, मुकेश जी ने हमें मैसेज भेजा है। हाय, नमस्ते। नमस्ते जी, आई एम मुकेश मोहन वांगयता वाकवा। ओके, आपने पहली बार टेक्स हमें किया। यू आर फीलिंग प्राउड एंड ग्रेट प्रोग्राम, सुपर्ब सिलेक्शन, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू जी, योर प्रेजेंटेशन अप इज वेरी अप लेवल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ब्लेसिंग। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग एंड विशेज। तो चलिए हम अगला गाना चलाएंगे, और अगर समय मिले तो बिल्कुल मुकेश जी का एक गाना ज़रूर चलाएंगे।

जी दोस्तों, अब फिल्म पाकिजा का गाना आ रहा है। मौसम है आशिकाना और यहाँ गाना खासकर प्रकाशवती जी के नाम जो बेल्जियम से सुन रही है। और आप कहती है कि मौसम बिल्कुल आशिकाना है, वहाँ पर 25 डिग्रीज हैं। तो चलिए यह गाना आप

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: जी दोस्तों, हमारे जाने का समय आ ही गया है और ठीक 2 बजे आप संक्षिप्त समाचार सुनेंगे और उसके बाद कार्यक्रम होगा इतिहास के झड़ों को से अलका जी और सुमी जी के द्वारा। और यहाँ अंतिम गाना जाएगा

पर किसके नाम उषा जी अमोरी से साथ दे रही है और आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म बेवफा का गाना। यही गाना जाएगा आपके तीन बच्चों के नाम, बहू हैं, दामाद हैं और पूरे सीता परिवार के नाम।

और यही गाना जाएगा लीता जी के नाम, जो कल बात से सुन रहे हैं आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम। यही गाना जाएगा रेहाना जी के नाम, जो नोत्र दाम से साथ दे रही हैं। रोजिल से सचिन जी के नाम, मुका से सुदेवी जी के नाम, ग्रांगोप से विमला जी के नाम, बुन में अफ्लाक से उषा जी के नाम, और साथ ही साथ शीला जी हैं फ्लैग से सुन रही हैं हमारे कार्यक्रम को।

जी दोस्तों, अनीता की ओर से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। अगले शनिवार को मिलेंगे और यही गाना उन तमाम लोगों के नाम जिन्हें लाइन नहीं मिली आज। सो टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।

0: आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। खराब मौसम से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मूसलाधार बारिश की स्थिति में अब सरकारी, निजी और शिक्षा सेक्टर के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है। ये फैसला कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश के रोजगार बाजार में सुधार दर्ज किया जा रहा है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, जो कई आर्थिक क्षेत्रों में तेज होती गतिविधियों का संकेत मानी जा रही है। इसी क्रम में कैबिनेट

0: ने मोशन काम करूं कि कनाडा में रोजगार को लेकर श्रम मंत्रालय को हरी झंडी दे दी है। ये पहल श्रमिक गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की जा रही है। रिफॉर्म पार्टी की नेता खुशी बादे ने सरकार पर कई चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने हेनेसी पार्क होटल में आज आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आगामी बजट को लेकर कई आर्थिक प्रस्ताव भी सामने रखे। और एक अन्य बड़ी खबर, मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मेक्सिको नेशनल गार्ड के बीच आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन हस्तक्षेप को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अफ्रीकी विमानन जगत की दिग्गज विमान सेवा इथियोपियन एयरलाइंस अब मॉरिशस के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन को मॉरिशस के लिए संचालन की अनुमति दे दी गई है। चीन के शांजी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 को पार कर चुकी है। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Up centre, 95.5. North, south, 95.6. East, west, 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night. Right here on your one and only station.
4: इतिहास के झरोखों से
5: शनिवार 23 मई घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 4:04। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत हम करते हैं। मैं और दोपहर के 2:04 हम समय से आगे भाग रहे हैं।
6: श्रोताओं, सुमिता ने अभी चाय नहीं पी तो आज हम चाय पर ही बात करेंगे, इसीलिए दो को उसने चार
5: बोल दिया।
6: घड़ी भाग रही है।
5: तो होता है, होता है,
6: होता है। चाय न मिले तो बहुत कुछ होता है। तो श्रोताओं, आज हम इतिहास के झरोखों में झांकने जा रहे हैं, तो चलिए जरा चाय की प्याली में झांकते हैं।
5: बिल्कुल अलका जी, आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह मैं यहाँ अकेले थी तो मैंने आपको बहुत मिस किया।
6: बहुत धन्यवाद मिस करने के लिए।
5: और हमारे सभी सुनने वालों को बता दें कि पिछले 21 तारीख को, 21 मई को हर वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, तो हमने सोचा कि आज हम भी चाय पर चर्चा करते हैं।
6: चाय मिले ना मिले, हाँ चाय पर चर्चा हाँ। स्वाद तो आ जाए चाय का।
5: बिल्कुल, मतलब चाय अपने आप में एक ऐसी चीज है जो दुनिया भर में मशहूर है और अपने अपने तरीके से है ना। हाँ। कहीं पे दूध वाली चाय पॉपुलर है तो कहीं काली चाय पॉपुलर है, कहीं हर्बल टी पॉपुलर है। और जैसे जैसे हमारे दुनिया में चीज़ें बदलती जा रही है, चाय का रंग रूप भी बदलता जा रहा है,
6: स्वाद भी बदल रहा है, रूप भी बदल रहा है। पर फिर भी कैसी भी चाय पी ले, कभी कभी आप यही कहते हैं बस एक कड़क चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। अब वो कड़क चाय क्या है जी, बस इसका स्वाद तो पीने वाला ही जानता
5: बिल्कुल
6: है।
5: बिल्कुल, और हर एक व्यक्ति का चाय को लेकर अपना एक अलग इमोशन भी होता है, कहते हैं ना।
6: कुछ लोग बड़े कप में पीना पसंद करते हैं, कुछ आराम से बैठ के सिप सिप करके पीना पसंद करते हैं, कुछ खिड़की से झांक कर पीना पसंद करते हैं, और कुछ पसंद करते हैं कि इतनी गर्म चाय मिले कि फूक फूक कर पीनी पड़े। और कुछ लोग चाय बनाकर देगची में पूरी ठंडी करके फिर आराम से पीते हैं कि अब चाय ठीक।
5: आजकल तो कोल्ड टी, आइस टी का भी चलन आ गया है।
6: कहां तो चाय केवल गर्म चाय होती थी, अब तो ठंडी चाय और यहाँ तक कि फ्रीजर में रखी आइस क्यूब्स में भी चाय आने लग गई है।
5: बिल्कुल,
6: जब आपको टेस्ट करना है एक आइस क्यूब चाय वाला मुँह में डाल दीजिए। श्रोताओ, चाय का अपना इतिहास बड़ा ही प्यारा सा इतिहास
5: जी।
6: और आज चाय हम सबकी जबान या स्वाद में इतनी रच बस गई है कि चाय ना मिले तो शाम को लगता दिन खाली खाली है। बस वही लोग बचे हुए हैं जिन्होंने चाय का स्वाद नहीं लिया। अगर आपने स्वाद ले लिया तो पकड़ में आ जाओगे। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को हम सब सलाम करते हैं
5: जी,
6: जो कड़ी धूप में, बारिश में, पत्तियों को देखते हैं, सहलाते हैं,

0: के सूखने का इंतजार करते हैं पकने का, और फिर एक एक एक एक पत्ती को तोड़कर कारखाने तक पहुंचाना, और उसके एवज में जो उनको मिलता है एक मजदूरी ही होती है। लेकिन जब हम चाय पीते हैं, हमने शायद कभी नहीं सोचा कि ये पत्तियां जो हैं हम तक कैसे पहुंचती हैं। कभी कभी YouTube पर देखना चाहिए, ये जो चाय के कारखाने हैं वहाँ पर जो चाय तैयार जब होती है उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि बस पत्तियां इकट्ठी हुई, सूखने डाल दी गई और आपको मिल गई। मैसूर में एक बहुत ही अच्छा कारखाना है चाय का, वहाँ मैंने देखा है उस चाय को जब भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें उस कारखाने में एक ही बागान से आई हुई पत्तियों से 15-20 तरह की चाय की क्वालिटी निकलती है। सुपर क्वालिटी है, सुपर डुपर क्वालिटी है, सामान्य है, और अंत में जो बचा खुचा पत्तियों का होता है एक साधारण जो आम जन या सस्ता जो खरीदते हैं उनके लिए भी बनती है। फिर अब चाय की पैकेजिंग, ऐसी पैकेजिंग करना कि देखते ही आपकी जेब खनखनाने लगे कि लगे वाह ये लेना चाहिए, किसी को गिफ्ट देंगे तो वह खुश हो जाएगा, पर केवल चाय पीने वाले को। तो श्रोताओं, चाय एक ऐसा आकर्षण है कि आप वैसे भी पूछ रहे चाय पियोगे, अच्छा चलो चल जाएगा एक कप मंगा लो, और भारत की तो बात ही मत पूछिए, वहां तो दिन भर चाय चलती रहती है, लेकिन छोटा सा प्याला, उसमें एक घूंटी होती है लेकिन चलती रहती है। और मॉरिशस में कोई पिला दे तो वाह वाह, नहीं तो सुबह शाम तो आदमी ढूंढता है कि उसको एक कप या एक स्टील का ग्लास चाय जरूर मिल जाए। और मॉरिशस में लोग गर्मा गर्म चाय पीना पसंद नहीं करते, मुझे लगता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहाँ पर हर घर में एक देगची है, चाय बनती है उसे देगची पे छाना जाता है और घुमा कर 2-3 बार ठंडा चेद जिसे कहते हैं वार्म करके तब वे लोग पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में गर्मा गर्म, इंग्लैंड में बहुत ठंड होती है वहां पर भी गर्मा गर्म पीना पसंद करते हैं,
1: और चाइनीज लोग भी गर्म चाय पीते हैं।
0: ये लोग भी गर्म है तो वैसे सूप वगैरह के आदि होते हैं, हाँ। तो उबलता हुआ जैसे धुआं निकलता हुआ चाहिए। तो आप सोचेंगे कि इंग्लैंड में चाय बहुत पी जाती है, पर आश्चर्य की बात कि इंग्लैंड में ना तो चाय पहले पैदा होती थी, ना वहाँ कोई व्यापार था, ना किसी ने सोचा था। लेकिन इंग्लैंड ने जब अन्य देशों पर राज्य किया, वहां पर कुछ गवर्नर्स ने जब खोज कार्य की तो उनको चाय की जो पत्तियां मिली, तब उन्होंने 19वीं सदी में या 1860-70-80 के आसपास इसका प्रयोग करना शुरू किया। और धीरे धीरे भारत जैसे देश जब गुलाम थे, यहाँ चाय की खेती को बढ़ावा दिया, और यहाँ की जो सुपर पत्तियों की चाय होती थी वह सब इंग्लैंड जाती थी
1: जी।
0: तो आज इंग्लैंड भी चाय की खपत का एक बहुत बड़ा देश है।
1: बिल्कुल, और चाय के इतिहास की बात करें तो 5000 सालों से भी
0: पुराना
1: इसका इतिहास है।
0: साल। हाँ। और हम अभी बैठे हैं 2026 में
1: जी,
0: अभी आधा ही रास्ता तय हुआ है।
1: और ऐसे बहुत से देश कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि चाय कहीं ना कहीं भारत में ही उसका जो है ये हुआ था, लेकिन चाइना से, हाँ, एक सम्राट थे जो गर्म पानी पिया करते थे, और कहते हैं कि गलती से
0: वे जो सम्राट थे उनको हर्बल चीजों का बहुत शौक था।
1: हाँ।
0: और हम सब जानते हैं चाइनीज लोग जो हैं हर्बल चीजें या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवाइयों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सम्राट थे शेन नंग इनका नाम था, और ये अपनी जड़ी बूटियों के लिए जाने जाते थे
1: जी।
0: बहुत उनका विशेष ज्ञान था
1: जी।
0: तो वे जो उनके साथ होते थे नौकर या उनके काम करने वाले सेवक, वे कई तरह की उनको पत्तियां दिया करते थे कि इसका काढ़ा बनाओ।
1: हाँ हाँ।
0: ये जो काढ़ा शब्द है उसका अर्थ है काढ़ कर बनाना,
1: बॉइल बॉइल
0: करके डालना, उसको लगातार काढ़ते रहना।
1: हाँ।
0: मतलब जब वो 1/4 रह जाए तब उसको ठंडा करके पीना। तो ये जो राजा थे शेन नंग, इनको बहुत शौक था नए नए प्रयोग करने का, ये पत्तियों पर रिसर्च करते ही रहते थे, लोग इनके ज्ञान के बहुत ज्यादा प्रशंसा किया करते थे। तो उनके सेवक एक बार उन्होंने पानी बॉईल करने रखा,
1: हाँ।
0: तो वहीं एक पौधा था,
1: हाँ।
0: जिसमें से कुछ पत्तियां उसमें गिर गई,
1: हाँ।
0: तो उन्होंने देखा कि इसका रंग काला क्यों है,
1: हाँ।
0: और जब पिया तो वो स्फूर्तिदायक,
1: हाँ।
0: फिर उन्होंने उस पर प्रयोग शुरू कर दिया। तो आप सोचिए 5000 साल पहले सबसे पहले चीन में चाय का आविष्कार या खोज हुई, जिसे कहना चाहिए, चाय तो थी लेकिन उसकी खोज या पहचान हुई, और जो वो पत्तियां गिरी उसकी सुगंध ने इस राजा को आकर्षित किया। श्रोताओं, आपको पता ना घर में चाय बन रही हो,
1: हाँ।
0: एक सुगंध खींचती है,
1: हाँ, बिल्कुल,
0: कॉफी, हाँ। चाय,

0: मान लीजिए आप कहीं मॉल में भी जाएं, जहाँ भी चाय और कॉफी होगी
1: उसकी महक आपको
0: तरफ होती है और वो उसकी मार्केटिंग करती है
1: और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की खुशबू जो है आपको एक रिफ्रेशमेंट का एहसास दिलाती है, है ना, एक ताजगी का एहसास दिलाती है।
0: यही चाय में है कि जब एक बार आप पीते हैं तो कुछ घंटों के लिए आप ताजे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चाय का पहले आविष्कार कहे या उसकी जब खोज हुई थी तो औषधि के रूप में ही तो उसका प्रयोग होता था।
0: उसने कहा ये पौधा कैमेलिया साइनेंसिस है।
1: अच्छा।
0: तब इसका जब उसने काढ़ा बनाया तब बाद में इसका नाम चाय रखा गया। और चीन में तो ये हर्बल टॉनिक के रूप में वर्षों प्रयोग की जाती रही, क्योंकि उस जमाने में तो सीधे पत्तियां ही इस्तेमाल की जाती थी। अब तो चाय प्रोसेस में आती है और कभी कभी उसमें प्रिजर्वेटिव सब भी डाले जाते हैं, लेकिन उस समय तो सीधी पत्तियों से वे लोग सुखाकर इस्तेमाल करते थे। और ये जो चाय वहां पर खोजी गई या जिसको पहचान की गई हर्बल टी के रूप में, ये वहाँ के बड़े बड़े समारोहों की शान होती थी।
1: हाँ, छोटे छोटे जर्मन मतलब वो छोटे छोटे चीनी वाले कप में सर्व होते थे। हाँ,
0: ये वहाँ की शान होती थी कि अगर राजा का स्पेशल समारोह है तो उसमें ये चाय आपको मिलेगी। अभी आप लद्दाख की तरफ चले जाइए तो उनके जिस घर में आप जाएंगे वे हमारी पत्तियों वाली चाय नहीं देते, एक हर्बल टी होती है और उसको वो एक बॉक्स में रखते कड़ती रहती है, वो चूल्हे पर पड़ी रहती है,
1: ही रहती है,
0: पकती रहती है और वो सचमुच बहुत रिफ्रेशिंग होती है और बहुत ही प्यार से जमीन पर बिठा कर और बहुत प्यार से वो सर्व करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी लद्दाख की चाय है। और आप जानिए 6 महीने वहाँ पर भारत में लद्दाख में इतनी बर्फ पड़ती है कि स्कूल कॉलेज भी बंद होते हैं, बच्चे घर से ही पढ़ाई करते हैं, केवल 6 महीने में स्कूल जाते हैं। तो इस तरह की हर्बल टी ही उनको ताकत देती है,
1: बिल्कुल गर्म रखती है ना कहीं ना कहीं।
0: और जापान में तो इसकी कल्चर बहुत ही प्यारी है, वहाँ तो जितना झुक कर प्यार से बुलाते हैं, सब लोग बैठते हैं, प्यालियों में देते हैं, तो वहाँ पर एक चाय की कल्चर डेवलप की है। तो अभी जापान को लेके और बात करेंगे, पहले गीत सुनते
1: एक गाना हो जाए। बिल्कुल,
2: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो।

0: इतिहास के झरोखे।
1: जापान के लोग बड़े प्यार से चाय की कल्चर को जीते हैं। हम तो सीधा पूछते हैं, आप चाय पियेंगे? अरे पी लो ना एक कप, चलो आधा कप बना देते हैं, चलिए आपकी चाय में थोड़ी इलायची डाल देते हैं। और फिर चिंता होती है चीनी लेंगे कम ज्यादा या बिल्कुल नहीं। और अब तो एक कल्चर चल पड़ी, चीनी बिना ही बनाइए, एक कटोरी में अलग से चीनी दे दीजिए, पता नहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। समस्याएं बढ़ रही हैं, चाय बिचारी वहीं अपना स्वाद हमको दे रही है, लेकिन हम अपनी सेहत से जूझ रहे हैं, क्योंकि चाय के साथ हम बिस्किट खाएंगे, केक खाना पसंद करते हैं, पेस्ट्री खाना पसंद करते हैं, तो चाय बिचारी वो हर्बल हो कि ग्रीन हो कि ओरिजिनल हो कि ब्लैक हो, कितनी देर तक हमारे डायबिटीज को संभाल पाएगी। लेकिन यदि आप चाय को तरीके से पिए और हर्बल पिए, नींबू वाली चाय पिए, अदरक वाली चाय पिए, तो देखिए मोटी इलायची छोटी इलायची, तब चाय का कमाल देखिए, वह आपको कितनी ताकत देती है और कितनी एनर्जी आपको देती है। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल में चाय कभी कभी चुपचाप पड़ी होती है और हम तो पेस्ट्री का स्वाद ले रहे होते हैं और चाय सिप करते हैं कि चलो पेस्ट्री भी आराम से अंदर चली जाए।
2: और कहीं ना कहीं अगर हम हर्बल टी की जैसे आप बात करें, कोविड के टाइम पे चाय की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में फिर से और बढ़ गई थी हर्बल टी के रूप में, है ना?
1: क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रेस था ना।
2: हाँ, फिर लोग घर ही में मतलब के ये लेमन ग्रास मिल गया, अदरक मिल गया, मतलब घर के मसालों से ही जो है चाय बनाने लगे ताकि हेल्दी रह पाए।
1: और अब तो चाय के लिए प्रिपेयर्ड मसाले भी मिलते हैं।
2: आजकल तो प्रीमिक्स मिलता है, जैसे कि बस पानी में मिला दो, उसमें दूध चीनी आपका फ्लेवर सब कुछ होता है।
1: फिर भी उसमें फ्लेवर का कमाल ज्यादा होता है, बेहतर है कि हम अपनी अदरक थोड़ी सी ग्रेट कर ले या इलायची डाले, उसका आनंद कुछ और है। लेकिन जापान में बड़ा प्यारा एक शब्द है, वा केई सेई जाकू। वे कहते हैं इसका मतलब है सामंजस्य, सम्मान, पवित्रता और शांति। और जब भी वे चाय पीते हैं तो वे कहते हैं वा केई सेई जाकू, मतलब वे कहते हैं कि चाय का इतिहास जो है पत्तियों से विरासत तक है। और ये सुगंध देता है, सुकून देता है, गर्माहट देता है। तो जापान में तो जब किसी को चाय पिलाते भी हैं तो आप चित्रों में देखिए, YouTube पर देखिए, वो बड़े प्यार से बिठाते हैं। चलते चलते खड़े पैर या पहने जूते चाय नहीं पी जाती वहाँ पर, और बड़े प्यार से वे लोग आपको झुक कर जैसे नमस्ते करते हैं और फिर चाय परोसते हैं
2: जी।
1: तो वहाँ की कल्चर में चाय, यद्यपि वहाँ थी नहीं, वहाँ पर भी पहुँची चाय
2: जी।
1: तो जिस भी देश में चाय पहुँची उस देश ने उसको अपना लिया, और आज तो लोग कहते हैं चाय के बिना इंग्लैंड का गुजारा ही नहीं।
2: बिल्कुल, इंग्लिश टी के रूप में तो आजकल चाय कितनी पॉपुलर है।
1: और भारत में तो लोगों ने कभी चाय का स्वाद चखा ही नहीं था।
2: वो तो ब्रिटिश, उनके जरिए चाय वहाँ पहुंची थी।
1: उन्होंने सबसे पहले भारत में कुछ पौधों की खोज की, फिर उसको विकसित किया, और उनके पास भारतीय लोग थे, गुलाम थे, उनसे खेती

करवाई, और जब इसका बिजनेस चलने लगा तो जो थर्ड ग्रेड की चाय थी वो भारत में सस्ती दी गई बेचने के लिए, और भारतीयों ने जब एक बार स्वाद लग गया तो लग गया। इसीलिए आप देखिए पूरी दुनिया में भारतीय लोग चाय में दूध ज्यादा पी के मिलाते हैं, पूरी दुनिया में दूध का परसेंट

0: कभी कभी तो वह दुकानदार से कहता है मलाई मार के चाय देना, मतलब चाय जब बन जाए तो उसके ऊपर एक मोटी मलाई डालकर,
1: इसका स्वाद ही अलग है अलका जी, अगर आपने कभी चखा है तो।
0: मैंने तो चाय पी नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
1: आपने कभी नहीं पी?
0: जिसने पी ली वो नहीं छोड़ सकेगा। तो मैंने जब पी ही नहीं तो स्वाद की नगरी में गई नहीं मैं। लेकिन जब पीने वालों को देखती हूँ तो समझ आती है कि सचमुच चाय के लिए इंटरनेशनल डे होना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, और अभी तो चाय तो मतलब कि दुनिया भर में इस तरह से पॉपुलर हो गई है कि कभी कभार लगता है कि कॉफी को पीछे छोड़ देती है। हाँ, चाय है ना,
0: कॉफी इसीलिए। और कॉफी से क्या होता है, चाय आपको उतना नींद से या
1: परेशानी नहीं।
0: लेकिन कॉफी कभी कभी जो लोग पीते हैं उनको नींद बिल्कुल नहीं आती है, तो कॉफी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। हाँ। लेकिन चाय ऐसे है कि आप गर्म पानी की तरह पी
1: मतलब कि आपके शरीर में वो घुल जाती है।
0: बिल्कुल। तो इसीलिए अब 21 मई को चाय दिवस मना, आप सोचो चाय का दिवस बन गया, अब एक दिन पानी का भी होना चाहिए, पर्यावरण दिवस। हाँ, वाटर डे है। अब चाय दिवस बनाया क्यों, चाय पीने वालों के लिए या चाय उगाने वालों के लिए? मेरे ख्याल से दोनों के लिए था, मतलब जो श्रमिक वहाँ काम करते हैं उनकी सुरक्षा को देखा जाए, ऐसा ना हो कि उनका शोषण हो, उनको मुआवजा कम मिले, उनके यूनियंस होने चाहिए जो उनके लिए काम कर सके, जो उनके कामकाज की परिस्थितियां, क्योंकि उनको सुबह सुबह उठ के काम शुरू करना पड़ता है, कामकाज की परिस्थितियों को देखा जाए। फिर जो व्यापार हो रहा है चाय का, कभी कभी जो ओनर है वह ज्यादा लाभ लेता है और जो बेचारा मजदूर है उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखने के लिए और चाय की क्वालिटी में गुणवत्ता में सुधार के देखने के लिए ही 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया है।
1: और चाय की हम बात करते हैं तो मॉरिशस भी अपने आप में अपने प्रकार के चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है,
0: विदेशों में पसंद करते हैं।
1: हाँ, वनीला वाली फ्लेवर वाली चाय,
0: फ्लेवर क्वालिटी वाली। आप देखेंगे मॉरिशस में भी जो चाय मिलती है मॉरिशस की, उसकी पैकेजिंग में क्वालिटी अलग अलग है, उसके रेट अलग अलग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि वो जो पत्तियां होती हैं
1: उसके हिसाब से,
0: बाद में जो झड़ी हुई या बचा कुचा होता है वो पत्तियां सबसे सस्ती होती है, वो जो पैकेट होते हैं। तो लेकिन चाय तो चाहिए ना, किसी भी रूप में हो चाय तो चाहिए। इसीलिए एक नया शब्द हिंदी में कॉइन हुआ है, पानी की प्यास चाय की चाहास।
1: चले अब बारी एक और गाने की लगता है,
0: सुनते हैं।
2: You're listening to RM3 Radio, Man.

0: इतिहास के झरोकों से।
1: दोस्तों किसी का दोस्ती करनी हो या रिश्ते के लिए बुलाना हो तो यही हम कहते हैं भाई एक चाय पर आ जाइए। अब वो खाली चाय नहीं होती, उसके साथ चाय के साथ वो प्रेम व्यवहार, वह आव भगत, ये सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। जब हम कहते हैं आपके साथ एक चाय पर चलेंगे, मतलब एक दोस्ती। किसी के साथ व्यापार बढ़ाना हो तब भी हम कहते हैं चलो कहीं बाहर चल के चाय पीते हैं। चाय पीने का मतलब केवल चाय पीना नहीं, चाय पीते हुए बहुत सी बातें करना है। तो चाय पीना, चलो थोड़ी चाय पिए, चलो इकट्ठे बैठ कर चाय पिए, चलो तुम्हारे साथ एक चाय हो जाए, अरे हमारे घर पर चाय पर आना,

0: चलो बाहर चलकर चाय पीते, इन सब का बड़ा ही लक्ष्यार्थ है। वो चाय पर जब हम किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि लड़का लड़की डेटिंग पे जा रहे हैं, कि परिवार परिवार को बुला रहा है, कि हम व्यापार की बात करने जा रहे हैं, या कुछ समय आपस में स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस चाय पीने के पीछे जीवन के बहुत सारे अर्थ और लक्ष्य छिपे हुए होते हैं। चीन से जब चाय चली तो जापानी बौद्ध भिक्षु, उन लोगों ने जब चीन में इस हर्बल टी को पिया तो कुछ बीज वे अपने साथ लेके जापान में चले गए, और जब वहां पर खेती की तो जापान की मिट्टी ने चाय के बीजों को खूब मौका दिया फलने फूलने का, और जापान में भी चाय चलने लगी। आज बौद्ध भिक्षुओं में भी चाय बहुत प्रचलित है, और इंग्लैंड की तो पूछिए ही मत। इंग्लैंड ने चाय को बिल्कुल नहीं शुरू में अपनाया था, लेकिन जो चार्ल्स द्वितीय थे उनकी प्रेमिका एक पुर्तगाली थी, पुर्तगाली या पुर्तगीज राजकुमारी थी, वहाँ पर चाय बहुत थी और ये लड़की चाय बहुत पसंद करती थी। इस कारण उसने अपने देश से कुछ चाय के बीज, पत्तियाँ, चाय मंगवाई और उसने कुछ अपनी गैदरिंग्स में वह चाय सबको परोसी, और जब उसने परोसी तो लोगों ने बहुत सराहा। बस वहीं से इंग्लैंड में चाय का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। तो सबसे पहले चार्ल्स द्वितीय की जो प्रेमिका थी, पुर्तगीज प्रेमिका, उसी ने चाय का वहां पे व्यवहार में लाना, जिसे कहते हैं, शुरू किया था। तो श्रोताओं, आपके घर में भी चाय तो बन ही रही होगी। आज आप कैसी चाय पी रहे हैं? हर्बल टी, ब्लैक टी, बढ़िया टी, या साधारण चाय, या कुछ स्पेशल समोसों के साथ चाय?
1: आजकल तो चाय वजन कम करने के लिए भी बनती है,
0: हाँ, है ना? जो कितने, हर्बल टी है जिसमें हाँ,
1: कितने लोगों स्लिमिंग टी रात को सोने के पहले लेते हैं।
0: समय की हाँ, है। हाँ। एक बैड गुड मॉर्निंग की जगह बैड मॉर्निंग कहना चाहिए कि आप ब्रश भी नहीं करते चाय पीना चाहते हैं।
1: बैड टी
0: जिसको कहना चाहिए। तो आप कौन सी चाय पसंद करते हैं? और आप सभी को पता है जब खाने की भूख लगी हम चाय नहीं पीते, अगर चाय पी ले तो खाना डिले हो जाता है। इसका मतलब चाय कहीं ना कहीं हमारी भूख को मारती है।
1: और बहुत से लोगों को ये भी आदत होती है कि खाना खाने के बाद एक कप चाय भी पी ले, है ना?
0: उनका जैसे पूर्णाहुति होती है कि भाई अब एक कप चाय आनी चाहिए, यहाँ तक कि रात के डिनर के बाद भी भाई अभी सब पूरा नहीं हुआ, अब एक कप चाय,
1: ताकि बातें थोड़ी सी और लंबी चले।
0: तो चाय के बहाने जिंदगी को हम जीते हैं। सचमुच चाय रोमांस लेकर आती है, चाय वक्त बिताती है। कभी आप बड़े उदास हो, एक कप चाय लेके बैठ जाइए, देखिए चाय के प्याले में कितनी यादें आने लगती हैं और दिमाग में कितना कुछ घुलने लगता है, अनेक से रंग उभरने लगते हैं। तो ये चाय जो है ना, जीवन की आज व्याख्या करती है। इतिहास के झरोखों में जाए तो किसी ने चाय को खोजा नहीं, किसी ने चाय को पिलाया पिया नहीं, अपने आप ही चाय महारानी हमारे घरों की रानी बन गई।
1: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को, जिनको, जो लोग शायद चाय के शौकीन है, कोई ना कोई चाय से जुड़ा किस्सा उनका जरूर होगा ना। किसी को सवेरे की अपनी चाय लेकर बैठना पसंद है, तो कोई शाम को अकेले बैठकर चाय पी रहा है। ये नहीं कि उदास है या कोई,
0: पर तो बस लोग ये कहते हैं कि भाई जो शादी नहीं कर रहे, भाई कर लो शादी, चाय पीने वाला भी तो साथ में कोई होना चाहिए।
1: चलिए,
0: आप चाय को कैसे सोचते हैं जरा सोचकर फोन करके हमें बताइए 4028070 पर। तब तक ये गीत सुनिए और सुलझाइए अपना मसला।
2: You're listening to RM3 Radio, मन

0: चाय दिवस कब मनाया गया सबसे पहले और कौन से देश में? 2005 में सबसे पहले भारत के दिल्ली केंद्र शासित राज्य में मनाया गया। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसी दिन पहली बार पूरी दुनिया में ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे इसको मनाया गया। तो ये श्रेय भारत को ही गया क्योंकि भारत में चाय की बहुत खपत होती है। चाय वहां पर आप समझिए एक मजदूर से लेकर या गरीब आदमी से लेकर अमीर से अमीर तक सभी उसका सेवन करते हैं। और चाय गरीब की बहुत बड़ी साथी है। ठंड लग रही हो, वह एक ढाबे की चाय एक कुल्लड़ या एक कप पी लेता है तो उसे अच्छा लगता है। कुछ आपस में लोग बातचीत कर रहे हो, एक कुल्लड़ चाय, एक छोटा कप चाय जीवन दे देता है। तो ये जो चाय की जो कल्चर है वह हमारे समाज को जोड़ती भी है। आज की दुनिया में जब हम इतने अकेलापन महसूस करते हैं, लोगों में डिप्रेशन आ जाता है क्योंकि आज हम अकेले चाय पी रहे हैं। यदि हम सबके साथ बैठकर चाय पिए तो देखिए कितनी गप्पे होती हैं। लेकिन आज मोबाइल की कल्चर ने भी हमको कहीं अकेला कर दिया है। हम स्क्रीन पर तो दुकेले तिकेले बहुले होते हैं लेकिन जब चाय की कल्चर को हम ख़त्म करते हैं और सिर्फ अपने आप बैठ के, और आजकल जैसे मॉल में जाते हैं तो अपना चाय का प्रिपेयर्ड कप ले लेते हैं या ठंडी वाली कोल्ड टी ले लेते हैं और अपने मोबाइल के साथ बैठ जाते हैं। आप सोचिए जहाँ सब लोग बैठ के चाय पीते हैं उसमें बैठ के बातचीत का जो मज़ा, आपस में ठहाके लगाना, किसी का मजाक करना। इसीलिए वो जो चाय की जो संस्कृति या सभ्यता है ना, वो समाज को जोड़ने वाली सभ्यता है।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं चाय एक छोटे स्तर पर बिक रही हो या बड़े स्तर पर, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रोजगार का जरिया है चाय अपने आप में।
0: ट्रेन में तो पूछिए ही मत, चाय चाय कॉफी कॉफी की आवाज व्यक्ति को आनंदित करती है और लगातार हर आधे पौने घंटे में आपको एक राउंड मिलता है। आप जितनी बार मर्जी लीजिए या ना लीजिए आपकी मर्जी, लेकिन चाय जैसे आम आदमी का संबल है।
1: कितना तो सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया के जरिए हम कनेक्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि लोग अपने काम नौकरी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं तो एक चाय का एक छोटा सा कैफे या एक रेस्टोरेंट जैसे डाल देते हैं और एक बड़ा कमाई का जरिया बन गया है उनका।
0: भारत में तो कोई छोटा ढाबा ही डाल देता है तो उसको कम से कम एक चाय के कारण उसको उसकी आय होने लगती है। और ऐसे ही यूरोपियन देशों में जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखिए उसमें कितने जवान बच्चे काम कर रहे होते हैं जहाँ चाय या कॉफी सर्व की जाती है और वे पढ़ रहे होते हैं, एक पॉकेट मनी के लिए काम करते हैं। तो ये जो चाय है जहाँ वो श्रमिकों को रोजगार दे रही है, वहाँ जहाँ पर चाय पिलाई जाती है वहाँ पर भी कितनों को रोजगार दे रही है।
1: बिल्कुल हाँ। और कहीं ना कहीं मॉरिशस में भी अपने आप में चाय की खेती तो पहले कितनी हुआ करती थी,
0: अभी
1: समय के साथ जो है यहाँ की चाय जब विदेशों में जाते हैं, खासकर जो लोग यहाँ के बाहर रहते हैं तो लोग पसंद करते हैं उसे,
0: निर्यात को बढ़ाना चाहते हैं। और निर्यात को बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी चाहिए। अब क्वालिटी के लिए उस खेती में उन चीजों को डालना या उस पर प्रयोग लगातार हो रहे हैं और हमारा कृषि विभाग इस पे करता ही रहता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जो चाय श्रमिक होते हैं उनकी जिंदगी आसान नहीं होती।
1: बिल्कुल, बहुत मुश्किल होती है। कहीं ना कहीं चाय की खेती भी अपने आप में कितनी सुंदर है, कितनी फिल्मों में उसको कितनी खूबसूरती से दिखाया जाता है, है ना।
0: और अभी आप मान लीजिए साउथ की तरफ जाएं तो आप मॉरिशस
1: गंगा तालाब से जब हम निकलते हैं, सीनिक व्यू जो है,
0: वो जो व्यू है चाय की खेती आप देखते हैं, ढलान जैसे,
1: कितने लोग रुक कर वहाँ तस्वीरें लेते हैं यादगार ना, मेमोरी के रूप में रखने के लिए।
0: भारत में असम, असम टी आज पूरी दुनिया में जानी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: दार्जिलिंग की टी पूरी दुनिया में उसका निर्यात होता है। कुछ क्षेत्रों की मिट्टी और वहाँ की उपज ही विशेष है
1: जी।
0: उसके कारण वहाँ की चाय की क्वालिटी भी अलग है,
1: उसका स्वाद ही अलग होता है।
0: दार्जिलिंग टी, असम टी, लिप्टन टी, ये सारी चाय जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पूरे देशों में बिक रही है। तो श्रोताओं, चाय में बड़ी ताकत है, लेकिन चाय इतिहास के झरोखों से झांकती झांकती भी आज के खुले आसमान में पहुंच चुकी है। और आज हर देश में उसका एक इतिहास है कि कैसे पहुंची, चाहे जिन लोगों ने शासन किया उनके माध्यम से या वहां के मजदूरों से काम करवाया गया और धीरे धीरे उस मिट्टी ने चाय को अपना लिया। चाय के बीच कभी बहुत भिक्षुओं के सहारे तो कभी पर्यटकों के सहारे हर देश में पहुंच गए।
1: देखिए चाय जहाँ जहाँ गई उस मतलब उस देश की बन गई, वहाँ के लोगों की बन गई,
0: अपने मुताबिक उसका रूप बदल दिया।
1: लेकिन हर एक देश ने अपनी यूनिकनेस को बनाए रखा। जैसे चाइना की बात करें तो आज भी वो उनकी हर्बल टी पॉपुलर है,
0: बहुत प्रसिद्ध है
1: ना। जैसे आपने जापान की बात की, भारत के तो कितने प्रांतों में अलग अलग रूप में ना,
0: प्रांतों में अलग अलग ढंग से पीते हैं।

0: पिंक टी है, कई जगहों पे तो नमकीन वाली चाय भी बिकती है।
1: बिल्कुल, और अब तो आयुर्वेदिक चाय भी बनने लग गई है, उसमें आयुर्वेदिक मसाले मुलठी वगैरह डालकर वो उसका एक अलग ही स्वाद है, उसमें भी चीनी डालो एक अलग स्वाद आता है। तो मतलब चाय ने इतने रूप ले लिए हैं कि इतिहास के पन्नों में बीज से शुरू हुई, पत्तियों से अचानक उसकी पहचान की गई, लेकिन आज उसके हर देश के मुताबिक उसके रूप अलग अलग हो चुके हैं।
0: चलिए अभी के लिए एक और गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।
2: You're listening to RM3 Radio.

0: इतिहास के झरोखों से
1: चाय पी रहे होंगे आप और क्या सुगंध आ रही होगी आपकी चाय का धुआं मेरे तक आ रहा है। सचमुच गर्मा गर्म चाय का आनंद और क्या सुकून पा रहे होंगे। यही तो चाय का कमाल है, उस गर्माहट में भी एक सुकून है। बस चाय की गर्माहट, सुकून और सुगंध यही तो आकर्षित करती है। और इतिहास के झरोखों से चाय के बीज, चाय की पत्तियां झांकते झांकते झांकते आज हर देश तक पहुंच चुकी हैं। तो मजा लीजिए चाय का और हमें विदा दीजिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आज के लिए बस इतना ही। चाय पर बात करते करते प्रोग्राम में एक अलग ही जैसे रंग घुल गया ना अलका जी,
1: चाय का स्वाद बिना चाय के आ गया।
2: तो चलिए अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। अगले सप्ताह तो मातृ दिवस का सप्ताह होगा,
1: तो कुछ खास करेंगे।
2: तो चलिए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। 3 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम जो सवेरे चलाया गया वही रिब्रॉडकास्ट होगा। अगले सप्ताह तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार आप सभी को।
3: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार, 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। खराब मौसम से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मूसलाधार वर्षा की स्थिति में अब सरकारी, निजी और शिक्षा सेक्टर के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लागू किया गया है। ये फैसला कल कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश के रोजगार बाजार में सुधार दर्ज किया जा रहा है। बेरोजगारी दर में गिरावट आई है, जो कई आर्थिक सेक्टरों में तेज होती गतिविधियों का संकेत है। कैबिनेट ने मॉरिशस कामगारों के कनाडा में रोजगार को लेकर श्रम मंत्रालय को हरी झंडी दे दी है। ये पहल श्रमिक गतिशीलता परियोजना और अन्य समान कार्यक्रमों के तहत शुरू की जा रही है। रिफॉर्म पार्टी के नेता गुशीबादे ने सरकार पर कई चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने आज एबन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान आगामी बजट को लेकर कई आर्थिक प्रस्ताव भी सामने रखे। मॉरिशस और अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली। मॉरिशस पुलिस फोर्स और न्यू मैक्सिको नेशनल गार्ड के बीच आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आपातकालीन हस्तक्षेप को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर

0: की गई। अफ्रीकी विमानन जगत की दिग्गज विमान सेवा इथियोपियन एयरलाइंस अब मॉरिशस के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। अफ्रीका की सबसे बड़ी एयरलाइन को मॉरिशस के लिए संचालन की अनुमति दे दी गई है। चीन के शानशी प्रांत में एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 को पार कर गई है। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत कार्य जारी है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। मेजोनेट रोड रिविया दिसोंगी में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें रामदास के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे जेसन जगनंदन के मकान रिविया दिसोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। केवल नगर बेलरीव में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड की धर्मराज बागेराची की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें आदू के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान केवल नगर बेलरीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा पर आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मॉरिशस में ड्रग्स और ड्रग्स की समस्या, उसका क्या असर है हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवारों पर, और किस तरह से इन सभी समस्याओं से निपटा जा सकता है। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर नीतीश संत। नमस्कार डॉक्टर जी।
1: नमस्कार जानकी जी।
0: और डॉक्टर संत एक मेडिकल अफसर हैं, साथ में आप ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिवीजन के कोऑर्डिनेटर हैं जो नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल का एक विभाग है। सबसे पहले जब हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आपने समय निकालकर इस प्रोग्राम में भाग लेने की स्वीकृति दी। आप हमें ये बताइए कि ड्रग्स जो आज हर बच्चे के लफ्ज में है, हर एक व्यक्ति को पता है कि ड्रग्स से क्या, इसका क्या परिणाम होता है, क्या नतीजे सामने आ रहे हैं। एक समय था जब ड्रग्स के बारे में बात करते थे तो बहुतों को लगता था कि ये हमारी समस्या नहीं है, लेकिन आज घर से बाहर निकलते ही आपको ड्रग्स की समस्या साफ साफ नज़र आ रहा है, लोगों के चेहरे से, लोगों के चाल चलन से। और फिर जो समस्याएं समाज में हो रही हैं, चोरी, खून खराबा, ये सारी समस्याएं हम सबको छू रही हैं। और फिर क्यों ना कहें हमारे घर में भी आजकल ये समस्याएं उपस्थित हो चुकी हैं। तो फिर ये ड्रग्स हैं क्या चीज़, क्यों अपनी जान को दांव पर लगाकर लोग ड्रग्स के पीछे भाग रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये बताइए।
1: सबसे पहले हम शुरू करते हैं ड्रग्स क्या हैं, इसको समझना चाहिए। ड्रग्स वो सब्सटेंसेस हैं जो शरीर, दिमाग और व्यवहार, द बॉडी, द माइंड एंड द बिहेवियर, तीनों को प्रभावित करता है
0: जी।
1: तो पहले के ज़माने में इस पर ज़्यादा विज्ञान ने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, लेकिन पिछले डिकेड्स ऐसे वो बहुत एविडेंस बेस रिसर्चर्स हो रहे हैं।
0: मतलब इस तरह के रिसर्च जहाँ पर हमको साफ साफ प्रमाण मिल रहा है,
1: प्रमाण मिल रहा है क्या है ये ड्रग्स
0: जी?
1: ड्रग्स एक सब्सटेंस है। पहले माना जाता था, जाते थे कि ड्रग्स एक आदत है, एक बुरी आदत है
0: जी, आदत है, नशा है, ये समझते थे,
1: डिजीज ऑफ चॉइस। लेकिन आज के रिसर्चर्स के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक बीमारी है। सो ड्रग्स एडिक्शन को पैदा करते हैं और एडिक्शन इज अ क्रोनिक ब्रेन डिजीज। ओके okay? और ये साइंस, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि डिजीज़ है और इसके लिए हमें एक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसी कारण जो व्यक्ति लोग, वो जैसे आपने कहा था

0: ये सारे सामाजिक इफेक्ट्स होंगे, जैसे चोरी, खून, वायलेंस, ये सब होते हैं. तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए. अब हमें
1: तो यहाँ जब आप कह रहे हैं कि ड्रग एक एडिक्शन है, एक बीमारी है, और इस बीमारी से बचने के लिए आपको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि ये जो बीमारी है ये लोगों, मतलब कुछ लोगों में है पहले से ये प्रवृत्ति कि वो एडिक्टेड हो जाए और कुछ लोगों में नहीं है, या कोई भी इस समस्या से जुड़ सकता है, कोई भी इस एडिक्शन में पड़ सकता है?
0: इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इसका कारण मालूम होना चाहिए. तो क्या कारण है, क्या मॉडल हम प्रयोग करते हैं, जैसे बोलते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल. इसका एक सीधी जवाब नहीं है. ओके, बायोसाइकोसोशल मॉडल है. कुछ लोगों के लिए ये एक बीमारी है, जेनेटिक हो सकता है. जैसे मैंने कहा, शरीर, दिमाग और सोशल तीन फैक्टर्स हैं. शरीर में कोई डेफिसिट है, कोई बीमारी है, तो इसीलिए वो लोग ये लेते हैं. और जो मानसिक फैक्टर्स होता है, मेंटल फैक्टर्स, वो बहुत कमन है. और स्टडीज़ ने ये प्रूव किया कि यही सबसे ज़्यादा कारण होते हैं कि क्यों लोग ड्रग्स लेते हैं.
1: मतलब कि मानसिक, जब आप कह रहे हैं
0: मेंटल कॉजेज,
1: स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी,
0: चिंता, परेशानी, मानसिक बीमारियां जैसे साइकोसिस, एंग्जाइटी, वो भी. और बच्चों में स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजीज, वो जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं, वो भी कारण हो सकता है क्यों एक, जब एक व्यक्ति बड़ा होता है तो ड्रग्स को यूज करता है. अब हमें ये पता करना चाहिए ये कॉजेज हैं, लेकिन क्या फैक्टर्स हैं जो पुश करते हैं व्यक्ति को ड्रग्स लेने के लिए.
1: आपने तीन कहा था,
0: तीन,
1: एक शारीरिक, एक मानसिक
0: और तीसरा सामाजिक, सोशल फैक्टर्स.
1: सामाजिक
0: फैक्टर्स,
1: गरीबी,
0: बेरोजगारी, लैक ऑफ एजुकेशन, निगेटिव पीयर इन्फ्लुएंस,
1: मतलब कि आपके चारों ओर लोग ड्रग्स ले रहे हैं, आप भी इसका, इससे प्रभावित हो सकते हैं.
0: हमें ये समझना चाहिए जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं. पहले प्रकार जो मेंटली फिट हैं, रेजिलियंट हैं, उसका एजुकेशन ठीक हुआ, कोई बीमारी नहीं है, मानसिक बीमारी नहीं है, कुछ फ्रेमवर्क है, एनकैडरमेंट है, तो डिस्पाइट सामाजिक फैक्टर्स होंगे तो वो व्यक्ति ड्रग्स नहीं लेंगे, रेजिलियंट होगा. लेकिन अगर आगे से ही, जैसे मैंने बताया, बायो और साइकोसोशल वल्नरेबिलिटीज हैं, तो सामाजिक फैक्टर्स उसको बढ़ावा देते हैं, फिर ये एडिक्शन पैदा होता है.
1: मतलब व्यक्ति जितना कमज़ोर होगा, व्यक्ति में जितनी कमियां होंगी, शिक्षा को लेकर, पारिवारिक जो माहौल है उसको लेकर, मानसिक स्थिति है उसको लेकर, जितनी भी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, और उसके साथ साथ अगर आपके इर्द गिर्द लोग ड्रग्स ले रहे हैं तो इसका असर बहुत जल्द पड़ता है. बहुत लोग इस स्थिति में इस एडिक्शन की ओर बढ़ सकते हैं.
0: हाँ बिल्कुल, हमें ये डिफरेंस करना चाहिए. जब जैसे आपने बोला, बहुत क्वेश्चन है हमारे समाज है में क्यों ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स को बैन करना चाहिए, एंट्री को बैन करना चाहिए, या शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं हुआ, या फैमिली में कोई खोट है, कोई कमी है, या व्यक्ति में कोई कमी है. लेकिन हमें एक, वी कॉन्ट ब्लेम वन फैक्टर, या हमें एक फैक्टर को
1: हम सारी जिम्मेदारी
0: नहीं बना सकते.
1: जी हाँ, एक कारण पर नहीं
0: तो जैसे
1: सकते.
0: मैंने बोला, हमें ये समझना चाहिए कि एक बायोसाइकोसोशल अप्रोच है, भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्टर्स होते हैं जो इस एडिक्शन को पैदा करते हैं. और कैसे पैदा होता है वो, एक जैसे एक दफ़ा एक आदमी एक ड्रग्स लेंगे, हीरोइन, ब्राउन शुगर लेंगे, वो एडिक्टेड नहीं होंगे. ओके, लेकिन समय के साथ एडिक्शन का फेजेस होता है, उसका सेवेरिटी बढ़ता है. और मैं ये यहाँ बोलना चाहता हूँ कि इसमें चार चरणों हैं, फोर स्टेजेस. पहले उत्साह, जैसे आपने बोला रिक्रिएशनल यूफोरिया. ओके, वो एक आदमी लेंगे तो वो एडिक्टेड नहीं होगा. फिर जो दूसरा चरण है वो है

0: विस्तार कंटिन्यूएशन, अगर वो जो आदमी बाईसा को सोशल फैक्टर्स के वजह से ड्रग्स रेगुलरली लेता है रिक्रिएशनल ओकेजन्स में होता है, तो वो विस्तारिक कंटिन्यूएशन को पैदा करता है. फिर आता है तीसरा चरण हाँ, नकारात्मक नतीजे निगेटिव कंसिक्वेंसेस होता है. वो डिस्पाइट वो आदमी निगेटिव कंसिक्वेंसेस को पहचानता है, उसके पैसे नहीं होंगे, वो चोरी करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू करता है ड्रग्स यूज के लिए
1: लेना
0: हाँ. और फिर जो अंतिम चरण है वो है मजबूरी कंपल्शन, और ये करैक्टरिस्टिक ये विशेषता है साइकेट्रिक एक करैक्टरिस्टिक है. जब ये प्रेजेंट होता है ये जो मजबूरी द कंपल्शन ऑफ टेकिंग ड्रग्स, तब हम ये बता सकते हैं कि द डिजीज हैज बीन एस्टैब्लिश, वो बीमारी है,
1: वो उसको लत लग चुकी है, एडिक्टेड हो चुका है.
0: और इस समय उस व्यक्ति को एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, और ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा कैसे.
1: जरूर आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ड्रग्स की समस्याओं पर बात कर रहे हैं. जैसे ही ड्रग्स का नाम हम लेते हैं तो हजारों सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं. आज के प्रोग्राम को शुरू करने में ही हमने बहुत नियमित रूप से सवाल तय किए थे कि हम किस तरह से डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे और वो जवाब देंगे. लेकिन जैसा कि आपने देखा, ड्रग्स की समस्या, जैसे ही इस समस्या पर बात करते हैं तो हजारों सवाल हैं इससे जुड़े, जिसके जवाब हम पाना चाहते हैं. और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नितीश संत, जो कि नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल से हैं, और वहाँ के रिहैबिलिटेशन सेंटर डिवीजन के ये कोऑर्डिनेटर हैं, और आप पेशे से एक डॉक्टर हैं, और आज हमारे सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं ड्रग्स से जुड़े. और इस विषय पर हम गहराई के साथ आगे

0: की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज हम ड्रग्स की समस्याओं पर बात कर रहे हैं और हमारे मेहमान हैं मेडिकल अफसर जो कि ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिवीजन नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल से हैं और आप हैं डॉक्टर नितेश संत और आप हमें इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं जो कि ड्रग्स की समस्याओं से जुड़ी है। डॉक्टर साहब आप मानेंगे कि ये जो ड्रग्स की समस्या है आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, राष्ट्रीय सभा हो, चाहे वो समाज में हो, सड़क पर हो, कोई भी रेडियो का चैनल आप चुन कीजिए, आज कल इसी पर बात कर रहे हैं क्योंकि ये सच में दिमाग की तरह हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। अभी आपने एडिक्शन की बात की, आपने तीन चरणों की बात की जिससे कि एक व्यक्ति इस समस्या से जुड़ सकता है और वह है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कमजोरी। और लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि चाहे वह व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे वह व्यक्ति कामकाजी हो, किसी भी अच्छे ओहदे पर क्यों ना हो, आप मानेंगे कि इस समस्या के शिकार सभी हो रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो महिला हो, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो हमें आप इस स्थिति के बारे में बताइए, ये जो वर्तमान स्थिति है जिससे सभी लोग परिचित हैं, आप एक डॉक्टर के हैसियत से जो कि एक रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट डिवीजन से हैं, आप इस हैसियत से इस पर प्रकाश डालिए।
1: जैसे आपने बोला, आपने ठीक बोला, जो ड्रग का समस्या है वो ऑल लेयर्स ऑफ द सोसाइटी पर प्रभावित हुआ है
0: जी।
1: लेकिन जो इल इफेक्ट्स हैं, नकारात्मक प्रभाव हैं, वो हमें ओल्ड लेयर्स में दिखाई नहीं देता
0: दे,
1: क्योंकि हमने समझा कि एडिक्शन क्या होता है, वो ड्रग्स क्या होता है, सब्सटेंसेस क्या होती हैं, और जो प्रभाव हैं, जैसे हमने बोला चरण हैं, स्टेजेस हैं, वो शुरू में आ सकता है या बाद में आ सकते हैं। इस पर ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए मैं रिफरेंस करूंगा जो अध्ययन मॉरिशस ने किया, स्टडीज़ ने किया। स्टडीज़ बोलते हैं कि

0: हमारे समाज में, हमारे टापू में लगभग 55,000 लोग ने एक ड्रग का प्रयोग किया एक बार उनके जीवन में,
1: इसको चखा है
0: उसके। हाँ, मैंने नहीं बोला क्या एडिक्टेड है, हमने ये समझा, ये डिफरेंट बात है। वो उसको लिया है, जो इसका प्रयोग किया है ड्रग्स, और जो स्टैटिस्टिक बोलते हैं वो 11% हमारे जो युवक संघ में प्रेजेंट हैं, युवकों वो यूज़ करते हैं, चाहे वो एडिक्टेड हो या नहीं हो, वो यूज़ करते हैं 11%। और हमने देखा कि लगभग 7-8% महिलाओं में भी प्रेजेंट हैं
1: जी।
0: और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो फिगर्स हैं वो 2-3 साल से हैं, और नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल, हमारे एजेंसी और भी फ्यूचर अध्ययन, फ्यूचर स्टडीज का में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमने शुरू कर दिया यह काम। तो मैं बोलना चाहूँगा जो स्टडीज़ आ रहे हैं हमारे नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल से, वो हैं स्टडीज़ अमंग सेकेंडरी स्टूडेंट्स टू नो द प्रिवेलेंस ऑफ ड्रग्स एंड कप सर्वे, और जो तीसरा स्टडीज़ हैं वो हैं हमारे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो हम बाद में बात करेंगे, वो उसका इफेक्टिवनेस, उसका वो इफेक्टिव है, उसका प्रभाव क्या है, नतीजे क्या हैं, उस पर भी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण में हम जा रहे हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं पिछले अध्ययनों से कि ये जैसे आपने बोला, ये जो ड्रग का समस्या है वो प्रेजेंट है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सोसाइटी में।
1: और इसका ये जो ड्रग्स हैं, आपने कहा कि इस पर अध्ययन चल रहे हैं, साथ में जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये भी सवाल उठता है कि अध्ययन बहुत समय से चल रहा है, अलग अलग स्तर पर जब ये हमारे समाज को प्रभावित करता था, लेकिन आज जो हमारे सामने हैं, जो दृश्य हमारे सामने हैं, हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक ऐसी समस्या है जो बहुत तेज़ी से हमारे समाज को छू चुकी है, हमारे समाज को प्रभावित करने लगा है, और जल्द से जल्द इस पर काबू पाने की आवश्यकता है। तो क्या अध्ययन के साथ साथ आप लोग इस पर इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, इसको लागू भी कर रहे हैं?
0: इम्प्लीमेंट का जो सेक्शन है वो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन, वो ट्रीटमेंट जैसे आपने बोला इस पर है, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ हमारे नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल पर। वो इस पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर नायक, और इस उसके नीचे डिविजन्स होते हैं। तो पहला डिविजन है वो ड्रग सप्लाई डिविजन, ड्रग सप्लाई रिडक्शन डिविजन। तो वो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर से काम करते हैं ताकि ड्रग्स हमारे समाज में न बढ़े।
1: मतलब कि ड्रग्स की जो समस्या है उससे निपटने के लिए न सिर्फ आपका ये जो डिवीजन है, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन डिवीजन नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल का, बल्कि आपके साथ साथ बहुत से अन्य साझेदार, पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स काम करते हैं।
0: हाँ, नाडेक वो एक एजेंसी है, इसमें अन्य डिविजन्स होते हैं जैसे आपने बोला, और इन अन्य डिविजन्स में हम डिफरेंट पार्टनर्स, स्टेक होल्डर से काम करते हैं एक नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन प्लान करने के लिए। जो पहला डिविजन है वो ड्रग सप्लाई रिडक्शन है, वो उस ये डिवीजन काम करते हैं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे पुलिस, एमओआरए, कस्टम्स। वो देखते हैं कैसे क्योंकि ड्रग्स जो आते हैं वो बाहर से आते हैं और मॉरीशस में भी वो उसका मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे सिंथेटिक ड्रग्स। तो इस पर काबू करना चाहिए ताकि ये जो ड्रग्स अवेलेबल ना हो। ये पहला डिवीजन। दूसरा डिवीजन है वो डिवीजन वो है पॉलिसी और रिसर्च डिवीजन। पॉलिसी रिसर्च डिवीजन में हमें जैसे हमने बात किया अध्ययनों, वो रिसर्च एविडेंस बेस जो नेशनल स्टेटस है वो इस पर हमें फिगर्स होना चाहिए ताकि हमें पता चले किस दृष्टि में हमें जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। इसीलिए इसके लिए हमें एक टीम है, डिवीजन है रिसर्च के लिए, रिसर्च और पॉलिसी। जब रिसर्च हो जाएंगे तो पॉलिसी का हम डायरेक्ट इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन। फिर तीसरा डिवीजन है वो जो मेरा डिवीजन, वो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन, हमें ड्रग सप्लाई

0: रिडक्शन बोला, फिर ड्रग डिमांड रिडक्शन, जैसे मैंने बोला पहले शुरू से, वो हमें अपने मॉरिशन जनता को रेजिलिएंट बनना चाहिए. तो ड्रग डिमांड रिडक्शन में दो डिविजन्स हैं, ट्रीटमेंट डिविजन और प्रिवेंशन डिविजन. प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में मैं बताऊंगा क्या क्या स्टेक होल्डर्स और किन मिनिस्ट्री से हम काम करते हैं. और जो प्रिवेंशन डिवीजन है वो एजुकेशन, अवेयरनेस, नेशनल करिकुलम, ये सब, इन सब में काम करते हैं. अन्य भी मिनिस्ट्रीज के साथ भी काम करते हैं, जैसे कि शिक्षा का मंत्रालय, वो टर्शियरी एजुकेशन का मंत्रालय और स्पोर्ट्स का मंत्रालय, जहाँ पर हम जनता के नज़दीक हो और हमें उन लोगों को मेंटल टूल्स दे सकते हैं, लाइफ स्किल दे सकते हैं. तो इसी दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो एक नाडेक एक नेशनल प्रिवेंशन प्रोग्राम की ओर बढ़ रही है, ताकि एक ही कोऑर्डिनेटेड प्लान के अनुसार से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स द सेम ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं. ओके, और जो लॉस डिवीजन है वो है HIV एंड AIDS केयर कोऑर्डिनेशन डिवीजन, क्योंकि एक कोलैटरल डैमेज है जो ड्रग यूज करते हैं. जैसे हमने बोला, ड्रग्स न केवल एक बीमारी ऑफ चॉइस है, लेकिन डिफरेंट डोमेन्स का भी उसका संबंध होता है. तो HIV और जो अन्य भी इन्फेक्शस डिजीज हैं, जैसे हेपेटाइटिस, ये सब बीमारियों को हम देखते हैं कैसे एक नेशनल एक्शन प्लान के साथ हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज ले सकते हैं. और जो मेरा डिवीजन है, इस पर हमें थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा. मेरा डिवीजन है ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन. सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, ट्रीटमेंट एक स्पेक्ट्रम पर होता है, एक कंटिन्यूटी पर होता है. वो जैसे हम,
1: मतलब कौन किस स्थिति पर है, हाँ, उसके मुताबिक आप ट्रीटमेंट देंगे.
0: जैसे हमने बोला सीवियरिटी ऑफ एडिक्शन, तो एक स्पेक्ट्रम एक कंटिन्यूटी पर होता है. पहले हार्म रिडक्शन का अप्रोचेस है. हार्म रिडक्शन क्या है वो, जैसे हमने बोला कि भिन्न भिन्न प्रकार के फैक्टर्स हैं जो एडिक्शन को पैदा करता है. तो एक ही मोडालिटी, एक सिंगल मोडालिटी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करना चाहिए. जैसे कि नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम, मेथाडोन सब्स्टिट्यूशन थेरापी, ट्रीटमेंट, ये सब हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजीज. फिर ट्रीटमेंट आता है. ट्रीटमेंट में दो अंग होते हैं. पहला है वो है डिटॉक्सिफिकेशन. हमें अपने पेशेंट को जानना चाहिए. अगर ज़्यादा समय नहीं हुआ वो ड्रग्स, उसने शुरू किया ड्रग्स लेने के लिए, फिर एडिक्शन सीवियर नहीं हुआ, वो इंजेक्ट नहीं कर रहा है, सोशल डैमेजेस नहीं है, तो हम डिटॉक्सिफिकेशन को एडवाइस कर सकते हैं. अगर वो एक बहुत सालों से ड्रग यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें एक सब्स्टिट्यूशन थेरापी पर की ओर जाना चाहिए. और तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट. अगर कोई भी व्यक्ति हालुसिनेशन हो रहा है, सोशल डैमेज, वो व्यक्तित्व में नहीं है, द रियलिटी में नहीं है, तो हमें एक लगातार उसको जीवन भर ट्रीटमेंट देना चाहिए. तो एक मेंटेनेंस थेरापी है. ये en grosso modo on the treatment modalities. And then we have the treatment modalities, we have the हमें rehabilitation. ट्रीटमेंट के बाद रिहैबिलिटेशन आता है. रिहैबिलिटेशन आता है क्योंकि हमें उस व्यक्ति को फिर से जीना सिखाना पड़ेगा,
1: फिर से समाज में अपनी जगह पाने के लिए उसको मौका देंगे.
0: हाँ, les repères, क्या है इमोशनल रिहैबिलिटेशन, अपने सेल्फ व्यक्तित्व, सेल्फ नियंत्र कंट्रोल, अपने व्यक्तित्व को वैलोराइज करना. ओके, और जैसे जब जब हम ये करेंगे तो वो ये एक एजुकेटिव रिहैबिलिटेटिव प्रोसेस है. इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, अंतर करना चाहिए ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन में. रिहैबिलिटेशन में वो एक सामाजिक लेवल पर होता है. एक सेंटर में शुरू कर सकते हैं, रेजिडेंशियल सेंटर, फिर साइकोलॉजिस्ट होंगे, सोशल वर्कर्स होंगे, एक्टिविटीज होंगे, जैसे नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल में हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि एक सेम वेवलेंथ पर हम ये सारे सुविधाएं दे सकते हैं। वो ये है रिहैबिलिटेशन, उसके बाद रीइंटीग्रेशन होते हैं समाज में, फिर उसको
1: शामिल करना
0: हाँ, उसको

0: एक काम दिलाना, हाउसिंग ये दिलाना, तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन डिविजन में एक अम्ब्रेला में आता है। जैसे अभी व्यक्तित्व में हम ये डेवलप कर रहे हैं एक नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन।
1: डॉक्टर साहब, जब आप रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं इतने विस्तार से, तो सबसे पहले तो जो ज्वलंत समस्या है वह ये कि क्या सभी लोग रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जाना चाहते, उनके परिवार बहुत सी कोशिशें करते हैं उनको वहाँ भेजने के लिए, कुछ लोग जाते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन पाने के बाद वो फिर से इस समस्या में गिर जाते हैं और उन्हें खुद इस बात का दुख होता है कि वो अपने माँ बाप, वो अपने परिवार, अपने पति या अपनी पत्नी को निराश कर रहे हैं, अपने बच्चों के सामने उनके नज़रों से गिर जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है लेकिन फिर भी वो फिर से उठ नहीं पाते। क्या आपको लगता है कि एक बार कोई इस लत से जुड़ जाए तो, और अगर उसके एडिक्शन तक चले जाए तो क्या उसके लिए उम्मीद है? बहुत सी ऐसी समस्याएं हमको सड़क पर, अगर आप अभी से निकलेंगे, अगर साउथ तक जाएंगे तो कितने सारे लोग आपको ऐसी स्थिति में नज़र आएंगे जो कि लगता है कि अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। तो आपको क्या लगता है?
0: इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, क्योंकि ताकि हमें ये जो मैसेज है वो पब्लिक को समझ में आए। जैसे हमने बोला कि एडिक्शन एक क्रोनिक रिलैप्सिंग डिजीज है, क्रोनिक ब्रेन डिजीज है जो रिलैप्सिंग है, ये एक
1: रिलैप्सिंग का मतलब
0: रिलैप्सिंग है वो बाद में आ सकते हैं। ओके, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं वो सारा नकारात्मक नतीजे नहीं, लाइक नहीं हो सकते हैं, वो कंट्रोल भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें कंट्रास्ट करना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से, जैसे कि डायबिटीज़, जो आपको पता है अगर हम स्टैटिस्टिक पर मॉरिशस में देखें बीमारियों पर, तो डायबिटीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज़्यादा है। एडिक्शन हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से। लेकिन क्यों एडिक्शन ज़्यादा प्रसिद्ध है और नॉन कम्युनिकेबल प्रसिद्ध नहीं है, फेमस है? क्योंकि जो एडिक्शन उसमें इल इफेक्ट है, नकारात्मक सामाजिक सोशल इल इफेक्ट,
1: बुराइयां सामने नजर आती हैं,
0: हाँ,
1: हमको प्रभावित करता है।
0: जैसे एक आइसबर्ग होता है, टिप्स को हम देख रहे हैं, विजिबल
1: पूरी समस्या को नहीं देख पा रहे।
0: अगर हम टिप ऑफ द आइसबर्ग को टैकल करेंगे तो जो पूरा समस्या वो नहीं जाएगी। अगर हम एंटर करेंगे डायबिटीज से, ये भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक डिजीज है, रिलैप्सिंग डिजीज है। डायबिटीज़ एक व्यक्ति को हुआ, ट्रीटमेंट शुरू किया, फिर अगर वो जाएंगे जैसे दीपावली के अवसर पर वो मिठाइयाँ खाएंगे,
1: हाँ,
0: तो उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। तो ये एक रिलैप्स है,
1: जरूर
0: ये एक रिलैप्स है। जैसे हमें
1: मतलब हर एक समस्या, हर एक जो बीमारी है उसमें ये जो प्रवृत्ति है वो हो सकता है।
0: हाँ, ये क्योंकि आपका सवाल है, रिलैप्स होता है, पहले रिलैप्स को पहचानना चाहिए। अगर हम एडिक्शन और ड्रग्स को एक साइंटिफिक रूप से देख रहे हैं तो हमें ये रिलैप्सिंग पॉथ को समझना चाहिए। लेकिन डायबिटीज से वो भी नकारात्मक इफेक्ट्स हैं, डायलिसिस पर जाते हैं, एम्पिटेशंस होते हैं, कौजा की बीमारी होती है,
1: परिवार को तनाव होता है,
0: लेकिन हमें हमारे ओपिनियन, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नकारात्मक नेगेटिव नहीं है। लेकिन हम अगर हम ड्रग्स देखेंगे तो ऑटोमेटिक बायास है, न मॉरिशस में नहीं पूरे संसार में,
1: हाँ,
0: वो बायास है, एक रिलैप्सिंग डिजीज है। इसको कंट्रोल अब कैसे कंट्रोल करें? मैं बहुत सिंपल रूप से मैं दो तीन
1: फासों
0: या से मैं एक्सप्लेन करूँगा।
1: हाँ।
0: पहले जब एक व्यक्ति को एडिक्शन होता है तो व्यक्ति अगर नॉर्मल पेशेंट है या एडिक्टेड पेशेंट, एनी इंडिविजुअल, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके मेंटल स्टेज पर, प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस, रिलैप्स, हमें भी है, मुझ में भी है वो। लाइक प्री कंटेम्पलेशन में हमें आदमी उसको वो पहचानता है कि वो पहचान
1: नहीं
0: पहचानता है कि वो एक बीमारी है, एक रिस्क है। कंटेम्पलेशन में वो पहचानता है लेकिन कुछ भी नहीं करता। प्रिपर

0: में वो शुरू करता है करने के लिए, जैसे एग्जाम्स हैं तो शुरू किया रिविजन ऑल दिस थिंग, फिर एक्शन एक्शन उसका जो आधा एक ट्रीटमेंट है आधा एक एक्सरसाइज है उसका शुरू करते हैं, फिर मेंटेनेंस होता है, फिर रिलैप्स होते हैं। तो नॉर्मल लाइफ में, सामाजिक लाइक डेली लाइफ में ऐसे होता है, तो एडिक्शन में भी उसका ये फॉर्मेट, ये पैटर्न है, उपस्थित है। तो अब डिपेंड्स होता है किस सीवियरिटी ऑफ एडिक्शन पर। अगर वो सीवियर है तो ज़्यादा नकारात्मक, ज़्यादा रिलैप्स होंगे
1: जी।
0: और उसका ट्रीटमेंट चेंज करना चाहिए, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट, लाइक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट। अगर वो, जैसे मैंने बोला, ऑल द लेयर्स ऑफ द सोसाइटी, वो एक बैंक में काम करता है, वो बाजार में काम करता है, वो काम कर रहे हैं, फंक्शनल है
1: जी।
0: तो लेकिन लत का प्रॉब्लम है, एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तो जो ट्रीटमेंट है वो अलग रूप से होते हैं। वो ट्रीटमेंट है, रिलैप्स भी होंगे। अगर तनाव है, एंग्जाइटी है, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो शायद वो फिर से सिगरेट फिर से सिंथेटिक ले सकते हैं एक या दो बार, लेकिन उसको उस व्यक्ति को फिर से ट्रीटमेंट में लाना चाहिए, ताकि ये मेंटेनेंस रिलैप्स स्टेज पर ज़्यादा समय में नहीं होंगे। तो अगर हम ये साइंटिफिक रूप से ट्रीटमेंट को देखेंगे तब पता चलेंगे, क्योंकि बहुत बहुत से, आपने बोला, बहुत से पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो अपने बच्चों को ट्रीटमेंट पर लाता है। ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं, कुछ ट्रीटमेंट दवाई, सोने के लिए, खाने के लिए, हलूसिनेशंस को दूर करने के लिए,
1: कुछ दिनों तक।
0: हाँ, लेकिन ओनली टिप ऑफ आइसबर्ग को हम अटक कर रहे हैं,
1: जड़
0: से नहीं। वो बिनीफ द आइसबर्ग बहुत सामान्य प्रॉब्लम है,
1: उन तक पहुंचना है, वहां पर सुधार लाना है,
0: और उसका सोल्यूशन खाली डॉक्टर या मेडिकल पर्सनल नहीं, नहीं है। होता है एक सामाजिक, एक संपूर्ण रूप से जो डिफरेंट फैक्टर्स
1: है, फैमिली सपोर्ट, एक सोशल सपोर्ट चाहिए उसको।
0: तो इसीलिए जो ट्रीटमेंट है, हमारे जो मुख्य स्टेक होल्डर है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, और इनमें डिफरेंट ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं
1: जी।
0: तो जब हम एक पेशेंट आता है तो हमें न केवल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे मॉरिशन में ताबू है
1: जी। हाँ, लोग सोचते हैं अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपका दिमाग ठीक नहीं है,
0: वो ताबू है। लेकिन अगर ये दोनों होना चाहिए, और मॉडर्न मेडिसिन ने बोला न केवल एडिक्शन में ये होना चाहिए, लेकिन अन्य भी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो शिक्षित बहुत जो एक्सेप्ट करने के लिए, दवाई को से कंप्लायंस कर होने के लिए, ये तब उस काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो एडिक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार से होना चाहिए, जैसे फार्माकोलॉजिकल, फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, डायलेटिव बिहेवियर थेरेपी उसको बोलता है, मोटिवेशन इंटरव्यूइंग, क्योंकि वो नर्व्स, मैंने ट्रेनिंग किया है इन डिफरेंट इंटरवेंशंस पर
1: जी।
0: और वो लाइक वेरी सक्सेसफुल होता है।
1: तो जब आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आप काफ़ी विस्तार में जा रहे हैं, जो कि एक डॉक्टर से हमें उम्मीद है कि आप इतने विस्तार में जाएंगे। जब आप कह रहे हैं कि एक रिलैप्सिंग की बात आप कर रहे थे, कि मतलब कि फिर से इस समस्या में गिर जाना, और आपने सिगरेट की बात की, आपने सिंथेटिक की बात की, तो क्या ये जो ड्रग्स की अलग, इसके जो अलग अलग रूप हैं, ड्रग्स आज इसके बहुत सारे रूप हैं, तो क्या ये रिलैप्सिंग या फिर कोई भी ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन हो, इसका संबंध है किस प्रकार का ड्रग व्यक्ति ले रहा है? पहले तो हमें ड्रग्स के बारे में बताइए, कौन कौन से प्रकार के ड्रग्स मॉरिशस में हैं।
0: ओके, तो जो अध्ययन मैंने बोला वो उसने उस पर भी विभाजित है, कितने ड्रग्स सबसे प्रसिद्ध हैं और कम प्रसिद्ध हैं। जो पहला है वो बहुत सालों से है, वो कैनाबिस है मॉरिशस में। और जब हम इस पर बात करेंगे तो वो अंतर करना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, मेडिकल कैनाबिस नहीं है। जैसे वेजिटेबल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, तो इसको ज़्यादा नशेरी बनाने के लिए उसको मॉडिफाइड किया हुआ है, क्योंकि ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरेंसिक लैब से मिलता है। इस जो कैनाबिस है वो इसमें ज़्यादा THC होते हैं और ज़्यादा हलूसिनेशन, ज़्यादा नशा होता है, तो इस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है वो कैनाबिस वो ठीक नहीं है। ओके वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल

0: कैनाबिस
1: तो ये एक ड्रग है और इसका इल इफेक्ट है। ये पहला बहुत सालों से पहला पर आता है। फिर दूसरा है हीरोइन, ब्राउन शुगर, वो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अभी वर्ल्ड वाइड पर कम हो रहा है लेकिन मॉरिशस पर अभी भी है और दूसरे
0: पोजीशन पर है। और कुछ महंगा भी है, सब की पहुंच तक नहीं जाता।
1: हाँ, दूसरे पोजीशन पर है। और अब तीसरे पोजीशन पर आता है सिंथेटिक ड्रग्स, न्यू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस। क्यों प्रसिद्ध है वो तीसरा है, लेकिन बहुत लाइक जैसे बोला वो सस्ते भी हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर हम लोकल भी कर सकते हैं। वो डिफरेंट डिटर्जेंट्स, डिफरेंट परफ्यूम, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से उसका वो एक गैरेज में बना सकते हैं, लैबोरेटरी क्लॉडिस्टम में बना सकते हैं। और जिसका दुर्प्रभाव होता है, द इल इफेक्ट्स, वो ज़्यादा शॉर्प होते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं है।
0: मतलब उसका ज्यादा असर पड़ता है, तेजी से असर पड़ता है और मतलब कि गहरा असर पड़ता है।
1: हाँ बिल्कुल, जो अंतर है दो फर्स्ट और दो पोजीशन का असर है, वो कुछ समय ले सकते हैं और उन ड्रग्स से ट्रांजिशनल ओवरडोज भी हो सकते हैं जैसे हीरोइन। लेकिन सिंथेटिक हमें जानना चाहिए कि वो एक एडिक्टोलॉजी समस्या है, लेकिन न केवल एडिक्टोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी समस्या भी है, टॉक्सिसिटी करती है। तो वो जो पेशेंट है वो आईसीयू में जा सकते हैं, वो ब्लीड हो सकते हैं,
0: अचानक मृत्यु भी हो सकती है।
1: हाँ, तो ये वो सिंथेटिक है। फिर जो अन्य भी ड्रग्स जो प्रेजेंट हैं हमारे समाज में, वो जैसे सीजनल मार्केट पर आता है, लाइक कोकाइन, मेडिकेशन, डाइवर्शन ऑफ प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, एंड इन सब ड्रग मॉरिशस में है।
0: अच्छा, और अभी आपने सपोर्ट की भी बात की कि जो लोग ऐसी समस्याओं में पड़ जाते हैं उन्हें सच में उस समस्या से बाहर निकालने के लिए एक पूरा सहयोग चाहिए, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, राष्ट्रीय सहयोग, और फिर आप जैसे प्रोफेशनल्स भी हैं यहाँ पर जो कि उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। और आजकल हम देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और फिर जो ड्रग्स ले रहा है किस तरह से उसको अपमानित किया जाता है, किस तरह से उसको शर्मिंदा किया जाता है। आपको क्या लगता है हमारे समाज को किस तरह से ऐसे लोगों के प्रति व्यवहार करने चाहिए? और वो व्यक्ति जब इस तरह के हरकतें होती हैं तो ये सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अगर वो व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य होता तो क्या आप ऐसा करते? तो आपको क्या लगता है, जो कि आप ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन से जुड़े हैं, जब एक व्यक्ति का बर्ताव ड्रग्स से जुड़कर समाज को अचंभित करता है तो फिर समाज को कैसे उसके प्रति अपना व्यवहार रखना चाहिए?
1: सबसे पहले हमें एजुकेशन का अवेयरनेस रेज करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं एम्फासिस देना चाहता हूँ कि ड्रग को समझना, क्योंकि अभी भी ताबू है,
0: जी
1: अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक बीमारी है। अगर हम ये एक बीमारी के हैसियत से हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो हमें पब्लिक का, पेशेंट्स का मदद कर पाएंगे। अगर हमें बोला कि ये बीमारी नहीं है, ये एक सीधी एक बिहेवियर प्रॉब्लम है, तो हम ताबू होंगे, स्टिग्माटाइजिंग होंगे
0: और
1: तो
0: उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे,
1: फिर मदद नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक, क्योंकि ये नई बीमारी
0: नहीं है।
1: साइंस ने अभी एविडेंस बेस्ड उसको प्रूव किया, लेकिन बहुत सालों से थे, ड्रग्स पास भी में थे, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में होंगे,
0: उसका रूप बदल रहा है।
1: एडिक्शन जैसे बोलता है, वो पहले सिगरेट हुआ करते थे, अल्कोहल शराब करते थे, फिर गैम्बलिंग होते हैं, हॉर्स रेसिंग, जुआ,
0: ये सारी कुछ लत ही है, नशा ही है।
1: हाँ, और मॉरिशस इंडिपेंडेंस से पहले भी जो लाइक इंडिया में होते हैं और भी डिफरेंट कल्चर्स कंट्रीज में होते हैं, क्योंकि जहाँ पर इंसान होगा, ह्यूमन, वहाँ पर पैरेलल वो ये एक एडिक्शन होते हैं, क्योंकि ये एक क्यूरोसिटी है ह्यूमन नेचर के यहाँ। और ये है, अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसका दुष्ट प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉल्यूशंस से आ सकते हैं। अगर हम सेंसेशंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति, एक पेशेंट ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में है, वो रास्ते पर जा रहे हैं, वो हमें फिल्म वीडियो फिल्म

0: करें या फिर सोशल मीडिया, सबसे पहले एक ब्रीच ऑफ ए लॉ होता है
1: जी हाँ, ये करना
0: लीगल फ्रेमवर्क में ये एक्सेप्ट नहीं
1: जी
0: है
1: हाँ, okay? ये कानून के खिलाफ है,
0: ये पब्लिक है ओके okay? उसके घर में नहीं है, पब्लिक में है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। दूसरे इज इट लाइक ये सही बात है कि नहीं, सही बात नहीं हाँ. है, क्योंकि अगर इसके हम फिल्म कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए हमने देखा हमारे बच्चे हैं हाँ. हमारे नेफ्यू हैं
1: जी,
0: तो कैसे हाँ
1: कैसे
0: लगेगा, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है क्योंकि ये जो आप फिल्म कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जाए, वो किसी और के बच्चे हैं समाज में
1: जरूर.
0: उसको लाइक लैंडिंग हेल्पिंग हैंड के वजह फिल्म कर रहे हैं,
1: उसको शर्मिंदा कर रहे हैं।
0: और जब से हमने बोला, हमने समझा एडिक्शंस क्या हैं, बीमारियां क्या हैं ओके okay? अगर ये यूथ हैं वो अपने जीवन को बदल चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है, रिहैबिलिटेशन हो रहा है, फिर एक बैंक में उसको काम मिला हुआ है, तब ये वीडियो सालों से सोशल मीडिया पेज पर होंगे
1: ज़रूर,
0: तो ये ठीक नहीं है अगर हम उसके जगह में हैं। तो इसीलिए सेंसेशन क्रिएट करना बहुत आसान होता है, लेकिन हम अगर ये डेफ में जाएंगे, देखेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, कैसे उसका सामाजिक रूप से हॉलिस्टिक अप्रोच से हमें मदद करना चाहिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, काउंसलिंग हॉटलाइन है, हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से करता है,
1: आप वहां फोन कीजिए, उनको संपर्क कीजिए, 800 10 22 800 10 22, ये हॉटलाइन है
0: 800 10 22
1: 800 10 22, ये एक हॉटलाइन है जहाँ पर आप फोन कर सकते हैं
0: और काउंसलिंग कैसे डायरेक्शन, क्या ट्रीटमेंट होना, कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर फैसिलिटीज हैं ओके okay? और डिफरेंट हॉस्पिटल, डिफरेंट लोकल एरिया हेल्थ सेंटर्स पर भी जा सकते हैं, वहाँ एक जो मेडिकल पर्सनल है वो दृष्टि देंगे, डायरेक्शन देंगे कहाँ पर जाना है अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर सीरियस एडमिट होंगे, रेफरल होंगे, अगर सीरियस नहीं है, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट, तो वो हमारे केंद्रों में जा सकते हैं। तो ये है, ये करना चाहिए, और हमें ये ट्रीटमेंट के अनुसार, लेकिन एक सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो इन सब निगेटिव प्रैक्टिसेस को हम बढ़ावा नहीं देना चाहिए, अन ह्यूमन राइट्स बेस पर और बहुत साइंटिफिक रूप से जाना चाहिए
1: ज़रूर। और फिर जब हम ऐसी समस्याओं पर बात कर रहे हैं, तो पहला सवाल यही है कि आप लोग जब ड्रग्स की समस्याओं को घटाना चाहते हैं, इसके जो परिणाम है, नतीजे हैं, उसको घटाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं? चैलेंज हर क्षेत्र में है और ड्रग्स के क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा है,
0: और भी ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं, टाबू है, स्टिग्माटाइजेशन है, और वो जो चैलेंजेस हैं वो ड्रग्स को का समाधान करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का इनपुट ज़रूरी है, उसका कोलैबोरेशन ज़रूरी है। इसीलिए सरकार ने ये नादेक, नेशनल एजेंसी ड्रग कंट्रोल का क्रिएट किया, एक अम्ब्रेला एजेंसी है, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठित करके हमें एक कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स की तरह जाना पड़ेगा ओके okay? एक ऑब्जेक्टिव को
1: हासिल
0: करना पड़ेगा ओके okay? तो स्टेक जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे आपको पता है डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी हैं, और डिफरेंट मंत्रालयों के डिफरेंट एनजीओज हैं, उनको रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा, कोई कुछ में है, कुछ में नहीं है, कुछ में कम है, तो ये जो नेशनल कंट्रोल, ये सारी सुविधाएँ, जैसे आपने आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ये हम ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि एक नई एजेंसी है, लेकिन हम कैसे बोलते हैं, दिन दुगने रात चौगुने
1: हाँ
0: ये सच है, क्योंकि हमारे काम 4-5 बजे फिनिश
1: नहीं होता।
0: हमें घर पर भी काम करना पड़ेगा, रिपोर्ट्स का, वे सब कोऑर्डिनेशन का, वो निरंतर रूप से लगातार हम कर रहे हैं। और पहले में ये एक्सपेक्ट करना चाहिए ये ऐसे ही होंगे, लेकिन बाद में अगर हम रेस्पॉन्सर्स, ये जैसे हमने बोला डर का प्रॉब्लम घटेंगे हमारे समाज में, तब ये सारे कोशिशें का फल हम मिलेंगे,
1: जरूर
0: हमको मिलेंगे
1: ज़रूर। देखते देखते हम प्रोग्राम के अंत तक आ चुके हैं। जैसा कि आपने देखा और सुना, आज हम डॉक्टर नितीश संत से बात कर रहे थे और ये देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन की बात करेंगे ड्रग्स से जुड़कर, तो क्या क्या काम किया जा रहा है?

0: है, क्या करनी चाहिए और कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपने ज़रूर इस बात का अनुभव किया होगा, इसका एहसास आपको हुआ होगा कि ड्रग से निपटने के लिए ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सिर्फ एक इकाई है, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। मतलब कि इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, क्यों इंसान इस समस्या से जुड़ रहा है, कैसे उसको निकाला जा सकता है साइकोलॉजिकली, कैसे उसको प्रभावित कर सकते हैं, फिर इसका जो कानूनी रूप है, किस तरह से इसको घटाया जा सकता है, बहुत सारे चरण हैं इस पर बात करने के लिए। तो आज रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार, और आप सुनने और देखने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: मिलाते चलिए शाम के 4:04 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। नमस्कार।
1: नमस्कार। 4 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में लोर्ड मेयर और मेयर के चुनावों की तारीखें तय कर दी हैं। बोबासा रूसेल नगर पालिका में चुनाव शनिवार 23 मई को होगा, जबकि कट्रोबोन पोर्ट लुई वाकुआ फिनिक्स और क्यूपेप नगर पालिकाओं में नए मेयर के चुनाव सोमवार 25 मई को आयोजित किए जाने वाले हैं। कैबिनेट ने नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी के परिणामों का जायजा लिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने शांति और सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, राष्ट्रसंघ संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो ग्यूटेरेस समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी लगाई। कैबिनेट ने देश भर में मूसलाधार बारिश के दौरान लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों, आपातकालीन सेवाओं तथा स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लिए एक समान नियम होंगे। नए प्रावधानों में खराब मौसम के दौरान काम, आवाजाही और सुरक्षा को लेकर साफ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब के जेद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। एमओआरए के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम से अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियां जुड़ चुकी हैं। साल 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई ये प्रणाली अब मध्यम स्तर की कंपनियों तक भी बढ़ाई जा रही है। ई इनवॉइसिंग का उद्देश्य कंपनियों की टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाना, पारदर्शी बनाना और प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। चीन के शांजी प्रांत में स्थित एक कोयले खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की जानें चली गई हैं। ये हादसा शुक्रवार देर रात उस समय हुआ जब खदान के भीतर 240 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। राहत और बचाव अभियान जारी है, जबकि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और बचाव कार्य में कोई कसर न छोड़ने की

0: निर्देश दिए हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. You're listening.
1: रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेलकम इन गीत गाथा देश की। बहुत ही खुश हैं आपका साथ पाकर और हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और जानना चाहते हैं कि आज हमने कौन सा विषय रखा है, विषय जिसके ज़रिए

अपने ही देश के बारे में, अपने ही गांव के बारे में, अपने ही शहर के बारे में, मुशिस के बारे में, आसपास के टापुओं के बारे में, उद्योगों के बारे में आप जानकारी हासिल करते हैं। पिछले 21 मई को दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और आज हम चाय को लेकर अपने देश में चाय की खेती बाड़ी, चाय का इंट्रोडक्शन, चाय का प्रोसेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे हुआ, इन सब के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और आपके साथ जो भी जानकारियाँ हमारे पास हैं आपके साथ हम साझा करेंगे। सो जो पहला सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो है, मॉरिशस के इतिहास में, मॉरिशस के इतिहास में किस पादरी ने, मॉरिशस के इतिहास में किस पादरी ने चाय को इंट्रोड्यूस किया, किस पादरी ने, किस फादर ने मॉरिशस में चाय को इंट्रोड्यूस किया। आपका जवाब ऑन 402 80 70।

जी हाँ दोस्तों, इस बीते सप्ताह के दौरान दुनिया भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, और

0: आज हमने सोचा कि इसी बारे में गीत गाथा देश की प्रोग्राम हम पेश करें और जो पहला सवाल हमने किया कि मॉरिशस के इतिहास में किस पादरी ने मॉरिशस में चाय को इंट्रोड्यूस किया चलें हम इनसे सुनते हैं हेलो
1: हेलो जय सियाराम भाई
0: जी जय सियाराम माला जी कैसी हैं
1: सब ठीक आप कैसे
0: इस समय अगर एक प्याली चाय मिल जाती तो
1: जी,
0: कैसी बात होती
1: एक प्याली
0: आपको चाय पसंद है
1: जी
0: हाँ पसंद है या बहुत पसंद है
1: जी
0: चाय पसंद है या बहुत ही पसंद है
1: बहुत ही पसंद है क्योंकि हमारे दिन के शुरुआत पे चाय से ही
0: यानी कि आप कम से कम दो बार एक दिन में चाय पीते
1: हाँ सुबह को और दोपहर को
0: ओके हमारे लिए तो सुबह को हाँ लेकिन शाम को समय नहीं मिलता है
1: हाँ आपका काम पर होती है ना घर पर होती है तो जरूर
0: तो अच्छा बताएं कि कौन से पादरी ने मॉरिशस में चाय को इंट्रोड्यूस किया था
1: फादर
0: गालोइज वैसे तो बहुत से कम लोग जानते हैं कि उन्होंने मॉरिशस में चाय को इंट्रोड्यूस किया था और उन्हीं की बदौलत आज मॉरिशस में चाय की रुपाई होती है महाराज जी आप हमारे नाम से एक चाय का प्याला पी लीजिएगा
1: जी हो आइए
0: नहीं आप खुद पी लीजिए
1: धन्यवाद
0: अच्छा महाराज जी
1: धन्यवाद भाई
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया भाग लेने के लिए ओके और आपके लिए ये शाम तीमय हो
1: जी आप
0: चायमय हो
1: जय
0: सियाराम जय सियाराम

जी दोस्तों, आज गीत गाथा देश के प्रोग्राम में हम चाय की रुपाई के बारे में बात करेंगे। अभी प्रोग्राम की शुरुआत में हमने सवाल किया था कि किस फादर ने मॉरिशस में चाय को इंट्रोड्यूस किया था, और सही जवाब माला जी ने हमें दिया। साथ ही साथ उमा एक्वायर की उमा जी ने भी हमें सही जवाब भेजा व्हाट्सएप के जरिए, और सही जवाब है फादर गैलोवेज। जो दूसरा सवाल हमने किया कि इंट्रोडक्शन टू फादर गैलोवेज ने किया, लेकिन किस बोटानिस्ट ने, किस फ्रांसीसी बोटानिस्ट ने बड़े पैमाने पर, बड़े तादाद पर चाय की रोपाई शुरू की? एक बहुत ही सुप्रसिद्ध बोटानिस्ट, फ्रेंच बोटानिस्ट ने ये काम किया। सो आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं बाय व्हाट्सएप ऑन 5250 6200, या तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 402 80 70।

0: 4:26 आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की नजारे हम क्या देखें। चलिए हम देखते हैं कि लाइन पर कौन है। हेलो
1: हेलो संजय जी नमस्ते, शुभ दिन आपको।
0: आपको भी शुभ दिन। आपका शुभ नाम?
1: सजीद।
0: हमको ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया।
1: सजीद।
0: कैसे हैं सजीद भाई, सब ठीक हैं?
1: हम तो ठीक है, एकदम बढ़िया। आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: रोज हिल।
0: अगर मैं आपसे पूछता, आप एक ऐसी जगह का नाम बताएं जहाँ पर से जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो चाय के खेतों के नज़ारे दिखते हैं, आप किस जगह की?
1: नोअर फ्रांस, बॉशेरी,
0: लाफ्लोरा,
1: सेजेमी,
0: सेजेमी

0: मिल जब आप पुराने रास्ते से निकलते हैं यानी क्यूपिप्सन विलफॉन्स की ओर जाए ओल्ड गांपो रोड या तो जब आप गंगा तालाब से निकलते हैं और वाशिकी पर से गुजरते हैं
1: तो वहाँ तो बहुत बहुत चाय की खेती है,
0: बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है।
1: यस, पैनोरामिक
0: मिडलैंड्स के इलाके में मुझे याद नहीं है लेकिन जुबोय जब जाते हैं
1: मिडलैंड्स के इलाके में अब चाय नहीं है,
0: नहीं है अगर अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं लेकिन हमें याद है जब हम कुछ साल पहले जुबोय जा रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा वहाँ पर भी
1: अभी भी अब चाय नहीं है वहाँ पर।
0: अच्छा,
1: चाय की खेती नहीं है, गन्ना है, जंगल है।
0: सो सचित भाई आप हमें बताएं किस फ्रांसीसी बोटानिस्ट ने बड़े पैमाने पर इल डी फ्रांस में चाय की खेती शुरू की?
1: द फेमस बोटानिस्ट इज
0: पिए पुआव। और आपने ये जानकारी कब प्राप्त की?
1: मैं ये जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ,
0: बचपन से स्कूल में हमने सिखाया
1: ज्योग्राफी।
0: हाँ, ज्योग्राफी वो भी एक जमाना था। बहुत हम समझते हैं कि हम सभी लोगों ने जो स्कूल गए हैं ये बात हम जानते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से हमने माही दुरा बुदने के बारे में सिखा तो हमने उसी समय पिए पुआव के बारे में भी सुना।
1: हाँ,
0: तो सचित भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए।
1: धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए, आपने मौका दिया हमें।
0: अच्छा, फिर से मिलेंगे।
1: ओके, नेक्स्ट टाइम।
0: जय मॉरिशस।
1: जय मॉरिशस।

0: बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। किस ब्रिटिश गवर्नर ने 19वीं शताब्दी में कमर्शियल लेवल पर चाय की खेती बाड़ी शुरू की?
1: एक हम ही नहीं सब देखने वाले तुमको,

रेडियो पर प्रोग्राम गीत गाथा देश की। ये प्रोग्राम चलता है हर शनिवार की शाम को 4 से लेकर 5 बजे तक, और हर शनिवार को हम एक अलग विषय लेकर आपके सामने आते हैं और हम लोगों से जानना चाहते हैं कि वे अपने देश के बारे में कितना कुछ जानते हैं। आज हमने विषय रखा है चाय, क्योंकि पिछले 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। सो अभी तक हमने ये जाना कि मिशेस के इतिहास में पादरी गलौज ने चाय को इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद फ्रांसीसी बोटानिस्ट पियर पुआव ने 1770 में इल डे फ्रांस में चाय की खेती बाड़ी बड़े पैमाने पर शुरू की। अब जो अगला सवाल हमने रखा है कि जब मॉरिशस ब्रिटिश शासन में था तो किस ब्रिटिश गवर्नर ने 19वीं शताब्दी में कमर्शियल लेवल पर चाय की खेती बाड़ी शुरू की। आपका जवाब ऑन 402 80 70।

0: बहुत शुक्रिया इतनी पैशन के साथ इतनी उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए हम अपने श्रोताओं को ज़रा समय लाइन पर वेट करना नहीं रखना चाहते हैं चले हम मिलते हैं इनसे हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार आपका शुभ नाम
1: पवन
0: पवन और हमारे दोस्त पवन कहाँ से बोल रहे हैं
1: कोंची से
0: पवन जी पवन जी आप कभी चाय के खेत में गए हैं
1: नहीं कहीं नहीं है पर
0: देखा है लेकिन देखने में नजारे बहुत ही अच्छा रहा है बहुत ही खूबसूरत
1: होता है हाँ खतों पर बांसुरी रखूँगा
0: हाँ लेकिन आप कभी भी एक चाय के खेत में नहीं गए
1: नहीं
0: लेकिन फिल्मों में भी आपने देखा होगा बहुत से गाने हैं

0: बहुत सी ऐसी
1: फिल्म,
0: हाँ बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो जो हिल स्टेशन में पिक्चराइज हुए हैं जहाँ पर चाय के खेत दिखाए गए हैं। सो भाई पवन जी, आप हमें बताएं कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने 19वीं शताब्दी में कमर्शियल लेवल पर चाय की खेती बाड़ी शुरू की?
1: सर रॉबर्ट फॉकवा।
0: बहुत सही। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ल्यू रिजवी में एक टी गार्डन की शुरुआत की थी? जब वे वहाँ पर ऑफिशियली रहते थे तो रिजवी में एक चाय का, एक चाय की खेती बाड़ी की गार्डनिंग वहाँ पर शुरू की थी, लेकिन जब वे मुझे छोड़ कर गए तब ये सब कुछ ठप पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाग दिया पवन भाई। ऐसे ही हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सो सही जवाब सर रॉबर्ट फॉकवा, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में कमर्शियल लेवल पर चाय की खेती बाड़ी शुरू की। सो इंट्रोडक्शन बाय पादरी गैलोज, फिर बोटनिस्ट पियर पुआव ने उसको बढ़ाया, लेकिन सर रॉबर्ट फॉकवा ने उसको जरा डायमेंशन दिया।

सो अभी तक जो हमने सीखा कि मुशिस में पादरी गैलोज ने चाय को इंट्रोड्यूस किया कि फिर उसके बाद बोटनिस्ट पियर पुआव ने थोड़ा ज़्यादा विस्तार लाया, उन्होंने इल डे फ्रांस में चाय की खेती बाड़ी शुरू की, दैट वाज इन 1770। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब देश ब्रिटिश शासन में था तब गवर्नर रॉबर्ट फौकॉ ने 19वीं शताब्दी में कमर्शियल लेवल पर चाय की खेती बाड़ी शुरू की। अब जो सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि रॉबर्ट फौकॉ के 70 साल बाद 70 years later किस दूसरे ब्रिटिश गवर्नर ने चाय का कल्टीवेशन इंडस्ट्रियल लेवल पर तक पहुंचाया, किस दूसरे ब्रिटिश गवर्नर ने चाय का कल्टीवेशन इंडस्ट्रियल लेवल तक पहुंचाया। उनके नाम पर एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सड़क बनाया गया है पोर्टविस में, और उन्होंने नुअर फ्रांस और शमागल के इलाकों में बड़े तादाद पर चाय की खेती बाड़ी शुरू की। आपका जवाब ऑन 402 80 70।

0: वाकई चाय में एक जादू है और इस जादू को पीते ही जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाता है। चाय में वो जादू है जो लोगों को एक साथ बांध देता है। तो हमने सवाल किया कि सर रॉबर्ट फॉकवा के 70 साल बाद किस दूसरे ब्रिटिश गवर्नर ने चाय का कल्टीवेशन एक बड़े पैमाने पर एक इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंचाया। चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्ते संजय जी।
0: नमस्ते उमा जी, कैसी हैं?
1: अच्छी हूँ, और आप?
0: मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम की शुरुआत से आप बहुत ही उत्तेजित, आप भाग हर एक प्रश्न पर आप फोन कर रही हैं। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम अच्छे हैं, और आपके आवाज सुनकर और भी ठीक हो गए।
1: शुक्रिया।
0: उमा जी, आप बताएं कि जीवन में क्या करती हैं?
1: जी मैं घर पर रहती हूँ, रिटायर्ड हूँ। मैं एक एजुकेटर थी।
0: अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी?
1: तो मैं छठी कक्षा में पढ़ाती थी, तो
0: इसीलिए तो
1: हमारे कार्यक्रम में हिस्ट्री ज्योग्राफी।
0: हाँ, ये मेरा फेवरेट था। हालांकि प्राइमरी स्कूल में हम सब सब्जेक्ट्स को पसंद करते थे, वो अंग्रेजी हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, लेकिन ज्योग्राफी मेरा फेवरेट था।
1: ओह यस, मैं भी ज्योग्राफी बहुत पसंद करती थी।
0: ज्योग्राफी पढ़ना और सिखाना भी, दोनों फेवरेट। सो उमा जी, आप बताएं कितने सालों तक आपने स्कूल में काम किया?
1: 43
0: yes. वाओ, यानी कि बहुत से स्कूलों में बहुत से छात्रों ने आपके आपके तले उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और हम मानते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जो प्रोफेशन है वो टीचिंग प्रोफेशन है।
1: यस,
0: टीचिंग प्रोफेशन। आई गॉट बिग रिस्पेक्ट फॉर ऑल टीचर्स, जिनको मैं यहाँ पर नमन करता हूँ, जो काम आप करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: सो आपके हिसाब से जो सवाल हमने किया कि कौन से दूसरे ब्रिटिश गवर्नर ने मॉरिशस में चाय की रोपाई, चाय का कल्टीवेशन इंडस्ट्रियल लेवल पर पहुंचाया?
1: जी
0: हाँ। उनका नाम क्या है?
1: सर जॉन पोपेनेसी।
0: सही जवाब। सो मैं भी आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप कभी किसी चाय के खेत में प्रवेश किया है?
1: हाँ, बच्चों के साथ जब हम ट्रिप पर जाते थे।
0: हाँ।
1: तो वाशेरी गए थे।
0: हाँ। एक्सक्यूशन जैसे कहते हैं।
1: हाँ, एक्सक्यूशन।
0: तो
1: बहुत बार गए हैं।
0: हम तो ये इंतजार करते थे कि कब ये मौका आएगा, फिर जाएंगे, क्योंकि गुड मेमोरीज, वेरी गुड मेमोरीज।
1: यस, वेरी गुड मेमोरीज।
0: हाँ, हमारे लिए तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे,
1: जी हाँ,
0: तो दो बार हम अपनी माँ के साथ चाय तोड़ने गए।
1: ओह, बहुत अच्छा।
0: हाँ, उस ठंड के मौसम में पैर भीग जाते थे, लेकिन माँ के साथ हम जाते थे चाय तोड़ने।
1: उमा जी, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है।
0: हाँ, बहुत ही बड़ा। सो उमा जी,
1: आई एम यूजिंग आल्सो। जब चाय जाते थे,
0: चाय पीना और चाय के खेतों में काम करना, ये दो अलग बात है।
1: बहुत कठिन है।
0: चाय के पत्ते तोड़ना, फिर प्लास्टिक में भरना, फिर ढोकर लाना, रास्ते पर इंतजार करना, फिर उसका वजन नापना, फिर उसे लोरी पर भरना, ये बहुत कठिन है। और आज हम यहाँ पर इस मंच पर बोलते हुए उन सभी जो लोग चाय के खेतों में काम करते हैं, सभी को हम सलाम करते हैं, सभी को हम नमन करते हैं।
1: मैं भी नमन करती हूँ।
0: उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: जय जय मॉरिशस।
1: जय मॉरिशस। नमस्ते।
2: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
3: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: पांच बजने में सिर्फ चार मिनट बाकी हैं, इसलिए हम तुरंत एक हमारी श्रोता से भेंट करना चाहेंगे जो खुद चाय के खेतों में काम करती हैं। नमस्ते कमला जी।
1: नमस्ते बेटा जी।
0: कैसे हो आप? बोला था तो हमने के बोला कि कैसे है कि चाय के खेत में काम करे के कैसे है?
1: बहुत डिफिकल्ट बा।
0: बहुत डिफिकल्ट बात है।
1: हाँ, फजीर के अभी ठंडा के समय बा ना।
0: हाँ,
1: फजीर के जाए के बने
0: ये बोला कि लिविया में चाय के पत्ता
1: हाँ अभी कमी बा।
0: कम होला कि ज्यादा बात है? कम होला
1: अभी, कम बा, बहुत कम।
0: कम होला तो हाँ। इसी समय में चाय के जो जो पौधा वो की काटे रह जा।
1: हाँ, अभी काटे के समय आवो था।
0: हाँ,
1: महीना फिनी हो तो हाँ। महीना से चाय हाँ। के खेती में चाहे काटे के लताई करके
0: हाँ।
1: हाँ। तो फिर से काम उपतो ले हाँ। तब जमी
0: जमी
1: फिर तू रख सो।
0: हाँ,
1: तो फिर चिली जो डाल सो तब फिर से जमी तब तुराई हुई नवाम देशम में तब मिले ज्यादा।
0: हाँ, तो
1: अभी
0: ये बोला कि कौन उम्र से तू ये काम करेला?
1: हम रानी सुजन के से चाय के खेत में काम करेला।
0: यानी कि कौन उम्र से कौन लाज रहल तब?
1: तब तो लगवा कितना रहल होई गो
0: छोटा से चालीस साल से
1: हाँ।
0: हर सुबह के सांदी दिमास पानी बरसात
1: हाँ सब में पर ले जाए के पापा। और ये तो जस्ती डिफिकल्ट काम हो।
0: हाँ,
1: अभी के जैन लोग नहीं काम करे खोजता
0: नहीं करे सर नहीं करे सर
1: जन ठंडा में कोई नहीं उठ के जाए और प्लास्टिक बांध
0: हाँ।
1: चातुर के आना अब तक कारों में जला लोरी ले गई पहले नहीं
0: हाँ।
1: से दूर से आना घनघोर तब कामियो ले
0: हर व्यक्ति के सामने फजीर के एको प्याली चाय
1: हाँ।
0: आवेला लेकिन उस प्याले के पीछे जितना संघर्ष बात है जितना जिफो बात है
1: हाँ, हाँ।, हाँ। बहुत संघर्ष।
0: और हमने
1: आना तब पहिया में भर तब कामियो आए तो नाप के जाए
0: हाँ।
1: अभी तो बहुत फैसिलिटी बा कामियो आवेला कारो लगे
0: हाँ।
1: पहले बहुत दूर दूर से परे ढो ढो के आने के
0: हाँ।
1: पर्सनल्स नहीं रहते है काम
0: नहीं करवा नहीं करवा हाँ। नहीं करवा
1: चाय पिए के तो खूब अच्छा बा
0: हाँ।
1: कमवा करे के बड़ी जी
0: सो कमला जी आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा है?
1: हाँ बेटा
0: हम आपको
1: बहुत धन्यवाद बहुत खुशी हुई तो हर से बात करके
0: आपको नमन करते हैं आपकी आपके साहस की हर रोज ऐसे आप चाय के खेत
1: पत्नी दोनों जाए ला जा
0: अच्छा
1: चाय के खेत में काम करे
0: फिर से मिलब जा अच्छा नमस्ते
1: फिर मिलब जा लाइन मिल गल ना
0: हाँ
1: मिलब जा।

0: τα μιλή μπουζάτα.
1: Όμιλη.
0: Άλλα με τα βάγουν τα
1: κεφάλια. Namaste, namaste, namaste. So इसी के साथ ही आज का हमारा ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है. आप सबों से बात करते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हुई. आशा करते हैं कि आप ऐसे आपका प्यार हम तक पहुँचाते रहेंगे. 5 बजे के बाद आपकी मुलाकात होगी हमारे दोस्त प्रताप सिंह सितारू जी से. एक और ऐसा ही प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे अगले शनिवार को. तब तक अपना ख्याल रखें. गुरुवार की शाम को मिलते हैं 5:30 बजे राम रस धारा प्रोग्राम में.

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, साज आवाज के हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वीकार कीजिए और जी प्रताप सिंह सितालू का प्यार भरा नमस्कार। आज है सैटरडे की मस्तानी और रंगीन शाम। जी हाँ, 27 मई 2026, पुराने नगमे प्रोग्राम में

आप सभी का हम स्वागत करते हैं और ये प्रोग्राम चलेगा अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। और आज प्रोग्राम को हम खास बनाएंगे क्योंकि आज हम जिक्र करने वाले हैं दो फिल्मों के बारे में। एक फिल्म है कलाकार और दूसरी फिल्म का नाम है त्रिदेव। सो फिल्म पर, फिल्म कास्ट पर, म्यूजिक, लिरिक्स, इन दोनों फिल्मों के बारे में आज हम बात करेंगे और इन्हीं दो फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे। यस, बेशक। और पहले हिस्से में होगा फिल्म कलाकार के गाने और दूसरे हिस्से में होगा फिल्म त्रिदेव के गाने। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म कलाकार के एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

जी दोस्तों, फिल्म कलाकार एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म रही जिसका निर्देशन प्रसिद्ध फिल्मकार पी सांबसिया राव ने किया था। इस फिल्म में कुणाल गोस्वामी और श्रीदेवी ने मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म प्रेम, कला और भावनाओं के संघर्ष को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। फिल्म की कहानी एक युवा कलाकार के जीवन पर आधारित है जो संगीत और कला की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। वो एक सुंदर और संवेदनशील युवती से प्रेम करने लगता है। दोनों के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। परिवार, समाज और परिस्थितियां अनेक प्रेम की परीक्षा लेती है। फिल्म यह दिखाती है कि सच्चा कलाकार केवल कला ही नहीं बल्कि दिल की भावनाओं को भी समझता है। श्रीदेवी ने अपने शानदार अभिनय और मासूम अदाओं से फिल्म को जीवंत कर दिया। उसकी भाव भंगिमा और नृत्य दर्शकों को आकर्षित करती रही। कुणाल गोस्वामी ने भी संघर्षशील कलाकार की भूमिका को ईमानदारी से निभाया। सहायक कलाकारों का अभिनय भी प्रभावशाली है। फिल्म का संगीत उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मधुर गीत और भावुक धुनें दर्शकों के दिल को छू लेती है। गानों में प्रेम, दर्द और आशा का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। पुराने दौर के संगीत प्रेमियों के लिए यह फिल्म विशेष आकर्षण रखती है। निर्देशन और छायांकन के बारे में बात करें तो निर्देशक ने फिल्म को सरल लेकिन भावनात्मक शैली में प्रस्तुत किया। कैमरे का प्रयोग, रंगों का संयोजन और गीतों को फिल्मांकन शैली 1980 के दशक की फिल्मों की खूबसूरती को दर्शाती है। कलाकार फिल्म एक भावनात्मक और संगीत से भरपूर फिल्म है जो प्रेम कला की दुनिया को खूबसूरती से दिखाती है। यह फिल्म खासकर उन दर्शकों को पसंद आएगी जिन्हें पुरानी रोमांटिक और संगीत प्रधान फिल्में देखना अच्छा लगता है। तो चलिए इसे फिल्म का और एक गाना सुनते हैं। जी हाँ, सूरजमुखी मुखरा तेरा, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में।

जहां फिल्म कलाकार के गाने जो है बहुत ही अच्छे रहे बॉक्स ऑफिस पर, कई सालों तक इस फिल्म के गीत गूंजते रहे। हालांकि कलाकार फिल्म को बड़े फिल्म पुरस्कार समारोहों में कोई प्रमुख पुरस्कार तो नहीं मिला, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत सफल नहीं रही। हालांकि इसका संगीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ, खासकर गीत नीले नीले अंबर पर दर्शकों के बीच बेहद प्रसिद्ध हुआ। फिल्म में श्रीदेवी ने अभिनय और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के संगीत को की खूब सराहना हुई, लेकिन उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार फिल्म ने कोई बड़ा फिल्म फेयर या नेशनल अवार्ड नहीं जीता। फिर भी इस फिल्म का एक जो गाना नीले नीले अंबर पर है, बहुत से लोगों ने इस गीत को पसंद किया और लोग आज भी जब गीत सुनते हैं तो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो चलिए इसी फिल्म का वही गीत हम आपको सुनवाते हैं। और जितने भी लोग हमें इस समय टिकटॉक पेज पर देख रहे हैं, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, तो चलिए ये गीत आप सभी के नाम नीले नीले अंबर पर।

हाय जब मैं ये गीत सुनता हूँ तो मैं एक अलग ही दुनिया में खो जाता हूँ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, कलाकार के गीत बहुत लोकप्रिय हुए, खासकर नीले नीले अंबर पर फिल्म का संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया और गीतों को लिखा इंदिवर साहब ने। प्रसिद्ध गीत इस फिल्म के नीले नीले अंबर पर किशोर कुमार साधना सरगम मेल और फीमेल वर्जन दोनों है। खोए खोए रहे तेरी चाहों में दीप जलाए जो गीतों के मैंने, गोरी तेरी जवानी पे मैं दूर चला जाऊंगा यहाँ से, सूरजमुखी मुखरा तेरा मेरा प्यार मुझसे रूठा। पूरा लिरिक्स कॉपीराइट के कारण हम यहाँ पूरा नहीं दे सकते। ऑलराइट, बट अगर आप इस गीत के लिरिक्स को ढूंढना चाहते हैं तो इंटरनेट पर जा सकते हैं और आपको गीतों के लिरिक्स मिल जाएगा। और इस फिल्म एक सीक्वेंस था जहाँ पर कुणाल गोस्वामी रिकॉर्डिंग कर रहा है और श्रीदेवी बाहर इंतज़ार करती है और कुणाल गोस्वामी इस फिल्म में उसको कैंसर हो जाता है पर वो श्रीदेवी को नहीं बताता कि उसे कैंसर की बीमारी है और वो रिकॉर्डिंग पे जाता है। श्रीदेवी बेचारी बाहर उसका इंतज़ार करती रहती है, मेरा प्यार मुझसे रूठा। चलिए हम ये गीत आज आपके नाम करते हैं। एंड रेडियो मनोरंजन पर आप सुने पुराने नगमे प्रोग्राम, साथ में आप टिकटॉक पेज पर हमें देख रहे हैं। थैंक यू जितने भी लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर और सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, थैंक यू जी। मेरा प्यार मुझसे रूठा, हम तो दुआ करते हैं कि किसी का प्यार किसी से ना रूठे। ऑलराइट, चलिए इस गीत का मजा लेते हैं।

जब फिल्म बनती है तो फिल्म बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है और फिल्म की शूटिंग कई जगहों पर की जाती है। जहां तक कलाकार फिल्म की बात है तो ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग स्रोतों के अनुसार फिल्म की अधिकांश शूटिंग भारत में स्टूडियो स्टेट्स और शहरी लोकेशन पर की गई थी। फिल्म के कई गीत और दृश्य मुंबई के स्टूडियो वातावरण जैसे लगते हैं, क्योंकि 1980 के दशक में ऐसी संगीत प्रधान फिल्मों की शूटिंग अक्सर मुंबई के फिल्म स्टूडियो में हुआ करती थी। हालांकि किसी ने एक निश्चित शूटिंग लोकेशन की आधिकारिक सूची उपलब्ध नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि बहुत सारे स्टूडियोज में इस फिल्म की शूटिंग की गई है। एंड श्रीदेवी और कुणाल गोस्वामी के बारे में बता दें कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी सो दे वर क्वाइट शाय एंड टिमिड एट दैट टाइम, स्पेशली रोमांटिक सीन्स जहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना होता है, बट दे डिड इट और दे क्रिएटेड दैट मैजिक, क्योंकि हीरो हीरोइन जिसे हम फिल्मों में देखते हैं सो दे आर एक्टिंग, ये रियलिटी नहीं है, फिल्म है ना। सो कहा जाता है कि कुणाल गोस्वामी एंड श्रीदेवी दे वर वेरी शाय व्हाइल शूटिंग द फिल्म बट दे डिड इट और जो फिल्म का जादू दिल पर बेशक सभी के दिलों पर छा गया। और राइट, चलिए इस फिल्म का एक अंतिम गीत हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म कलाकार का गाना खोए खोए रहे तेरी बाहों में।

Got your time, शाम के 5:32 हो रहे। Yes, in the first part हमने चलाया फिल्म कलाकार के गाने और इस फिल्म के बारे में हमने जिक्र की। अब हम बात करेंगे फिल्म त्रिदेव के बारे में। Yes, and इसी फिल्म के गाने हम अभी से शाम के 6 तक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। You know, फिल्म त्रिदेव 1989 की एक सुपरहिट एक्शन थ्रिलर फिल्म रही, जिसका निर्देशन राजीव राय ने किया था। फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और अमरीश पुरी जैसे बड़े कलाकार थे इस फिल्म में। यह फिल्म अपने दमदार संवाद, ज़बरदस्त एक्शन और शानदार संगीत के कारण आज भी याद आती है। कहानी कुछ इस तरह से, फिल्म की कहानी में तीन अलग अलग व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक खतरनाक अपराधी भुजंग के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, एक बहादुर युवक और एक विद्रोही स्वभाव का व्यक्ति मिलकर अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हैं। कहानी में बदला, दोस्ती, प्रेम और देशभक्ति का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। जहां तक अभिनय की बात है, सनी देओल ने गुस्सैल और ईमानदार पुलिस अधिकारी की भूमिका में शानदार अभिनय किया। जैकी श्रॉफ का स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म को और आकर्षक बनाता है और नसीरुद्दीन शाह ने गंभीरता और हास्य दोनों का बेहतरीन संतुलन दिखाया। वहीं पर अमरीश पुरी ने बेस्ट विलेन का रोल निभाया इस फिल्म में। और संगीत की बात करें, सो फिल्म का संगीत उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। विजू शाह और कल्याण जी आनंद जी द्वारा तैयार किया गया गीत आज भी लोकप्रिय है। ओवे ओवे, तिरछी टोपी वाली, गली गली में फिरता है, मैं तेरी मोहब्बत में, इन गीतों ने 1980 के दशक के ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल की। और निर्देशक राजीव राय ने फिल्म को तेज रफ्तार और मनोरंजन शैली में प्रस्तुत किया। फिल्म एक एक्शन दृश्य संवाद और मल्टी स्टार कास्ट और दौर के दर्शकों के लिए बहुत आकर्षक रहा। त्रिदेव बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और इसे कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2 पुरस्कार जीते। कह सकते हैं कि त्रिदेव एक मसाला से भरपूर फिल्म है, जिसमें एक्शन, संगीत, रोमांस और ड्रामा का शानदार मेल है। यह फिल्म 80 और 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों के सुनहरे दौर की पहचान मानी जाती है और आज भी दर्शक को खूब पसंद है। सो अगर आप भी फिल्म त्रिदेव आपने फिल्म देखी है, सो हो जाइए प्यारा सा गाना इसी फिल्म से लिया गया आपके नाम। अभी से 6 तक फिल्म त्रिदेव ही के गीत चलेंगे। चलिए सुनते हैं ये पहला गाना अलीशा चिनॉय की आवाज़ में।

रात भर जाम से जाम तक रह गया, अभी तो शाम का वक्त है, अभी तो रात नहीं आई, फिर भी अंधेरा छा गया है। त्रिदेव की शूटिंग मुख्य रूप से भारत में हुई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म के कई दृश्य मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में फिल्माए गए थे। उस दौर में बड़े एक्शन और गीतों की शूटिंग अक्सर मुंबई के स्टूडियो तथा बाहरी लोकेशन पर होती थी। फिल्म के कुछ हिस्सों में ग्रामीण और पहाड़ी वातावरण भी नजर आता है, जिन्हें उत्तर भारत के इलाकों में शूट किया गया था। हालांकि आधिकारिक शूटिंग लोकेशन की पूरी सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। फिल्म की खास बातें ओवे ओवे और तिरछी टोपी वाले जैसे गानों की शूटिंग उस समय के भव्य स्टेट्स पर हुई थी। फिल्म के एक्शन दृश्यों को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया, जो 1980 के दशक में बॉलीवुड सिनेमा की खास पहचान थी। निर्देशक राजीव राय ने फिल्म को स्टाइलिश रूप देने के लिए कई बड़े स्टेट्स और आउटडोर लोकेशन का उपयोग किया। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं और टाइप कीजिए त्रिदेव मूवी। फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म का म्यूजिक, फिल्म का एक्शन, फिल्म के स्टार कास्ट और एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल, यू विल जस्ट एंजॉय इट। मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, मैंने फिल्म 3-4 बार देखी है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी के लिए हो जाइए इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। यस, गजर ने किया है इशारा, और क्या इशारा है, चलिए एक साथ सुनते हैं।

से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव।

अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश वो कहला

0: पुराने नगमे।
1: जय पुराने नगमे प्रोग्राम में आज हमने दो फिल्मों के गीत चलाए। पहले हिस्से में था फिल्म कलाकार के गाने और दूसरे हिस्से में हम चला रहे फिल्म त्रिदेव के गाने। संगीता बिजलानी और सोनम अपने जमाने की अदाकारा मानी जाती है। अपने जमाने में

मैंने बहुत सारी फिल्में मिला करती थी, बहुत सारी फिल्मों में दोनों ने काम किया, पर आजकल ये फिल्मी दुनिया से दूर है. यस बट स्टिल दे लुक सो यंग. और माधुरी दीक्षित जी का क्या कहना, कुछ साल पहले वो देवदास मूवी में नजर आई थी और फिल्म त्रिदेव में ये तीनों हीरोइनों ने गजब फिल्म त्रिदेव में माधुरी दीक्षित, सोनम और संगीता बिजलानी ने गजब का रोल निभाया और लोगों ने इनकी जोड़ी को बहुत पसंद की. आज भी जब लोग यह गीत सुनते हैं तो इन तीनों को याद करते हैं. तिरछे टोपी वाले, चलिए एक साथ सुनते हैं यही गाना फिल्म त्रिदेव से लिया गया.

इसी गीत के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। ठीक 6 बजे प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 6 बजे का पूरा समाचार बुलेटिन, हमारी आपकी मुलाकात होगी अब कल दिन के 3 बजे से 4 बजे तक इसी चैनल पर। ऐसा भी होता है कार्यक्रम में, फिर उसके बाद कल रात को हम आपसे मिलेंगे रात के 9 बजे से 11 बजे तक भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में। शाम के 5 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, टिकटॉक पर आपने हमें देखा, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, रेडियो पर आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मुलाकात तक हमें दीजिए इजाज़त। और जय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बोबासन रुजिल में नगर पालिका चुनाव की शुरुआत, लुई टूसा ओंद्रे सर्वसम्मति के साथ मेयर चुने गए। सफाई और चिकुनगुनिया पर रोकथाम पर रहेगा ध्यान। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में मेयर और लोर्ड मेयर चुनावों की तारीखें तय की। कैट्रोबोन, पोर्टवी, वाक्वा, फेनिक्स और क्यूपिप में सोमवार को होगा मतदान। अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शांति, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अफ्रीकी सहयोग मजबूत करने पर अपील की है। ये बात कैबिनेट की बैठक में कल नोट की गई। मुकाम में पब्लिक सर्विस एक्सलेंस अवार्ड का आयोजन, मंत्रालयों, अर्ध सरकारी संस्थाओं और डिसिप्लिन फोर्सेज को सम्मानित किया गया। हज से पहले जेद्दा में अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक, मंत्री शकील मोहम्मद ने यात्रियों की सुविधा और इंतजामों पर चर्चा की। कोंगो में एबोला का खतरा बढ़ा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति को बहुत गंभीर बताया। युगांडा में भी मामले सामने आए हैं। चीन के शांशी प्रांत में कोयला खदान में भीषण गैस विस्फोट, कम से कम 90 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। नगरपालिका चुनावों की शुरुआत आज बोबासन रुजिल से हुई, जहां लुई टूसा ओंद्रे सर्वसम्मति के साथ मेयर चुने गए हैं। साल 2012-2013 के बाद ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। पूर्व सामाजिक कार्यकर्ता रहे लुई टूसा ओंद्रे का कहना है कि उनकी प्राथमिकता शहर में सफाई की जो समस्या है उससे निपटना और चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। कैबिनेट ने विभिन्न नगर पालिकाओं में लोर्ड मेयर और मेयर के चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं। बोबासन रुजिल नगर पालिका में आज चुनाव लगाए गए, जबकि कैट्रोबोन, पोर्टवी, वाक्वा, फेनिक्स और क्यूपिप नगर पालिकाओं में नए मेयर को चुनने के लिए सोमवार 25 मई को चुनाव आयोजित किए जाने वाले हैं। कैबिनेट ने नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड समिट में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की भागीदारी के परिणामों का जायजा लिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने शांति और सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, केन्या के

0: राष्ट्रपति विलियम रूटो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी लगाई। इस बात का जायजा कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट के कुछ अन्य अहम फैसले कुछ इस प्रकार हैं। कैबिनेट ने देश में मूसलाधार बारिश के दौरान लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों, आपातकालीन सेवाओं तथा स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। नए प्रावधानों में खराब मौसम के दौरान आवाजाही, काम और सुरक्षा को लेकर साफ दिशा निर्देश तय किए गए हैं। कैबिनेट ने साल 2026 के पब्लिक हॉलीडे में बदलाव की बात नोट की। अब गणेश चतुर्थी का पर्व बुधवार 16 सितंबर की जगह मंगलवार 15 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। ये बदलाव मराठी मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के अनुरोध पर किया गया। कैबिनेट ने पानी की पाइपलाइन बदलने की बड़ी परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू होने वाली इस काम के तहत गौबे के शिम वैंपिया इलाके में मुख्य पाइप बदली जाएंगी ताकि उत्तरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति बेहतर हो सके। परियोजना अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। कैबिनेट ने मोबाइल फोन पोर्टेबिलिटी परियोजना की प्रगति को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद लोग अपना मोबाइल नंबर बदले बिना किसी दूसरे टेलीफोन सेवा प्रदाता की सेवा ले पाएंगे। इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है। सरकारी सेवा में उत्कृष्ट कार्य और नवाचार को कल शाम मोका में सम्मानित किया गया। मंत्रालयों, अर्ध सरकारी संस्थाओं और अन्य सेवाओं को एक भव्य समारोह के दौरान पुरस्कृत किया गया। जनता की सेवा में उनके योगदान को सराहते हुए ट्रॉफी, सम्मान और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब के जेद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग सिस्टम से अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ जुड़ी हुई हैं। साल 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू की गई ये व्यवस्था अब मध्यम स्तर की कंपनियों तक भी बढ़ाई जा रही है। ई इनवॉइसिंग का उद्देश्य कंपनियों की टैक्स व्यवस्था को आधुनिक बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। इस देश के आर्थिक सेक्टर में डिजिटल बदलाव की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सुनिए।
1: कैथरबोन में हमारी मुलाकात सिल्वेन से हुई। उनकी कंपनी इलास्टिक एक स्थानीय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसे मॉरिशस की कंपनियों को अपने संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद देने के लिए तैयार किया गया है। पूर्व में देखें तो वेबसाइट, बिक्री, अकाउंटिंग तथा वैट इत्यादि सबके लिए एक प्रणाली थी जो कि एक ठेकेदार के लिए इनका संचालन करना काफी जटिल हो जाता है। इसलिए इन सभी को आसान बनाते हुए इन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। ये सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपनी बिक्री, स्टॉक खरीद या अकाउंटिंग सहित कई कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की सुविधा देता है। एक डायरेक्टर होने के नाते इस प्लेटफॉर्म पर आने पर आपको अपने टर्नओवर दिन, सप्ताह और महीने तथा वित्तीय साल के दौरान निकले गए बिल्स और इसके साथ ट्रेंडिंग बिजनेस भी प्राप्त होगा जिससे कि पता चले कि किस ब्रांच ने अच्छा काम किया है। कैसे ऐसे छोटे मध्यम उद्योग भी हैं जो क्रेडिट पर काम करते हैं, तो यहाँ ऊपर आपको बिल मिला और नीचे आपको कितने पैसे चुकाए गए ये भी मिलेगा। मुजोल्स के स्तर पर कई उपलब्ध हैं जैसे ग्राहक का डैशबोर्ड, सप्लायर आइटम, सेल्स इत्यादि जो एक वेबसाइट से जोड़ा जा सकता है। ई कॉमर्स के लिए एक अलग पैकेज है। वाकवा में अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकान में युवा शोएब अपने स्टॉक को संभालते हुए बिल्स का भी प्रबंधन कर रहा है। हाल ही में अपने कामकाज को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उसने अपनाया है। इस नई प्रणाली के माध्यम से हम आसानी से सब कुछ डिजिटल बना पा रहे हैं और प्रक्रियाओं को भी आधुनिक किया जा सकता है। हम अपने अकाउंटिंग, स्टॉक

0: इस सब का अच्छी तरह से संचालन कर पा रही हैं। हमें एमओए से पत्र मिला है कि सितंबर महीने से हमें इनवॉइसिंग का इस्तेमाल करना होगा। एमओए की एक समर्पित टीम इस बदलाव में कंपनियों का साथ दे रही है। ये प्रक्रिया 2024 में चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है कंपनियों के कारोबार के अनुसार। ये एक डिजिटल प्रणाली है जहां एक कंपनी अपने ग्राहक को एक इनवॉइस निकाल कर दे सकती है। इस इनवॉइस में पाए जाने वाली सभी जानकारियां एमओए को प्राप्त होगा और टैक्सेशन के लिए एक क्यूआर कोड मिलता है, जहां जिन कंपनियों का टर्नओवर 100 मिलियन से अधिक है उन्हें 2024 में इस प्रणाली में शामिल होने के लिए सूचित किया गया था, और जिन कंपनियों का टर्नओवर 40 से 80 मिलियन होता है उनके लिए जून तक का समय है।
1: हम आपको बता रहे थे कुछ देर पहले कि नगर पालिका चुनाव की शुरुआत आज बुबा सेंट रोजिल से हुई, जहां लुई टूसें ओंद्रे को सर्वसम्मति के साथ मेयर चुना गया। उनको सुनते हैं।
2: Terrains dans des enfants abandonnés, terrains de foot, pas une adjimoun. C'est là que nous travaillons, nous revenons, c'est pour faire sa bandimoun là, ban jeune là, réintéresser au lieu qu'ils rentrent dans sa problème fléau de la drogue qu'ils ont aujourd'hui, une vilaine problème terrible dans nos pays.
1: Front militant progressiste का कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था संभालने और लोगों को राहत देने के लिए जल्दी कदम उठाने होंगे। आज सुबह बन में एक प्रेस वार्ता में पुल बिहोशे ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने और बाजार में एक अधिकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
3: फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के नेता ने चार कदमों का उल्लेख किया जो उनके मुताबिक सरकार को उठाना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति और दामों में बढ़ोतरी का सामना किया जा सके। इनमें प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अतिरिक्त पदार्थों को जोड़ने और एकाधिकारों तथा कार्टेल्स के खिलाफ समर्थित कदम की कमी शामिल है।
4: L'ICREA qui puisse faire un effort et diminuer ban taxes et TVA, le ban produit pétrolier importé. Et moi, j'espère que le gouvernement puisse aller vite à l'occasion de sa budget qui peut venir là. Depuis l'élection, au moins, la dépréciation de la roupie fin stabilisée. Sauf ces derniers jours. Là, malheureusement, il y a une appréciation de la roupie par rapport au dollar. Ils surveillent ça de près. Et la Banque de Maurice vient agir dans toute la mesure du possible pour aider nous de sa côté-là.
3: दूसरी तरफ पुल बिहोशे ने उम्मीद जाहिर की कि कंपटीशन कमीशन को अधिक हक देने के लिए कानून में सुधार लाए जाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा में तेजी लाने के महत्व पर भी बात की। हाल में अदरिया जीवाल द्वारा बुलाए गए प्रेस सम्मेलन पर भी सवाल किया गया। पुल बिहोशे ने कहा कि वे और अदरिया जीवाल साथ काम नहीं करते हैं।
1: बजट 2026-2027 की तैयारी के बीच रिफॉर्म पार्टी ने सरकार के सामने चार प्रमुख प्रस्ताव रखे हैं। शनिवार सुबह एबेन के हेनेसी पार्क होटल में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान महंगाई, चिकुनगुनिया के बढ़ते मामले तथा देश में कानून व्यवस्था और सामाजिक शांति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
3: भावी बजट के चलते रिफॉर्म पार्टी के लीडर होशी बादल ने सरकार को चार प्रस्ताव पेश किए ताकि जीवन खर्चों का सामना करने के लिए लोगों को थोड़ी राहत मिल सके।
5: TVA, seuil 3 millions qui vise à régater parce qu'il peut affecter tout le business de Maurice. Le taux hybride électrique, vrai hybride et électrique qui vise à retirer du type pour qu'il pas dépense 50 stécas là, l'eau diesel, l'eau l'essence. Troisièmement, l'eau, prix l'essence diesel, l'eau ça boute en plus qui nous peut dire prix augmenté à cause de la guerre, mais pas mettre du type là, pas mettre TVA, l'eau ça boute qui inaugmenté là. Au moins, frise sa boute là, prévoit sa situation avec cette politique de pension qui pas adresse le vrai problème de sustainability.
3: बहुत जल्द रिफॉर्म पार्टी के साथ जुड़े नए लोगों की प्रस्तुति निर्धारित है। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि वो भावी ग्राम चुनावों के सिलसिले में तैयारी कर रही है।
1: हम आपको बता रहे थे सुर्खियों में कि रविवार शाम से हज की शुरुआत होने जा रही है और इसी तैयारी के तहत

0: मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब के जिद्दा में हज से जुड़ी एक अहम अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया। बैठक में हज के इंतजाम, यात्रियों की सेहत और दूसरी सुविधाओं को लेकर सऊदी अधिकारियों के साथ चर्चाएं हुई।
1: सऊदी अरब जेदा में हज के ग्रैंड सिंपोजियम का 50वां संस्करण आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई देशों के मंत्रियों, जिनमें शकील मोहम्मद भी शामिल थे, प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वानों और सऊदी अरब की उच्च हस्तियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान हज यात्रा के आयोजन पर बात की गई, विशेष रूप से स्वास्थ्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और हजियों के मार्गदर्शन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। हमने हज मंत्री तौफिक बिन फौजान अल रबिया और डेप्यूटी मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मशद से मुलाकात की और मॉरिशस तथा सऊदी अरब के बीच पाए जाने वाले द्विपक्षीय संबंधों के चलते ये तय हुआ है कि मॉरिशनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन विषयों पर कई कार्यशालाएं भी आयोजित की गई ताकि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हज की व्यवस्थाएं और बेहतर बनाया जा सके। मंत्री शकील मोहम्मद ने सऊदी अरब तथा हज और उमरा के उप मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजान अल रबिया और डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मशद के साथ अलग से मुलाकात की। चर्चाओं में अगले हज यात्रा की तैयारियों पर भी बात की गई, जिसका उद्देश्य बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना और मॉरिशस के हज यात्रियों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करना है। इस्लाम के पांचवें स्तंभ हज को अदा करने के लिए 1500 मॉरिशन पहले ही वहां पहुंच चुके हैं, जिसकी शुरुआत रविवार 24 मई से होगी।
0: कोंगो में फैल रहे एबोला को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरे का स्तर और बढ़ा दिया है। संगठन का कहना है कि देश के भीतर स्थिति अब बहुत गंभीर हो चुकी है। अब तक 750 संदिग्ध मामले और 170 से ज्यादा संदिग्ध मौतें सामने आ चुकी हैं।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एबोला के खतरे को बहुत ही उच्च करार दिया। एबोला के फैलाव पर काबू पाने के लिए अंतिम संस्कारों के वास्ते एक प्रोटोकॉल लागू किया गया है। 750 संदिग्ध मामले हैं और 177 मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अधिकारियों ने हुक्म दिया कि सिर्फ खास टीमें लाशों को दफन कर सकती हैं। सभी स्वास्थ्य सावधानियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जुटावों में सिर्फ 50 लोगों की भागीदारी की अनुमति दी जा रही है। अभी तक एबोला के लिए कोई टीका या कारगर इलाज नहीं है। कुछ मुल्कों ने एबोला से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए पाबंदियां लागू की हैं। मकसद एबोला के संक्रमण पर नियंत्रण पाना है।
0: और भारत में गर्मी अपनी चरम पर है। उत्तर भारत में विशेषकर पारा 48 डिग्री को पार कर चुका है।
2: भारत की गर्मी 45 डिग्री सेल्सियस के पार है। भारत के मौसम भवन ने चेतावनी जारी की कि ये स्थिति बहुत ही गंभीर होने वाली है, खासतौर पर आने वाले 6-7 दिनों तक उत्तर पश्चिम पूर्व और केंद्र में कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दी गई है। अस्पतालों और प्रांतीय प्रशासनों में फौरी हस्तक्षेप के लिए तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। इस मौसमी गर्मा की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में गर्म हवाएं और कम पानी है। डॉक्टर हाइड्रेशन पर जोर दे रहे हैं।
3: दिल्ली इज करंटली एक्सपीरियंसिंग हीट वेव वेयर द टेंपरेचर्स गो फ्रॉम 42 टू 43।
2: दिल्ली में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस है और 48 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी महसूस की जा रही है। ऐसी स्थितियों में लोगों को उल्टियां हो सकती हैं, डिहाइड्रेशन भी होता है। इस तरह की हालत को जल्दी इलाज की जरूरत है।
3: दे माइट गेट कंफ्यूज्ड, दे माइट फील डिहाइड्रेटेड, सीवियरली थर्स्टी एंड दे आल्सो माइट हैव थ्रो, दे माइट थ्रो फिट्स और सीजर्स। इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी वेयर वी हैव टू रैपिडली कूल द पेशेंट्स टेंपरेचर।
2: गए 4 दिनों में बिजली नेटवर्क ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली की बहुत बड़ी मांग है। अधिकारियों ने सावधान रहने की मांग की। 14 सालों में इस मई महीने में दिल्ली में सबसे गर्म रात दर्ज हुई। आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और दूसरे इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज होगा।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में ही चीन के शांजी प्रांत में स्थित एक कोयला खदान में हुए भीषण गैस विस्फोट में कम से कम 90 लोगों की जाने गई हैं। यह हादसा शुक्रवार देर रात उस समय हुआ जब खदान के भीतर 250 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। राहत और बचाव अभियान अब भी जारी, जबकि

घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और बचाव कार्य में कोई कसर न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हादसे की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।

चले जानते हैं कि मौसम का हाल है, कैसा रहेगा रात को और कल सुबह के दौरान। देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, बेशक बाद में ऊंचे इलाकों और दक्षिण में कुछ कुछ वर्षा हो सकती है और बादल भी घिरे रहेंगे। शाम को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा और धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके दक्षिण पूर्व की दिशा में बढ़ सकती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान साहली इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। प्रवाल रेखा के बाद समुद्र खराब रहेगा, खासकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:48 पर हो गया है, सूर्योदय होगा कल सवेरे 6:35 पर।

0: देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे यज, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: केवल नगर बेलगीव में बेलगीव में 57 साल के 57 years old के श्री धर्मराज भगीरथी की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें आदू के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के घर बेलगीव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वाइलो ओलिविया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. मेसोनेट रोड रिविया दिस अंगी में 80 साल के 80 years old के सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है. सुबाया जगनंदन की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थे कल दिन के 11 बजे उनके बेटे जेसन जगनंदन के मकान रिविया दिस अंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: Your news, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव।

अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत, राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश, वो कहलाएंगे

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: Nee so.

0: नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ के ऊपर। जी हाँ, 6:34 हो चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी डाइट के ऊपर। तो कई लोग खाना जो खाते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, लेकिन बॉडी को सच में क्या चाहिए ये समझ ही नहीं पाते। पुरानी आदतें, सेम टेस्ट और डाइट के नाम पर खुद को रोक लेना, उनको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये नहीं खाना क्योंकि हम डाइट पर हैं। लेकिन हेल्थ सिर्फ पतले होने का नाम नहीं होता। ये नहीं होता कि हम बहुत मोटे हैं तो हमको सिर्फ पतले ही होना है और पतले ही सुंदर लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। खुद का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आज बात करने जाएंगे हम थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर। थोड़ी सी रेडी हो जाइए, थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आपका मूड फ्रेश हो। आप अगर घर पर बैठे हैं, घर पर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, तो क्यों ना हो। तो चलिए बात करते हैं, साथ में गाने भी सुनते हैं। एंजॉय कीजिए आपका ये नेक्स्ट ट्रैक।
1: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio.
1: दोस्तों 6:42 हो चुके हैं और आपने नोटिस किया होगा कि घर में जो पेरेंट्स होते हैं ना, स्पेशली लेडीज, सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सबसे पूछती हैं क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या तुमको ये पसंद है, क्या तुम्हें कड़वा पसंद नहीं है, क्या मैं तुम्हारे लिए ये अच्छा अच्छा सा मीठा सा बना दूँ, ये सब कुछ लेडीज पूछती हैं। बट जब बात आती है खुद की, तो बस वही बचा हुआ जो फ्रिज में पड़ा होता है, जो रात का बचा होता है, वही खा लेती हैं। और कई बार सोचती हैं कि चलो ठीक है, कौन इतना टायर्ड होगा, दोबारा से अपने लिए बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इतना जरूर कहूंगी दोस्तों, थोड़ा सा प्यार अपनी प्लेट में रखिए, थोड़े से अपनी प्लेट को ग्रीन कीजिए, उसके अंदर हर कलर डालिए। कभी कुछ लाल रंग का हो जाए प्लेट, कभी कहते हैं ना येलो कलर हो जाए, कभी हरा रंग हो जाए, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी आपकी बॉडी में लगती हैं। और जब आप बहुत अच्छा खाते हैं तो आप बीमार बहुत कम होते हैं। तो प्लीज लेडीज, और ऐसे भी बहुत सारे मेल्स भी ऐसे होते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे फ्रिज में रख दो, तो जितना भी आप अवॉइड कर सकते हैं फ्रिज को, उतना अवॉइड

सो। 6:53 हो चुके हैं दोस्तों और हम बात कर रहे हैं आज हेल्थ पर। तो हर नई चीज़ ख़राब नहीं होती, कई बार पेरेंट्स को या बच्चों को लगता है अरे ये चीज़ तो हमने कभी खाई नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ ख़राब है। हो सकता है हमने नहीं खाई, हमारे सामने नहीं आई, हमने कभी उसको ट्राई नहीं किया। और कभी कभी पुरानी चीज़ों पर ही हमारा दिल अटक जाता है, मतलब कोई चीज़ हमने बहुत सालों से लगातार खा रहे हैं तो हमें लगता है कि वही जो चीज़ खा रहे हैं वही बेस्ट है, वही सही है। तो सेम टेस्ट सेम हैबिट्स, कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को हो सकता है चेंज चाहिए होता है, जिसमें आप न्यू फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। कई ऐसे ऐसे सीजनल फ्रूट्स

0: होते हैं जो हमारे यहाँ पर लोकली मिलते हैं, बट कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं, कभी कभी आप उसको भी लेकर आएँ, उसको भी ट्राई करें, जिससे हेल्दी डिशेज बन सकती हैं, नई हैबिट्स चेंज हो सकती हैं, और शायद मैं ये कहती हूँ कि उसी में भी एनर्जी होती है। तो बस ये चीज़ें खाने से आपको एनर्जी मिलती है, अगर आप इन चीज़ों को ट्राई करेंगे, खाएंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट थी। और कई बार पुराने लोग जैसे बुज़ुर्ग होते हैं, वो यंगस्टर्स को कहते हैं कि ये चीज़ खाओ, इससे आपको ये बेनिफिट्स होंगे, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी भी बात को सुनना चाहिए।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:09 हो चुके हैं। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिन चाहे जैसा भी गुजरा हो, शाम हमेशा एक नया एहसास लेकर आती है। थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी मुस्कान और कुछ ऐसे गीत जो आपके साथ में जुड़े होते हैं बहुत पहले से दिलों के साथ। और जब दिलों के साथ कुछ जुड़ा होता है तो उसे टूटना या तोड़ना या धुभुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सबका स्वागत है दिलों की आवाज़ में। मैं हूँ आपके साथ पूनम। चलिए इस शाम को शानदार आते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और इंजॉय करते हैं आपके गाने, आपकी फरमाइशें। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5256062000 पर, और अगर आपको कोई कॉल करना है तो आप कर सकते हैं 4028070 पर। गाने आपके ही पसंद के चलेंगे, पर अगर हो सके तो बस थोड़े से रोमांटिक डाल दीजिएगा, थोड़े से मिर्ची और मसाले वाले अगर गाने होते हैं तो उसमें और अच्छा लगता है, क्योंकि रात पर बहुत सैड सी नहीं जाती और जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं उनको भी अच्छे लगते हैं, और जो घर पे होते हैं उनका भी थोड़ा सा मूड ज़रा मस्ती वाला बन जाता है और इन्जॉय करते हैं वो अपने गानों को, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो। और न्यू जनरेशन को कभी कभी पुराने गानों में लगता है कि अरे ये पुराने गाने इतना ओल्ड क्यों, तो भाई उनके लिए भी कुछ ऐसे गाने चूज़ कीजिएगा कि वो भी पसंद कर सके आप सबकी पसंद को। तो इन्जॉय कीजिए, मैं हूँ आपके साथ पूनम।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 7:24 हो चुके हैं और आज हमारे बीच में एक छोटे से लिसनर है जिसका नाम है रियाश और आज उनका बर्थडे है और सारा परिवार मिलके उसको थोड़ा सा कहते हैं ना एंटरटेन करने वाले हैं। उनकी छोटी एक सिस्टर है एलिना और वो कहती हैं कि जब वो बॉर्न हुआ था ना, जब वो पैदा हुआ था तो उसके जो लिप्स थे वो इतने रेड थे ग्लॉस के जैसे, इसलिए उसने उसका नाम रखा ग्लॉस। और कहती है कि इतना प्यारा बच्चा था, खूबसूरत बच्चा था, लाल लाल बच्चा था, इसीलिए हम हमेशा उसको ग्लॉस कहते हैं। नाना नानी अमित पापा माँ नताशा और उसकी दा सब उसे बहुत प्यार करते हैं और यही दुआ करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे, अच्छा बच्चा बने और सबका प्यारा ऐसे लाडला बनता रहे। हमारा ध्यान रखे उसको एक फेवरेट सॉन्ग है जो कि है अरिजीत सिंह का, उसकी नया भाई न्यू जोश है, न्यू बच्चे हैं, न्यू टेस्ट है, तो वो चाहती है कि एक प्यारा सा गाना अरिजीत सिंह का अगर हम चला सके तो हम बिल्कुल हम उनके लिए चलाने वाले हैं अरिजीत सिंह का। और रियेश को सिर्फ इतना कहेंगे विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे बच्चा, हमेशा खुश रहो, इंजॉय करो अपना अरिजीत सिंह का सॉन्ग और साथ में जब केक कट करो या अपनी पार्टी करो तो हमें भी जरूर याद कर कीजिएगा और सारे परिवार को बहुत बहुत प्यार।
0: RM3 रेडियो

0: दिलों की आवाज,
1: सात बजकर 35 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और हर इंसान के दिल में कोई ना कोई कहानी चल रही होती है और म्यूज़िक उसे थोड़ा सा आसान बना देता है। जब आपकी पसंद के गाने चलते हैं या आप पसंद के गाने हमें अपनी फरमाइशें भेजते हैं, तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उमा जी क्यूपिप से और साथ दे रही हैं और बहुत ही इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। ललित जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ USA से और वो भी बहुत ही खुश हो रहे हैं कि उनको ये गाने सुनने को मौका मिल रहा है मॉरिशस से। तो थैंक यू सो मच, अगर आपका साथ हमेशा साथ रहता है ललित जी, थैंक यू सो मच। उसके साथ में गिरीश हरलोल जी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि जब मोहब्बत होती है तो बहुत ही टूट के होती है, और जब टूट के होती है तो किसी ऐसे इंसान से होती है जिसके बिना जीना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे लिए उनकी फरमाइश का ये गाना ज़रूर चलाएंगे। तो उसके साथ में ललिता जी भी जुड़ी हुई हैं और कहती हैं कि हम साथ साथ हैं, इसलिए मैं ये गाना सुनना चाहती हूँ क्योंकि सुदेवी देवीना जी, ज्ञानी जी, आत्माराम भाई, दादी प्रभावती, छोटी दीदी और सुखलाल मौसी, उसके साथ में उषा लुखाना जी के लिए वो एक गाना सुनाना चाहती हैं और कहती हैं कि हमेशा वो मेरे दिल में रहते हैं और हमेशा मैं चाहती हूँ कि वो मेरे आसपास रहें। तो यही होती है ब्यूटी इस प्यार की और इस मोहब्बत की। चलिए भाई आपके पसंद के गाने सुनते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं। साथ में जो लोग अभी इस टाइम खाना खा रहे हैं या रिलैक्स मोड में हैं तो बस इंजॉय कीजिए ये गाने। ये आपको एक तो टेस्ट देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि आने वाले 2-3 घंटे आप आराम से रिलैक्स होकर पसंद के गानों के साथ जी सके। तो चलिए इंजॉय करते हैं ये आपका खूबसूरत गाना कुमार सानू की आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज,
1: क्या बात है, हम साथ साथ हैं। सच बात है, हम लोग भी साथ साथ हैं। एक छोटे से रेडियो से तो जुड़े हुए हैं, पर ये रेडियो भी देखो आपकी बातें, हमारे दिल की बातें एक दूसरे को एहसास दिला जाती हैं कि हाँ हम साथ साथ हैं। तो चलिए भाई, हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं हिना, हिमेश, रेशमिका, सीमा, रविता एंड रनीता, और साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनीता जी फ्लिकॉम फ्लाग से, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं और कह रही हैं कि गाने बहुत ही मस्त चल रहे हैं, प्लीज़ मेरा भी गाना ऐड कर दो। हम तो यही कहते हैं, आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने पसंद के गाने बताते रहिए। तो आज शायद लगता है पुराने गानों से लगता है 80s और 90s पर गाने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपके भी पसंद का कुछ ऐसे गाने हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 4028070 पर, और अगर आपको मैसेज करना है तो कर सकते हैं 5250620 पर।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: 8:09 हो चुके हैं दोस्तों, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम में, दिलों की आवाज़ में। और मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये प्रोग्राम आपका है। और इसमें कहते हैं ना कि जिस इंसान का नाम सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तो

0: समझ लीजिए दिल बस वहीं पर बस चुका है। और ऐसे ही आपके बहुत सारे मैसेजेस होते हैं और आपका जब मैं आप यहाँ पर चेक करती हूँ, आपके नाम चेक करती हूँ कि इस इंसान ने मुझे मैसेज भेजा, तो मेरा भी दिल आप में अटक जाता है। और इसी में से एक है हमारी बहुत ही प्यारी सी लिसनर रिहाना जी, जो कि फिनिक्स से हैं और हमेशा मैसेज करती हैं, और बहुत ही दिल को खुशी मिलती है आपके मैसेजेस पढ़ने के लिए बाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रफ़ीक जी, जो कि मोहित तैयक एंड शास्त्री बोनोमाली जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। विद्वाग विदेशी जी हैं साथ में, अनुषा खेतुन जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं और बस उन्हें इतना कहना चाहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली खुशी हो और मेरी आखिरी भी खुशी तुम हो, अगर उसके बीच में मेरी कोई और खुशी आए तो मैं मर जाऊँ। हाय रे, इतना प्यारा मैसेज मैंने जब पढ़ा ना तो मुझे लग रहा था मैं इमोशनल हो गई थी और मैं सोच रही थी हाय ऐसे भी प्यार होते हैं और ऐसा ही प्यार बना रहना चाहिए। आप सबके प्यार और विश्वास के साथ हम चलते हैं और यही है आपका प्यार जो हम तक पहुंचता है और आपके पसंद के गाने चलते हैं। तो आपके पसंद के गाने में जो भी फीलिंग्स होती हैं, मैं कहती हूँ उस इंसान तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं। तो एंजॉय कीजिए आपका ये गाना और बस मुझे मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा 5250-6200 पर, और कॉल करना मत भूलिएगा 4028070 पर।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: 8:20 हो चुके हैं और कहते हैं प्यार में बहुत ताकत होती है और प्यार में सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या होती है, किसी का आपका ख्याल रखना। और जब कोई आपका ख्याल रखता है बस सिर्फ इतना ही कोई पूछ लेता है कैसे हो, क्या कर रहे हो, तबीयत ठीक है, इतना ही बहुत होता है। कभी कभी ये दो शब्द ही ज़िंदगी में एक राहत और एक सुकून दे जाते हैं। ऐसे ही जब बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं हाल कैसे हैं, आप कैसे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ऐसे ही मुझे जब आप सबके फ़ोन या आपके मैसेज आते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे अपने यहाँ पर है और ठीक है। तो चलिए जी, हम भी 2-3 मैसेजेस की ओर बढ़ जाते हैं। सचिन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ पंपलेमुस से और एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे। और सभी लिसनर्स को इतना कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखिए क्योंकि बाहर थोड़ा सा मौसम जो है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है और कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, घर में रहिए, फुल स्लीव्स के कवर्स करके अपने आप को रखिए। और बच्चों को कुछ दवाई दे सकते हैं अगर लगता है कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो। उन वो कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल मैसेज है क्योंकि हर एक दूसरे को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सचिन जी। साथ में अनीता जी, प्रताप जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और एक गाने की फरमाइश कर रही हैं। फुलवंती जी जो कि बहुत ही मेरे दिल के करीब हैं, उनकी आज थोड़ी सी कहते हैं मूड थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं भी इनको इतना ही कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल तक टेंशन मत लीजिए, ज़िंदगी ऐसे ही है और ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही चलेगी, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में बाबू अनंतवा जी भी जुड़े हुए हैं साथ में और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। भाई अबू जी के लिए भी एक प्यारा सा गाना हम चलाएंगे अभी। उसके साथ में हमारे साथ वकवा से जुड़ी हुई हैं सुदेवी जी जो कि अगला गीत मांग रही हैं। ललिता कुशल फैमिली, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना मलिंगा, अक्षय, विकास, कृषिका, लक्ष्य एंड ऑल राम रतन फैमिली और सभी परिवार के लिए। और बस सभी को कह रही हैं कि हमेशा खुश रहो, इन्जॉय करो और ये गाने आप सबके लिए आपकी पसंद के।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बजकर 34 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। और कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं पर दिल में हमेशा के लिए ऐसे बस जाते हैं जैसे उन्होंने उस जगह पे कब्ज़ा कर लिया। और ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, जो कब्ज़ा कर लेते हैं वो ही सच्चे प्यार करने वाले होते हैं। क्योंकि अगर आपको एहसास हो जाता है कि हाय ये मेरे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, तो बस ऐसा ही प्यार होना चाहिए। तो ऐसे हमारे बीच में एक बहुत ही प्यारा सा कपल है, गुलशन जी, जो कि

आयशा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें बस इतना ही कहना चाहते हैं, हाँ मैं थोड़ी देर बाद यानी कि थोड़ा लेट आ रहा हूँ, पर इंतज़ार करना मेरा, क्योंकि मुझे तो एहसास होता है कि मैं तुम्हारे बिना इतने साल जिया तो जिया कैसे। हाय रे, ऐसे ही बस जी लेता है हर इंसान, बट ये सच है कि जिससे प्यार हो जाता है उसके बाद वो छोटे छोटे से पल भी ऐसे लगते हैं जैसे बहुत ही साल गुजर गए हों। उसके साथ में ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्विनिल जी, और जो कि कहती हैं अपने भैया भाभी परिवार और सभी सदस्यों को कि हाँ मैं अंतिश के साथ जा तो रही हूँ शादी करके, पर मेरा दिल आप सबके साथ ही रहेगा और वो मेरी ज़िंदगी है तो आप मेरे दिल हैं, और मैं अंतिश के बिना इसलिए जी नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरा सब कुछ है। हाउ स्वीट, यही मैसेजेस होते हैं जो एक दूसरे की बॉन्डिंग को एहसास दिलाते हैं, क्योंकि अंतिश जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और स्विनिल जी जो कि मॉरिशस में है, इतनी दूरियाँ हैं बट फिर भी ये जो गाने हैं ना उन दोनों की जो बॉन्डिंग को साथ जोड़ देते हैं, वो धागे को जोड़ देते हैं, और जब वो धागा जुड़ जाता है तो एहसास होता है कि हाँ भाई प्यार कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे ही लोगों को रखिए, ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, इंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए और आराम से रिलैक्स होकर सोइएगा। तो ये गाना उन दोनों के लिए, ये दोनों कपल के लिए, और हम यही कहते हैं कि जब तुम दोनों की शादी होगी तो हम ज़रूर आएंगे बैंड बाजे के साथ। RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बजकर 54 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, आपकी पसंद के इन प्यारे गीतों के साथ अब विदा लेने का समय आ चुका है। उम्मीद है इस शाम जो है आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही जुड़े रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। मैं थी आपके साथ पूनम, नमस्ते, शुभ रात्रि, गुड नाइट, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से खाइएगा, पीजिएगा, और ये लास्ट गाना जो है जो चलेगा

0: का माया जी के लिए और सूरज शर्मा साजदा जी के बेटे निशाल के लिए, और हम यही कहेंगे बस अपना ख्याल रखिएगा। तो बस चलिए अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। यही टाइम जो है, इस टाइम जो रेस्ट का टाइम है, इससे ऊपर टाइम कोई नहीं होता। बस अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। ये लास्ट गाने के साथ आपको अलविदा कहती हूँ। नमस्ते, बाय बाय।
1: RM3 Radio.

कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत करत है रेडियो मॉरिशस आउरी रेडियो मनोरंजन पर। रात के 9 बजे था और अभी से लेके रात के 11 बजे ले भरपूर मजेदार कार्यक्रम भोजपुरी तड़का में आप सब कोई के स्वागत है। तो चला सामदी के रात है और सामदी के रात तब बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत सुने के एगो और ही मजा लगेला। तो जहां कहीं से भी साथ

देवा थवा तो प्यार से साथ देते रहिए और जे तो मन में बा कोनो ऐसन गीत सुने के तो हर हिया कोनो ऐसा खास प्रसंग बा परिवार में कोनो लानी वैसे कोनो जन्मदिन बाते या हरदी के रात हो और खुशी हवा कोई खातिर एगो गीत मांगे के तो जरूर हमने के टेलीफोने करे सकबा 402-808-85 402-808-85 पर और संगे संगे मेसास विदा करे खोजत हवा तो 5251-7005 सेकंड है सेकंड हैं स्वसंजीत जेगोसाई तो चला मजेदार गीत के कार्यक्रम संगे जुड़ जाइए और भरपूर मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए जा तो चला आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा एगो बढ़िया गीत के संगे और हई जोन गीत है पहला गीत संभावती दुमन के आवाज में रखल दादा की सोहेला दादा जी सोहेला तो चला हई गीत के संगे शुरुआत करब जा आज के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुते मजेदार कार्यक्रम और सब कोई है ये स्प्रे करत हो नातान करत हो इनकी कब एक चुटकुला सुनाओ अब कब तू हसब काहे नहीं हो चुटकुला के तो पिटारा खोलब और एगो ऐसा तड़का मारब के कार्यक्रम में चार चांद लगी पर है कार्यक्रम जस्ती जोली बनी तो हर पसंदीदा गीत के साथ तो चला अगला गीत जोन है चलाओ अब जा वालिद फैत के उमा लता हरि नारायण खातिन जेकरा भैल बा 20 तारीख के 60 बरिस हा हो 20 तारीख के उ बन गल बा एगो बढ़िया स्वासों तो बोले जैसे 60 पार कर दे लगता चला बहुत बहुत प्यार उमा लता ओमलता जी के और हई जोन शुभकामना आवा था उनकर माता जी बगल से कुमारी जी जे दागोचे से साथ देवत हवन और सब हरि नारायण परिवार उनकर पति हवन धनंजय और संगे हवन उनकर बेटी अंजू मीमी बेटा हवन पत्तो संगे हवन नाती पोता और बहिन हवन प्रतिमा सुधा भाई हवन बोबी भौजी हवन कामिनी संगे हवन आयुष और सब परिवार संगे अस्ताबिया परिवार और हरि नारायण परिवार की ओर से तो चला राजीव मगर के आवाज में रखल है गीत तोहरा जन्मदिन के खास अवसर पर चलाओ अब जा और कैसे नहीं चुटकुला सुनाब हो बढ़िया चुटकुला आई सुना ना चाचा हमनी के कौन दिन ऐसा फिल्मी अंदाज में हमनी के बोले हाँ हाउ गीत वास सुन ले हवा हम बोली कौन गीत चाचा अब पुराना गीत जो तुमको हो पसंद उही बात कहेंगे हाँ चाचा सुन ले है बहुत बहुत मजेदार गीत धत बीच में ने बोले कि हम जब बोला था तो निमन से सुनिया जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे हाई गीत पूरा तू सुन ले हवा हम बोले हाँ चाचा सुन ले है बहुत बहुत मशहूर गीत है मुकेश साहब की आवाज में बोले हाई गीत में हाई कविता हाई कविता हाई में कवि जानत हवा कौन ची बोला था हम बोले नहीं चाचा तू समझ गई ले हवा कौन ची बोला था बोले हाँ पूरा निमन से समझ गले हई हाई कवि बोले अपन प्रियतमा से बोला था अपन प्रिय के बोला था कि हे प्रिय तोहर मुँह के लगी तोहर से के बहस करी तू जोन चीज बोला था वह हाइये का हो चाचा तू का कबाड़ा कर दे लखाई बहुत जोली संगीत के

जन्मदिन बहुत एक खास दिन रहेला और इस साल में एक एक बार आवेला तो चल बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम चलता और जरूर तनी तनी हमर संगे पाशियंस रखिए काहे कि ढेर कोई टेलीफोनी करता तो हये है तोहर प्यार तोहर विश्वास और बढ़िया गीत के संगे चला है जा पर अगला गीत चलाओ अब जा और मजेदार गीत हई है सुना नोयन के आवाज में और हई गीत के मांग करत हवन विश्वानी जी बहुत ही मजेदार गीत के मांग कर ले हवन सुना नोयन के आवाज में और हई गीत उनकर बहिन इंदिरा शारदा सहेली हवन नीला और प्रतिभा शोभा जी संगे हवन गीता गजाधर भी साथ देवत हवन तो चला है ये गीत करब जाओ उनकर खातिर और मजेदार कार्यक्रम संगे चचा के का बोलब चचा हमनी के बोले हाँ सब कोई बोला था लाइक वन अभी जोन रास्ता में चलेला बहुत एक खराब रास्ता में बहुत गलत रास्ता में चलेलन सा लाइक वन लोग पर हमार कपार में एको बात नहीं आवता हम बोलनी कौन बात चचा बोले चला आजकल के जवान छोकरा छोकरी लोग तो बोले बुरा सीमा में चला था वन गलत सीमा में चला था वन हम कौन कौन प्रॉब्लम खड़ा कर दिले हैं हम बोले का है कौन ची होल बोले चाची है तो हर चाची बुढ़िया हो गल बा हम बोले का है बोले हम जोन सीमा में चले लाऊ बोले हाँ तू जोन सीमा में चले लाऊ सीमा निमन नहीं बा गलत रास्ता पे चलता रहेला बूढ़ा अब का बताओ भाई बुढ़िया के कैसे समझाओ अब शादी के इतना बरिस में भी हमनी के जब देखा तब टोकते रहेला

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और चला अगला गीत जन है दाना जी नाव जी के आवाज में रखल और हाई गीत करब जा मोताबा से माफ करिएगा तयाक से हमनी के साथ देवत हवन हाईजा पर रफिक मोहित जी और रफिक मोहित जी हमनी के मांग कर ले हवन है अगला गीत के

और हाय हा दाना जी नाव जी के आवाज में रखल जीवन देवेला तो चला है ये गीत के संगे संगे आगे बढ़ब सा औरी मजेदार कार्यक्रम के संगे चाची के भी का बोलब जहां चाचा हमेशा ऐसन बतवा बोलते रहेला चाची खातिर चाची भी कुछ कमती नहीं हो जानी चाची हमनी के बोले शादी से अगाड़ी सोचले रली हमर शादी हो जाए तो हम अपन बुढ़वा के पैसा से तनी ऐश करब हमर आर्थिक स्थिति तनी अच्छा हो जाए हो पैसा ही पैसा मिलते रही और हम बहुत मजे से अपन जिंदगी काटब पर हम तो बर्बाद हो गई नी हम बोली का होल चाची काहे लोर चुआता तोहर आंख में हम का बोलब हम है बुढ़वा से शादी करके हमर आर्थिक स्थिति तब भूल जइयो हमर मानसिक स्थिति हिला के रख देलक है बुढ़वा का बोलब होला चाची होला गलती हो जाला छोड़ द माफ कर द

0: भोजपुरी तड़का
1: 9:26 और जितना कोई रात के काम करा था वन बस पालतो रख के काहे के अभी ठंडा शुरू हो गल बा और एक बेरा चला वेला जब सच्चे के बहुत ठंडा लगेला पर चला हैजा पर गरमा गरम बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत चला था तोहर खातिर और हैजा नवीन जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन नवीन लक्ष्मण जी और संगे हवन रोज बेल से चित्रा जी उनकर प्यारी पत्नी आज उनका मन करा था शिव के महिमा है गीत सुने के लीलो माथुर सुकन के आवाज में रखल और साथ देवत हवन उनकर सब परिवार मेबक से हवन निवेदिता और सच्चिदानंद जी मॉडल बिया बगल से ललिता और धनराज चरण जी हमेशा साथ है देवेलन उनकर प्यारी बेटी स्वीटी संगे और न्यू ग्रो से हवन राज और अमृता ओबिलक गौबुआ से हवन रमेश और प्रीति जी तो बस साथ देते रहिए जा और हंसते मुस्कुराते है सफर में आगे बढ़ब जा कौन दिन जाना था चाचा बहुत परेशानी में आगल कौन दिन हरदी में गल रहा अब तो जितना पसीना छूटे के शुरू हो गल खाई के बैठ गल रहलन अब खाईते खाईते खाईते खाईते जितना होकर पसीना छूटे के शुरू करनी तो हम त्राका में चलनी हम तो बोलनी चाचा के कौन चे होल चाचा तबियत ठीक नहीं बाका बोला नहीं ठीक है तबियत तो ठीक है तो हम बोले तो का कौन चे होल बोले पेट तो बहुत भर गल बा हम बोले तो बस करिए काहे कितना इतना पूरी कितना खात हो तू बोले हाँ पर एविताशियों में लिखले रहल 7 बजे से 10 बजे ले जीने के टाइम है यानी रात के खाई के टाइम है ऐसे खात है अभी 10 नहीं बजल बा ना हम बोले अरे चाचा 10 बजे ले खाई के मिली है बोल ले हवन हो 10 बजे ले खाई के नहीं बोल ले बा तोरा का हो चाचा इतना का करिए सब लोग आतान करत हवन इतना बेरा 3 घंटा से तू खात हो का जानी कितना पूरी खा ले लग

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम और है जहाँ पर नोएल फॉस से गीता जी हमने के संगे जुड़ गल हवन गीता बाई संगे हवन उनकर बेटा शिवाजी पतो हवन श्वेता बाई उनकर बेटी हवन सुधा बाई और नातीन हवन बिजवी बाई दीहा बाई और प्यारा मल्हार साथ ही साथ है जहाँ पर सीजा मिल फोरेस्ट साइड से जुड़ गल हवन शांता सुकागी बहुत बहुत प्यार आप सबको इके और संगे हवन उनकर पतो किरण बेटा हवन सुदेश गावीन सुजीत और अशोक साथ दिवत हवन उनकर नाती भावेश और संजना और महन हरपाल की आवाज में रखल अगला गीत करब जाओ उनकर खातिर और ही हंसते मुस्कुराते बस उसने हंसते रहिए कबो कबो तो लोट पोट हो जाइए हंसते रह ये चाहिला है ये जीवन है तो चला आगे बढ़ब स चाचा और चाची के झगड़ा में कहा बोलब चाची कौन दिन खीस में आके चाचा के बोले हमार खातिन दूर दूर से रिश्ता आवत रहलन हमार कपार का जनी तोहर संगे तोहर हमनी के पसंद पड़ गल बोले हाँ दूर दूर के ही तो रिश्ता आई ना काहे के तोहर जोन पास के रिश्तेदार हा उ तो सब तोहर लक्षण जाने लन सा

भोजपुरी तड़का तड़का 9:42 मजेदार गीत के कार्यक्रम और जिले जिले हाई गीत हा उमेश दाऊ के आवाज में रखल बहुत मजेदार गीत तो चला हंसते मुस्कुराते कार्यक्रम के आगे बढ़ावब स और अगला गीत जो है बहुत प्यार से चलावब जा हाई एगो ललना हा और हई गीत के मांग कर ले हवन शोभा जी का थो बोन से बोले हमर घर में एगो लक्ष्मी आल बा तो चला नाना नानी दादा दादी मौसी मामू सब परिवार के ओर से चलावब जा है बहुत मजेदार ललना और है ललना हा लक्ष्मण बीगे लक्ष्मी के आवाज में रखल सोहावन एल्बम से लेबल गई और चाचा के का बोला चाचा बोले हाँ जानत हवा जमाना बहुत बदल गल बा हम बोलनी कैसे चाचा बोले पहला के जमाना में शादी में जूता चोरी करत रहलन हम बोलने हाँ चाचा आज भी देखबा चौथाड़ी के दिन में हाउ होला छोकरी लोग जीजा के जन जूता हल्ले लेवेलन सा और पैसा लेवेलन सा बोले हाँ पहला के जमाना और आज के जमाना एगो नींदे दे हुआ था ही जाना था वह अब जमाना बदल अभी तनी नवा चीज करे के चाहिला हम बोले कौन चीज करे के चाहिला चाचा बोले हाँ अब जाना था वह जूता नहीं चोरी करियो जीजा के पोताप चोरी करियो ढेर पैसा मिली हाँ चाचा ये तो बड़ा बात बोला था वह तो सब बैंक बैलेंस तो हर नाम पे कर दे

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और अभी तनी घड़ी में तनी यानी 10 मिनट में 10 बजी और एक और घंटा रह जाए यानी 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चल अगला गीत जो हाँ लागी ना ही छूटे राम हई गीत बहुत फेमस हो गल बा और हई गीत चलावब जा चाची ललिता खातिन जे त्रियोले से साथ देवत हवन और उनका सब कुशल परिवार और आज तक जन्मदिन मनावत हवन विदुर विदुर के बोलब जाए जन्मदिन के बहुत बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत बधाई साथ हवन समीक्षा आर्यन उनकर मम्मा पापा और सब कुशल परिवार साथ देवत हवन सुदेवी जी देवीना ज्ञानी छोटी भाई आत्माराम साथ हवन माला राम जावन भाई हरीश दादी प्रभावती छोटी पुलौजे से और चला हई गीत करब जा श्यामा जी खातिन श्यामा जी हमनी के साथ है देवत हवन गाँव गोब से उनकर भैया हवन जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश उनकर दू गो भगिना और साथ हवन उनकर दू गो प्यारी सखी वीना रामफल और विश्वानी जी जे हमेशा हमनी के संगीत जुड़ल रहेलन और हई गीत करब जा विजय बंधन खातिन जे हमनी के साथ देवत हवन क्लावे से ऊ भी बहुत ही खुशी रहेलन हई गीत सुने के उनकर पत्नी हवन रेखा और तीन गो बहिन चंदनी बिंदु कुमारी और उनका जितना संगतिया हवन उन सब कोई खातिन लागी ना ही छूटे राम हई गीत गायत्री जी भी बहुत खुशी रहेलन तो चला हई गीत उनकर खातिन भी करब जा नोएल फ्रांस से और उनकर बेटा हवन अजय मामी हवन कल्याणी मोहन भौजी हवन

कुंतला मो ताइलोंग से और खास सखी ईटा बाई खाती और चचा हमनी के जब देखा तब ऐसा ऐसा आइडिया देते रहे लन बोले जाना था आजकल सीमा में जितना लोग मिले लन सा ढेर काम में व्यस्त रहेला हम बोली हाँ चचा तो अच्छा बाना काम करे के चाहिला सलमा जाना था व्यस्त कौन सी चीज में रखे लन सा हम बोली नहीं चचा बोला दूसर के वही करे के दूसर कहाँ जाता दूसर के करता कब आवता कब जाता है सब में वही करे लन सा हम तोरा एगो नींदे देवत है आज के बाद जे तोरा कोनो पूछी का चलता तब बोल दिया हाँ कोई के संगे चलता तब देखिया फजीर सांझ उ सुतबे नहीं करी तोहर पाछे पाछे जब देखा तब उ कुआड़ी पे खिड़की पे मुँह ताकते रही तोहर हाँ चचा आई तो सच्चे बोल दिलक चाहेला तनी उनकरा काम देई के ना

जुबे दा लोटो लेके जाए हाई एगो बढ़िया गीत है और चला हाई गीत के संगे आगे बढ़ब स और भाई अबू और संगे हवन उनकर बेगमा फेज असलम आया जायान जहीरा और रईस खाला छोटी और आपी और उनकर पत्नी हई दुगो संगे जुड़ गल हवन और भाई अबू खातिन चलाओ अब जा हई अगला गीत चला हाई ये गीत कर अब जा नीता जी खातिर नीता खेदनी हमनी के संगे साथ है देवत हवन सैन जूलिया विलास से और उनकर सब खेदनी परिवार साथ देवत हवन उनकर खास सखी स्वादिका बिलवेदिया से तो बस साथ देते रहिए हाईजा पर सुनीता जी भी हमनी के संगे हवन घों गोब बगल से खुशी रहलन लागे नाही छोटे राम के गीत सुने के पर हई तो अभी अभी हम चला दिले हई पत्राका ने करिए तो हर प्यार से नाम जोड़त हई कोंगो माँ से तो हर बहिन विमला और गुडलैंड से हवन बहिन अमृता और घों गोब से वीना जी तो चला हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा और पप्पू भैया के का बोलब कौन दिन गर्ल शिवाला मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करे शुरू कर दिलब बोले हे भगवान हमर गलती के सजा हमनी के नहीं दिए हमर सब संगतिया के दिए बोला ता ऐसे प्रार्थना के करेला हो

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का।
3: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
2: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और 10:05 और ये एक और घंटा रह गल बा रात के 11 बजे ले। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सब कोई के मनोरंजन करे खातिर हम आप सब कोई के साथ देवत है। तो चला अगला गीत जो है स्विट्जरलैंड से हमनी के साथ देवत हवन।

रंभा जी और सुदेश बोईजू के आवाज में रख अलग अलग गीत और हई गीत उनकर सब परिवार खातिन जे मोरिस में हवान और जे विदेश में हवान। तो चला आगे बढ़ब सा और चचा कौन दिन इतना भावुक हो गल हमनी के बोले एक दिन तो सब कोई दुनिया छोड़ के चल जाए और बस नीचे रह जाए ओकर पाप से भरल घड़ा। हम बोले का कौन घड़ा चचा? बोले हाँ जितना पाप कर ले हवा वो घड़ा। हम बोले कौन घड़ा चचा? बोले तोहर पोताप हो।

0: भोजपुरी तड़का
1: जलसा के रात जारी बाउरी मजेदार रात संगे आप सब कोई के साथ देवत हवन रत्ना और हाइजा पर रोजिल बगल से हमनी के साथ देवत हवन साजिद जी जुड़ गल हवन मजेदार कार्यक्रम के संगे संगे तो चल लॉबियोस डालब जातनी ढोल बाजे के हई गीत के संगे माछे के आवाज में रखल हई अगला गीत ऊ मंगले हवन उनकर खास सखी हवन दीना सरोवर जे हमनी के साथ सुनत हवन विदेश से ते चला दीना जी जे सुनत हवा तो आहे अगला गीत संगे तनी मोरिस के मजा लिया और चुटकुला के तो का बोला बाप तो जानत हवा ना जितना सब तकनीक आगे बढ़ गल हवा ना तो चाचा भी कौन दिन जाके का जानी कौन कौन सीट पर जाके समाचार देखेलन सब हमनी के बोले हाँ हाई देखा एगो रशियास चलाल बा हाई रशियास में बोले बा कि 99% जोन पति रहेलन जो पत्नी रहेलन हाँ 99% पत्नी लोग अपन पति के आदत बदले खोजत हवन सब और उही रिसर्च में हाई भी पता चलल बा 99% पति लोग अपन पत्निये के बदले के खोजत हवन।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: 10:23 हो गल बा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में हाई जाफू जो साग से संगे हवा नु माजी जितना कोई सुना थवन और हमारे एमबीसी के पूरा टीम खातिर अगला गीत के मांग करा थवन अबेद आनंद बीजन के आवाज में रखल संस्कृति हमारी। अब संस्कृति के तो का बोला चचा बोले जोन पत्नी अपन पति से डिड़ाला ओकरा स्वर्ग के प्राप्ति होला ओकरा स्वर्ग मिलेला तो चाची दांत दबा के बोले हाँ और जोन पत्नी अपन पत्नी से नहीं डिड़ाला ओकर खातिर तो धरती पे स्वर्ग है।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: कर संगे 10:30 हुई के बाद और हाईजा पर पीतों से हमने के साथ देवत हवन अमृता जी गणेश परिवार खातिन चलाओ अब डागला गीत सुनीता ननकू के आवाज में रखल और संगे साथ हवन सोनिया और परी उनकर दूगो नातीन और बेटा विश्राम और पतो हवन मीनाक्षी और ये चाची के तो अभी जानत हुआ तन को ऐतने तनी कमती देरी से शुरू होला ताकर मन ओकर जीवा बहुत तिल मिला जाला कौन दिन बोले चाचा के बोले हाय देखा ना हमर ऐतने तो तनी बहुत बहुत धीरे धीरे चलता तो चाचा बोले हाँ तो जानत हुआ तोहर जबान जितना तेजी से चलता कनेक्ट कर दो अपन जबान से तो हाली हाली चले लगी

चले घूमते आगे बढ़प सा और ही कुणाल बाबूलाल के आवाज में रखल दामाद बाबू और हई गीत करब जा सरिता जी खातिन का थो बोन से उस साथ दिवत हवन तो चला सुनब जात दामाद बाबू और आज तो सामदी के रात है देर दामाद बाबू गल हवन फ्रेक कौते करे

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम सच्चे के बहुते बुरा जमाना चल आल बा। पर ऐसा बुरा जमाना में जब ऐसा धमाकेदार गीत चलेला तब मूड तनी टकाटक हो जाला और तनाव के दूर भगाए खातिर चला रोज रात के चलेला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। और अभी तक रात के 10:40 हो गल बा। चला अगला गीत हाली हाली लेव अप जा। और अगला गीत है रेशम के साड़ी और है गीत अनीता जी फ्री कॉम्फ्लाक्स से मंगले हवन। तो उनकर सब परिवार खातिर दोस्त खातिर चलाओ अब जा ये गीत।

चला अगला गीत है गीत गवाई में और हाय हा बिदमावती संपत की आवाज में रखल गीत और हाय गीत के मांग कल हवन मीरा बाई दमिया मौदालबिया से सब दमिया और पादिया परिवार बेटी और दामाद खातिन और उनकर पति खातिन

बढ़िया बढ़िया गीत, बढ़िया बढ़िया भोजपुरी संगीत और चला इसी के साथ आप फेज हमनी के संगीत जुड़गल हवन लावेनीय सैंपिया से संतोष महादेव की आवाज में रखल अगला गीत उनकर नाम करब जा और संतोष महादेव के ही आवाज में रखल गरम मरमीट में गरम पानी और हये गीत करब जा माहिन जी खातिन जी हमनी के साथ देवत हवन और खास कर उनकर दीदी मान और सब जगमोहन परिवार खातिन

ठंडा करा था गरम गरम पानी पिया आवरी चला अगला गीत शांति जी खातिन चलाओ अब जाते हैं से साथ देवत हवन सब मराठी परिवार दागोजिया बगल से भगीना ओम अप्पा दागोजिया से और सब सुने होला श्रोता खातिन गिरीश रूपचंद के आवाज में रखल है गीत चला है जा पर सुदेवी जी हमने के संगे हवन वाकवा से चाची ललिता कुशल खातिन जित्रियोले से साथ देवत हवन भाई आत्मा राम खातिन दीदी सुनीता शोभा हवन मैलिंगा से और सब राम रतन परिवार खातिन है ये

चले आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त कर अब जा संतोष महादेव की आवाज में रखल आखिरी गीत अनीता लाल जी खातिन चलाओ अब जा उनकर गोगा गोगा परिवार इतु परिवार और लाल जी परिवार और सैपिया के महादेव परिवार खातिन और खास कर हये गीत रियोले के बिहारी हरि प्रेम जी खातिन चलाओ अब जा और हये गीत के साथ आज के कार्यक्रम है जा पर समाप्त हो जाए फेरों से भेंट आप सा एगो और ही बढ़िया कार्यक्रम संगे तो चला याद रखिये अभी थोड़ा घड़ी में यानी 11 बजे के बाद तू सुने सकबा पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल और हई कार्यक्रम सजावल जाए नीतू शाह की ओर से और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ रात्रि।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ समस्त श्रोताओं को नीत उषा का करजोर प्रणाम। श्रोताओं, आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं। आइए इस रात्रि के बेले में एक बार फिर आपका स्वागत सुनहरे पल कार्यक्रम में। आज जिन कलाकार से रूबरू करा रहे हैं वो अपने जमाने के वन ऑफ द मोस्ट, जैसे कहते हैं, बेस्ट कॉमेडियन माने जाते थे। आप थे राजेंद्र नाथ, याद आया आपको? तो चलिए आज की ये रात इनके नाम।

राजेंद्र नाथ बॉलीवुड के उन सितारों में से एक थे जिन्होंने अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, अलग अंदाज और मस्त पर्सनालिटी से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। राजेंद्र नाथ का नाम आते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्होंने हर फिल्म में अपनी कॉमेडी और एक्सप्रेशन से ऑडियंस को हंसने पर मजबूर कर दिया। उनका पूरा नाम राजेंद्र नाथ मल्होत्रा था और वो हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के सबसे मशहूर कॉमिक एक्टर्स में से गिने जाते हैं। उनका जन्म 8 जून 1931 को हुआ था और उन्होंने बॉलीवुड में एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी याद की जाती है।

राजेंद्रनाथ का फिल्मी सफर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। वो असल में एक एजुकेटेड और कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके भाई प्रेमनाथ भी एक बड़े एक्टर थे और उनकी बहन का रिश्ता लेजेंडरी कपूर फैमिली से जुड़ा था। फिल्मी माहौल होने के बावजूद राजेंद्रनाथ ने अपनी

अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी हीरो बनने की रेस में खुद को नहीं डाला, बल्कि कॉमेडी और सपोर्टिंग रोल्स में ऐसी जान डाली कि लोग उनके सीन्स का इंतजार करते थे।

1950s और 60s के दौर में राजेंद्र नाथ ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, मेरे सनम, एन इवनिंग इन पेरिस, दिल दे के देखो, प्यार का मौसम जैसे फिल्मों में उनका कॉमिक अंदाज बहुत ही पसंद किया गया। उनके कैरेक्टर्स

वैसे राजेंद्र नाथ की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल और एनर्जेटिक थी। वो सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग से भी कॉमेडी क्रिएट करते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही मस्ती थी और उनके एक्सप्रेशंस इतने यूनिक होते थे कि छोटा सा सीन भी मेमोरेबल बन जाता था। उस दौर में जब कॉमेडी का स्टाइल ज्यादा लाउड नहीं होता था, राजेंद्र नाथ ने अपने अंदाज में इनोसेंस और चार्म को ऐड किया। इसी वजह से उनकी कॉमेडी भी वल्गर या चीप नहीं लगी बल्कि फैमिली ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग बनी रही।

करियर में उनकी जोड़ी के कई बड़े एक्टर्स के साथ खूब जमी, चाहे शम्मी कपूर हो, देवानंद हो या बिस्वजीत। राजेंद्र नाथ हर हीरो के साथ परफेक्ट कॉमिक सपोर्ट बनकर उभरे। उनके सीन्स फिल्मों का मूड हल्का और

एंटरटेनिंग बना देते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि ऑडियंस हीरो हीरोइंस के सॉन्ग्स के साथ साथ राजेंद्र नाथ के कॉमेडी सीन्स को भी इक्वली एंजॉय करती थी।

राजेंद्रनाथ की एक और खास बात ये थी कि वो स्क्रीन पर कभी आर्टिफिशियल नहीं लगे। उनका अंदाज एक आम आदमी जैसा था जो अपनी फनी हरकतों से सबको हंसा देता था। इसी सिंप्लिसिटी ने उन्हें मैसेस के बीच पॉपुलर बना दिया। उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, फनी हेयर स्टाइल्स और क्वर्की मैनरिज्म्स उनकी आइडेंटिटी बन गए थे। बॉलीवुड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा माना जाता है। उस दौर के कॉमेडियंस में उनका नाम जॉनी वॉकर, महमूद और जगदीप जैसे लेजेंड्स के साथ लिया जाता है। राजेंद्रनाथ ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में अपनी एक अलग पहचान छोड़ी।

जिंदगी के आखिरी सालों में वो फिल्मों से थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन उनकी यादें और उनके कॉमिक सीन्स आज भी टीवी और सोशल मीडिया पर लोग बड़े प्यार से देखते हैं। 13 फरवरी 2008 को राजेंद्र नाथ ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी हंसी और उनका चार्मिंग कॉमिक अंदाज हमेशा बॉलीवुड लवर्स के दिलों में जिंदा रहेगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

You're listening RM Free Radio.